अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार सुरेश वाडिकर, संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को सायं 7:45 पर और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। सुनिए संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: मन्दिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्डचक्रवाद्वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तर प्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचिन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीनवेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और ये है नमस्ते लखनऊ का सफर। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए सेहत की जानकारी का खजाना कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय, जरूरी है पैराबैडनी सुरक्षा, यूवी सेफ्टी मंथ। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरे की जो हमारे आसपास हर दिन मौजूद होता है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका असर हमारी त्वचा पर, हमारी आँखों पर और हमारे शरीर पर बहुत गहराई से होता है। आज हम बात करेंगे पराबैंगनी सुरक्षा की यानी यूवी सेफ्टी की। श्रोताओं सूरज की रोशनी जीवन के लिए जरूरी है, ये ऊर्जा देती है, रोशनी देती है और हमारे शरीर में विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है। लेकिन यही सूरज जब तीव्र रूप से चमकता है और जब हम बिना किसी सुरक्षा के उसकी किरणों के संपर्क में आते हैं, तब यही जीवनदायिनी ऊर्जा हमारे लिए अदृश्य खतरा बन जाती है। यूवी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेज सूरज की उन्ही किरणों का हिस्सा है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इन किरणों का कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती और ये दिखती भी नहीं है, लेकिन इनका असर गहरा और दीर्घकालिक हो सकता है। यूवी किरणों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। इनमें से यूवीए और यूवीबी हमारी त्वचा और आंखों तक पहुंचते हैं, यूवीसी तो वातावरण में ही रुक जाती है, लेकिन यूवीए और यूवीबी धरती तक पहुंच जाती है और सीधे हमारी त्वचा से टकराती है। यूवीए किरणें हमारी त्वचा की गहराई तक जाकर झुर्रियां, असमय बुढ़ापा और त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। वहीं यूवीबी किरणें सतही परत को झुलसा सकती हैं और यही स्किन कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों का कारण भी बन सकती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये तो केवल समुद्र किनारे या पहाड़ों पर धूप सेकने वालों की समस्या होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे सब्जी लेने जाएं, छत पर कपड़े सुखाएं, खेतों में काम करें या बाइक से दफ्तर जाएं, हर बार जब हम बिना किसी सुरक्षा के धूप में जाते हैं तो यूवी किरणें हमारे साथ होती हैं और ये खतरा

ऋषिकेश गांगुड़े के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राग रामकली में ख्याल गायन। श्रोताओं, आपको बता दें, ऋषिकेश गांगुड़े के स्वर में ख्याल गायन आप रात्रि 10:30 पर भी सुन सकते हैं। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के साथ नमस्ते लखनऊ का आज का अंक भी यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को सायं 7:45 पर, और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 8 बजने को हैं, सुनिए हिंदी में समाचार पत्रिका समाचार प्रभात। दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा बस कुछ ही पलों में।

0: एक द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से

0: शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
2: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
4: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा

0: नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते बरेली में, डॉक्टर काजल गुप्ता जी।
1: नमस्कार मैम, नमस्कार सारे बरेली वासियों। मैं डॉक्टर काजल गुप्ता, आपकी अपनी पशु चिकित्सक, रामपुर गार्डन बरेली से।

0: जैसे कि आप सभी को पता है आज का दिन 6 जुलाई हम विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाते हैं और आज वर्ल्ड वेटरनरी वर्ल्ड जूनोटिक्स डे के मौके पर आपके पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी के माध्यम से मैं आप सभी के साथ एक बेहद जरूरी और जीवन रक्षक जानकारी साझा करने आई हूँ।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब।
0: तो दोस्तों सबसे पहले हम आसान शब्दों में ये समझते हैं कि जूनोसिस या जूनोटिक डिजीजेस क्या होती है। ऐसे इन्फेक्शन जो स्वाभाविक रूप से पशुओं से इंसानों में फैलती हैं उनको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं, या हम आम भाषा में कहें तो पशु और इंसान दोनों की हेल्थ आपस में कनेक्टेड रहती है और इस कनेक्शन को ही हम जूनोसिस के नाम से जानते हैं।
1: जी
0: आप सभी को जानकर शायद ये हैरानी होगी कि इंसानों में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनमें से 60% इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो जूनोटिक होते हैं। मतलब अगर 5 इन्फेक्शन बीमारियां हैं तो उनमें से 3 बीमारियां जूनोटिक है। और आने हालांकि जो शोध हुए हैं वैज्ञानिकों की जो रिसर्च है उससे ये पता चला है कि जितनी भी उभरती बीमारियां हैं जैसे आपने शायद नाम सुने हो इबोला वायरस, निपाह वायरस, ये सारे ही इनमें से उभरती बीमारियों से 75% बीमारियां ऐसी होती हैं जो जूनोटिक होती हैं, यानी कि पशुओं से इंसानों में फैलती हैं। एक डॉक्टर होने के नाते क्लिनिक में कई बार लोग आते हैं पूछते हैं कि मैम ये कैसे बीमारियां इंसानों में जानवरों से फैलती हैं। तो मोटे मोटे तौर पे देखे तो 4 मेन रूट होते हैं जहां से ये बीमारियां पशुओं से इंसानों में फैल सकती है। एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के फॉर्म में, अगर किसी जानवर की लार के खून, उसके पेशाब या उसकी त्वचा के संपर्क में आप आते हैं जो पहले से संक्रमित है तो वो इन्फेक्शन आपको लग सकता है। दूसरा आप अप्रत्यक्ष रूप से अगर उनके खाने पीने की चीजें, उनकी जगह जहां वो रहते हैं, उनके कपड़े इत्यादि के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो भी वो बीमारियां आपको लग सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है दूषित भोजन पानी। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग मांसाहारी होते हैं वो अध पका या फिर बिना पका हुआ मांस का जब सेवन करते हैं या फिर बिना उबला हुआ दूध का अगर आप सेवन करते हैं तो उससे कई सारी बीमारियां आपको लग सकती है, जैसे कि बर्ड फ्लू, ब्रुसेलोसिस या फिर टीबी, साल्मोनेलोसिस। ये सारी बीमारियां दूषित भोजन और पानी या अध पके भोजन और दूध से इंसानों में फैल जाती है। और कई बार
1: बर्ड फ्लू तो हम लोग अक्सर सुनने में आता ही है समाचार माध्यम से कि सेवन कम कीजिए इन दिनों चिकन का, ज्यादातर लोगों को सुनने में आता है बर्ड फ्लू चल रहा है इसमें।
0: एग्जैक्टली बर्ड फ्लू में कई बार ऐसा होता है कि बर्ड फ्लू एक्चुअली कई बार ऐसा है ना कि बर्ड फ्लू का जो एक वाइल्ड टाइप का जो वायरस होता है वो तो इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन उसके जो म्यूटेंट बनते हैं म्यूटेशंस जब हो जाते हैं वायरस में तो वो इंसानों में कई बार गायों में, बिल्लियों में, इन सब में उसके देखे गए हैं कि बर्ड फ्लू गायों में भी होता है, बिल्लियों में भी होता है, दूसरे जानवरों में भी पहुंचा है और इंसानों में भी फैलता है।
1: अच्छा,
0: इसीलिए सलाह दी जाती है कि बर्ड फ्लू ना सिर्फ सांस बल्कि अगर आप बिना उबला हुआ दूध भी पीते तो उसके जरिए भी आपसे फैल सकता है। तो अगर आप मांस का सेवन करते हो उसको कम कीजिए और अगर करते हैं तो आप अध पका या कच्चा मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। प्रॉपर धो के तब आप सेवन करें अच्छे से पका के। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कि जानवरों के किलनी या फिर पिस्सू देखने में आते हैं तो उनसे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैल जाती है।
1: और आप में एक वायरस उनके अंदर होता है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: फैलता है उससे भी दिक्कतें लोगों को होती
0: है। हाँ जी हाँ जी, उससे भी फैलते हैं कई सारे वायरसेस उससे फैलते हैं। जैसे आपने सुना हो नाम अगर येलो फीवर, पीत ज्वर जिसको हिंदी में कहते हैं हम, पीत ज्वर हो गया, डेंगू मलेरिया, ये सारे फैलते हैं उसमें। दूसरी चीज जो सबसे भयावह बीमारी रही थी 2019-20 में कोरोना, कोरोना की भी जो ट्रेसेस है वो एक जूनोटिक डिजीज है। मुख्यतः ये जो वायरस होता है सार्स कोरोना वायरस 2 जिसको कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है, वो चमगादड़ों में रहता है।
1: जी,
0: तो ये चमगादड़ से धीरे धीरे दूसरे जानवर, दूसरी स्पीशीज और उसके थ्रू फिर इंसानों में फैला और पूरी दुनिया को एक तरह से इसने बंद कर दिया था।
1: आप में बहुत बड़ा वायरस था कोविड-19 और कभी ईश्वर करे कभी ऐसा ना हो अब आने वाले समय में।
0: जी जी लेकिन एक डॉक्टर के तौर पे मैं आप लोगों का ध्यान एक जो उभरती हुई हमारी बीमारियां है उसका एक और भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा पर्यावरण में चेंजेस, क्लाइमेट चेंज।

0: जंगलों का काटना, जिसकी वजह से जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जो अपने आप में बहुत सारी बीमारियों के पैथोजेंस वायरस वगैरह अपने अंदर रखे होते हैं, वो जब हमारी साइकिल में एंटर करते हैं तो इंसानों में भी वो बीमारियां बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है।
1: हर चीज मम्मी मैडम हर चीज कोई ना कोई अपने आप में एक कंट्रोल किए हुए है, जब हम उसको कहीं ना कहीं वो करते हैं तो वो हर चीज से इफेक्ट करती है, खासतौर से ह्यूमन जो है ये मनुष्य लाइफ के लिए कि हाँ ये चीजें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आजकल हम पेड़ों को बहुत काट रहे हैं, सब जगह देखा जा रहा है, जगह जगह बिल्डिंग्स बन रही है, तो कहीं ना कहीं उसको हम देख रहे हैं कि वो हर तरीके से हर चीज को इफेक्ट कर रही है। ये समय तुरंत तो पता चलता है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग लाइफ पता चलता है बहुत ज्यादा,
0: लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स मैम बहुत बहुत भयावह होते हैं और बहुत भयावह, अगर हम उस चीज को अभी ध्यान नहीं देंगे रोकथाम नहीं करेंगे
1: जी, क्योंकि जल हवा ये तो एक जाहिर सी बात है मनुष्य के लिए जरूरी जरूरी है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो ये भी मनुष्य के लिए तो ये जीने के लिए जरूरी है,
0: वैसे ही शुद्ध जलवायु एक शुद्ध वातावरण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है
1: जी,
0: और उसको बनाने में हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान है, हमें भी उस चीज का ध्यान रखना है
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने श्रोताओं तक पहुँचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 एफएम पर। श्रोताओं, वन विभाग की ओर से किया जा रहा वन महोत्सव का आयोजन, वेटलैंड के पारिस्थितिक महत्व और जैव विविधता के बारे में भी बताया। वेटलैंड से पौध भंडारे तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश और बांटे पौधे। पौधारोपण महायज्ञ 2026 के तहत रविवार को जिले में वन महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण, पौध वितरण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। फरीदपुर, बरेली और बहेड़ी रेंज में हुए कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। श्रोताओं, अभी जो हमने आज 6 जुलाई को मनाया है विश्व जूनोसिस दिवस, ये इसलिए मनाया जाता है, जो बीमारियां इंसानों में फैलती हैं, पशुओं से फैलती हैं इंसानों में, लेकिन इन सब का कारण पता क्या होता है? यही जो हम लोग आए दिन पेड़ काट रहे हैं, हमारा जो इकोलॉजी, पारिस्थितिक, पर्यावरण, ये सब जो बिगड़ रहा है, इसी वजह से जब हम कोई संतुलन बिगड़ता है तो वो हर चीज़ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। हर चीज़ अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है और उसे नियंत्रण में करती है, प्राकृतिक रूप से भी और वैसे भी। लेकिन होता क्या है, हम लोग ये सोचते नहीं, जो ह्यूमन है वो ये सोचता है कि नहीं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं। मनुष्य, जाहिर सी बात है, पेड़ पौधों पर निर्भर शुरू से ही रहा। पहले उसने पेड़ पौधों से ही अपने फल खाकर भूख प्यास मिटाई, लेकिन अब समय तो चेंज हुआ है, लेकिन जो ज़रूरत है वो कभी चेंज नहीं होती। हमें पेड़ पौधों पर तो निर्भर रहना ही रहना है। हम पेड़ पौधे काट रहे हैं तो हमारे जो ये पशु पक्षी हैं या हमारे जो एनिमल्स हैं, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि जब जंगल नहीं रहेंगे तो ये अपना कहाँ बनाएंगे निवास स्थान? कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हम, आप सुरक्षित रहें तो ज़रूरत है सबसे पहले पर्यावरण को सुरक्षित करने की, क्योंकि हर चीज़ से कनेक्ट है।

और श्रोताओं, अब बरेली शहर की कुछ खास खबरें। कल श्रोताओं, हमारे शहर में एक खास नज़ारा दिखाई दिया। जी हाँ, आसमान में दिखी पहाड़ जैसी बादलों की आकृति और वीडियो भी हुए प्रसारित। आपको याद होगा कि कोरोना काल जब चल रहा था, तो वह समय जब प्रदूषण शून्य था, शहरों में आना जाना बंद था, शहर के ऊंचाई वाले स्थानों से उत्तराखंड के पहाड़ खुली आंखों से साफ दिखाई दे रहे थे। रविवार शाम को भी कुछ ऐसा दृश्य उत्तर दिशा की ओर दिखाई दिया। शहर में चर्चा फैल गई कि उत्तराखंड की ओर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियो व फोटो इंटरनेट पर प्रसारित होने लगे। लोगों ने फोटो व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर धड़ल्ले से साझा किए, जिसके कैप्शन में बरेली से दिखे पहाड़ लिखा था। एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार, शहर से पहाड़ दिखना संभव है जब वर्षा के बाद हवा शुद्ध हो जाए, जो कि कोरोना काल में ऐसा हुआ था। वर्तमान स्थिति क्या है, ये स्थानीय विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी चंद्रेश जी का कहना है कि इंसान की आंखों की दृष्टि का ये एक निश्चित दायरा होता है।

चौथी मेरिट के लिए छात्रों के लिए फीस जमा करने का आज है अंतिम दिन। बरेली कॉलेज में चल रही है स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया। 17 जुलाई तक जमा होंगे परा स्नातक के प्रवेश फॉर्म। जी हाँ, बरेली कॉलेज में जिस किसी को भी अपनी फीस देनी हो और कोर्स में एडमिशन लेना हो, यानी बीए और बीएससी बायोलॉजी प्रथम सेमेस्टर की चौथी मेरिट के छात्र छात्राओं के लिए सोमवार को यानी आज फीस जमा करने का अंतिम अवसर है। जल्द से जल्द आप इसके लिए कॉलेज की वेबसाइट www.bcb.ac.in पर लॉगिन करके दिए गए निर्देशों को पालन करें और मेरिट रोहिलखंड विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली सत्र 2026-27 के अनुसार तैयार होगी। किसी भी समस्या पर विद्यार्थी पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के मध्य सेमिनार हॉल में भी संपर्क कर सकते हैं।

आईएएस पीसीएस करेंगे छात्रों का मार्गदर्शन। जी हां, तीनों पाठ्यक्रमों की मुफ्त कोचिंग के लिए 367 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। हर कोर्स के लिए 70-70 सीटें। सिविल सर्विस, नीट और एसएससी की शुरू होगी मुफ्त कोचिंग। समाज कल्याण विभाग की ओर से आईएएस एवं पीसीएस कोचिंग सेंटर्स में प्रवेश के लिए रविवार को परीक्षा आयोजित की गई। मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में परीक्षा में 387 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में पंजीकृत 572 अभ्यर्थियों में से 185 अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई और समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक अजयवीर सिंह एवं समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने केंद्र का निरीक्षण कर सकुशल परीक्षा सम्पन्न कराई।

और अभी वर्षा और झोंकेदार हवा चलने के हैं बने हुए आसार। मौसम विभाग ने जताई जल्द ही बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना और अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस हुआ है दर्ज। और श्रोताओं, आपको एक सबसे रोचक बात बताने जा रहे हैं कि मानसून में तराई के जंगल में चहक रहे हैं प्रवासी पक्षी। अगर आपको भी प्रवासी पक्षी देखने का बहुत शौक है तो चले जाइए आप, जी हाँ, पीलीभीत चले जाइए। सर्दियों में तमाम प्रवासी पक्षियों की मेहमानवाजी तराई करता है, लेकिन मानसून से ठीक पहले गर्मी में भी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके तमाम परिंदे पीलीभीत आते हैं। जानकारों की भाषा में इन्हें समर विजिटर

यानी ग्रीष्मकालीन मेहमान कहा जाता है। इनमें से कई पक्षी ऐसे हैं जो मानसून की आमद के साथ यहाँ से किसी अन्य इलाके का रुख कर लेते हैं, मगर इंडियन पिट्टा, जोकोबोन, कुक्कू, इंडियन कुक्कू, यूरेशियन रूरल जैसे तमाम पक्षी मानसून में तराई के जंगलों में देखे जा रहे हैं। इससे पर्यटन बंद होने के बावजूद भी जंगल गुलजार है और हम आप भी जंगल गुलजार कर सकते हैं। बस आप अब पेड़ पौधों को बढ़ावा दीजिए, इसे आप अपने शौक में नहीं, इसे अपने ज़रूरी काम में शामिल कीजिए। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाने का काम भी सोचिए कि हम कितने अधिक से अधिक लगा सकते हैं। अगर आपको ये सब खूबसूरती देखनी है पशु पक्षियों की भी और हरे भरे पेड़ पौधों की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं और अब आप आनंद लेंगे लोकगीतों का, और आज कलाकार हैं गीता पंत।

0: के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 9 बजे और अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
1: सुनिए दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: कि डेंगू एक वायरल फीवर है, यानी कि मच्छर द्वारा जनित है, जो मच्छर इस वायरस को, डेंगू वायरस को आदमी के शरीर में दे देते हैं। डेंगू वायरस चार प्रकार का होता है, जिसको सब वार कहते हैं, सब स्पीसीज, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। तो डेंगू बुखार के लक्षणों की अगर हम बात करें
1: जी,
0: इसके लक्षण की एक खास क्लासिकल विधि होती है, जिसे कहते हैं डबल माउंटेड हम्प। इसका मतलब ये कि डेंगू बीमारी में बुखार के संग हाथों पैरों में दर्द होता है
1: जी।
0: और जब बुखार उतर जाता है तो आदमी को बहुत ज्यादा कमजोरी होती है और डिहाइड्रेशन होता है। एक बार उतरने के बाद 2 दिन के बाद बुखार फिर से आ सकता है।
1: अच्छा।
0: और जब ये पहली बार बुखार निकल के जाता है और दूसरी बार बुखार आता है, इन दोनों के बीच का टाइम क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है
1: जी।
0: डेंगू बुखार की खासियत और है, ये कहा जाता है कि डेंगू खतरनाक बीमारी है। दरअसल देखा जाए तो डेंगू बहुत ही एक सिंपल बीमारी है। डेंगू के मरीजों में अगर 100 लोगों को बीमारी होगी तो सिर्फ 1% या 5% लोगों को लक्षण आएंगे, बाकी 90% से 95% तक लोग को मामूली वायरल फीवर की तरह होगा। देखिए, बाकी बुखार, वायरल बुखार जिसे आप गले का वायरल बुखार सबसे ज्यादा जानते हैं
1: जी,
0: जो जिसमें खांसी, जुकाम और सिर में दर्द और हाथों पैरों में दर्द होता है, उस बुखार में, या टाइफाइड का बुखार हो जो पानी से फैलता है, या फिर आप और कोई बुखार मान लें, तो उनमें बुखार में और डेंगू बुखार और मच्छर जनित बुखारों में क्या फर्क है
1: जी, जी।
0: फर्क ये है कि जो एक मच्छर ये बुखार को फैलाता है, वो एक मच्छर एक रात में 300-300 बार बाइट करता है
1: जी।
0: यानी कि एक घर के अंदर अगर एक मच्छर है तो वो उस पूरे घर के सारे लोग को काट डालेगा। इसके माने यह है, जब डेंगू बुखार शहर में एक आदमी को आता है तो बहुत तेजी से उस पूरे 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर में एक मच्छर पूरे को फैला सकता है।
1: इसी को डेंगू एपिडेमिक कहते हैं।
0: देखिए, एपिडेमिक तो तब कहते हैं जब उम्मीद से ज्यादा फैलने लगे
1: जी,
0: मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ जाएं, तब एपिडेमिक कहते हैं। अब मेरा आशय ये था कि जो मच्छर जनित बुखार है वो बहुत तेजी से फैलते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार में कई लोग तो यूं ही सही हो जाते हैं, जैसा आपने भी कहा कि बहुत साधारण बुखार है, लेकिन कई लोग जो है वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और उनकी जान तक पे बनाती है, ऐसा क्यों?
0: देखिए, पहली बात हम बताते हैं डेंगू बुखार की स्टेजेस
1: जी।
0: हालांकि अब WHO ने वो स्टेजिंग चेंज कर दी है, पर पहले हम डेंगू बुखार की 4 स्टेजेस मानते थे। पहला स्टेज जिसे अनस्पेसिफाइड वायरल फीवर कहते हैं, या जो लोग कहते हैं हमें वायरल बुखार हुआ है, उस बुखार में सिर्फ गले में हल्की सी खराश, हाथों पैरों में दर्द और मामूली हड़कन होती है
1: जी।
0: और मामूली सा बुखार आता है, प्लेटलेट काउंट भी अक्सर कम नहीं होती है। अब याद रखें, डेंगू बुखार अगर 100 लोग को होता है तो 90-95 लोग को सिर्फ ये वायरल बुखार की स्टेज हो चुकी होती है।
1: अच्छा।
0: यानी कि जो अगर हम इन लोग का, जिस समय शहर में अगर डेंगू फैला है या कुछ लोगों के डेंगू की रिपोर्टें आ रही हैं, तो ये जो वायरल फीवर वाले जो लोग आते हैं, इनकी अगर आप जांच कराएं PCR, तो इनको भी डेंगू निकल के आएगा।
1: अच्छा।
0: अब ये लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं मामूली दवा लेकर के
1: जी।
0: दूसरी स्टेज होती है जिसे हम डेंगू

0: फीवर कहते हैं या डेंगू वायरल फीवर कहते हैं, इसमें प्लेटलेट काउंट कम होने लगती है, आदमियों को पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं, पार्टी से ब्लड आ सकता है, दांत से खून आ सकता है या महावारी ज्यादा हो सकती है। ये डेंगू फीवर है
1: जी,
0: जिसमें प्लेटलेट काउंट कम है और ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरी स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में ब्लीडिंग अलग से नहीं होती है, ब्लीडिंग तो डेंगू फीवर में ही होती है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में कैपिलरी लीक होने की वजह से, नाड़ियों के गीला हो जाने की वजह से शरीर से पानी नाड़ियों से निकल के लीवर में, पेट में, सीने में एडमिट होने लगता है और बीपी कम हो जाता है, मरीज को चक्कर आने लगते हैं। ऐसे मरीजों को लीवर पे सूजन मिलेगी, सीधे हाथ के लंग पे पानी भरा हुआ मिलेगा और पैरों में भी सूजन आ सकती है। ऐसे मरीज डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, उनको बार बार प्यास लगती रहती है और बीपी कम होता है। बीपी कम होना डेंगू हेमरेजिक फीवर का मेन लक्षण है।
1: अच्छा।
0: और चौथी स्टेज होती है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन या सीरोसाइटिस। ऐसी स्टेज में मरीज के लीवर, गुर्दे और सांस, तीनों चारों चीजें जो खराब होती हैं। इन चारों स्टेजेस के अलावा एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम।
1: जी जी।
0: डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कैपिलरी लीक यानी कि नाड़ियों के लीक करने की वजह से हो जाता है, पानी निकल जाता है। अच्छा मुकेश जी, हम एक बात आए मैं बताना चाहूंगा, दरअसल प्लेटलेट होते क्या है, आप जानते हैं क्या होते हैं प्लेटलेट्स?
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि प्लेटलेट्स के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं और आप तो ये भी कहते हैं।
0: जी बिल्कुल। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं चोट लगने पे खुरन बन जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आप इस तरह से समझिए कि खुरन के बहुत महीन महीन माइक्रोस्कोपिक टुकड़े हैं जो खून में घुले हुए हैं
1: जी,
0: और कहीं पे चोट लगने पर वहां पे आके वो चिपट के खुरन बना देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इन प्लेटलेट्स का पहला काम ये होता है कि कहीं से ब्लीडिंग हो तो ये उसको आके खुरन वहां पे बना दें और रोक दें, भले ही ब्लीडिंग इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। और दूसरा काम होता है सरल भाषा में समझाने के लिए कि इन प्लेटलेट्स का काम होता है नाड़ियों की इंटीग्रिटी को बना के रखना, मतलब नाड़ियों में ये सीमेंट का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में सिर्फ ईंटें हों और सीमेंट ना लगाओ या प्लास्टर ना हो तो क्या होगा, बाहर का पानी अंदर आ जाएगा, अंदर का पानी बाहर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो मनुष्य की नाड़ियों से पानी लीक करने लगता है और पानी लीक करने की वजह से आदमी को डिहाइड्रेशन होता है, हालांकि उसको कोई दस्त नहीं हुआ, कोई उल्टियाँ नहीं हुई, तब भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और उसको ऐसे मरीज को अगर आप ग्लूकोज चढ़ाएं भी तो भी वो ग्लूकोज नाड़ियों से निकल के पेट में, सीने में भर जाता है। हमने अक्सर देखा है गाँव देहात में कि डॉक्टर लोग वहाँ के जो वो खूब सारी बोतलें लगा देते हैं, और बोतलें अगर पहली स्टेज में लगाएं तो ठीक है, ये कैपिलरी लीक के बाद बोतलें लगाने से मरीज की सांस फूलने लगती है और पेट फूल जाता है। तो ये प्लेटलेट का असली काम ब्लीडिंग रोकना और कैपिलरी लीक रोकना है।
1: डॉक्टर साहब कई जगह ये कहा जाता है प्लेटलेट जरूर चढ़ाई जाएंगी, जैसा आपने भी स्वीकार किया, लोग बोतल के अलावा प्लेटलेट चढ़ाने की बात भी करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट चढ़ाने की एकदम जरूरत नहीं होती, सच्चाई क्या है?
0: देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ
1: जी।
0: प्लेटलेट्स तो को खुरन के टुकड़ों की तरह समझिए,
1: बिल्कुल
0: उनकी जरूरत तब है जब कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है।
1: अच्छा।
0: अगर पेशेंट को कहीं से बड़ी ब्लीडिंग नहीं हो रही है और आप प्लेटलेट चढ़ा दें तो वो बजाय चोट पे चिपकने के वो फेफड़ों में चले जाएंगे, वहां पे चिपकेंगे, वहां पे इन्फेक्शन और निमोनिया करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर आप कोई प्लेटलेट चढ़ाएं तो उनका असर सिर्फ 6 से 8 घंटे तक ब्लड में रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है किसी की प्लेटलेट कम है और प्लेटलेट चढ़ा के आप उनकी संख्या बढ़ा लें। अगर आप आज प्लेटलेट चढ़ाएंगे तुरंत जांच करेंगे 1 घंटे बाद तो प्लेटलेट आपकी बड़ी हुई मिलेंगी, लेकिन अगले दिन सुबह करेंगे तो प्लेटलेट फिर उतनी ही मिलेंगी जितनी पहले थी। तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत सिर्फ तब होती है जब बहुत मैसिव, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, किसी को उल्टियों में खून आ रहा हो या लगातार लाल टट्टी आ रही हो या ब्लीडिंग उसकी हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही हो।
1: ये तो डॉक्टर साहब टेक्निकल बात है, तकनीकी बात है, और ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बताइएगा जो डेंगू के मरीज हैं उनका इलाज किस तरह होता है और क्या खास बातें ध्यान रखनी होती है डेंगू के मरीजों को?
0: डेंगू 4 वायरसेस का होता है, डेंगू 1, डेंगू 3, डेंगू 4। जिसको जीवन में पहली बार डेंगू हुआ तो 100 में से 90 लोगों को सिर्फ वायरल बुखार की तरह होके चला जाएगा। इन्हीं लोगों को अगर दूसरी बार डेंगू हुआ तो वो वायरल फीवर की तरह नहीं होगा, तो उसमें उसकी विविधता बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा सीरियस होके होगा। क्योंकि एक बार डेंगू होने से उस टाइप के डेंगू के लिए जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, लेकिन बाकी तीनों प्रकार के डेंगू वायरस से मनुष्य क्रॉस

0: रिएक्शन करने लगता है।
1: तो अगली बार अगर डेंगू होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होगा।
0: जी हाँ, इसीलिए जब डेंगू के सीजन में किसी को वायरल फीवर हो तो उन्हें डेंगू की जांच करा लेनी चाहिए और वो PCR जांच से ही सिद्ध होगा। उन्हें पता चल गया कि आपका जो वायरल फीवर था वो दरअसल डेंगू था, तो अगले साल डेंगू के मौसम में आप बच के रहिए।
1: डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज समय पर अस्पताल आ जाता है, उसका इलाज आप शुरू कर देते हैं, तो कितना समय तक लग सकता है डेंगू के मरीज को ठीक होने में?
0: ये निर्भर करता है वो कौन सी स्टेज में आया। अब आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि इतने ज्यादा अस्पताल गांव देहात में खुल गए हैं कि ज्यादातर लोग अपने जानने वाले डॉक्टर से ही इलाज कराते हैं। हमारे पास तक वो मरीज आते हैं जिनकी प्लेटें बहुत कम हो गई, जिनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, गुर्दे खराब हो गए या लीवर खराब हो गया। लेकिन अगर प्रथम या सेकंड स्टेज में कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो वो ये जान लें कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज डेंगू की, यानी कि वायरल फीवर और डेंगू फीवर की स्टेजेस में उसका सबसे बढ़िया इलाज है ORS पीता रहे, तो यानी कि नमक पानी का घोल पीता रहे, तो उसको कोई भी कमी नहीं होगी और उसका फीवर बिल्कुल मामूली वायरल की तरह होके चला जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि इस समय बुखार का सीजन लोग कह रहे हैं और देखने में भी आ रहा है बुखार के बहुत मरीज आ भी रहे हैं, क्या खास बात बताना चाहेंगे आज की सेहत की पाठशाला जो दीपमाला लेकर आया है, उसमें क्या संदेश है आपका हमारे श्रोताओं के लिए?
0: मेरा संदेश यह है कि आज के सीजन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर बुखार हो रहा है तो गले में खराश भी हो, बदन में दर्द भी हो, तो फौरन ही ORS पीना शुरू कर दें और अपनी प्लेटलेट्स की और CBC की जांच कराएं। कभी भी अकेले प्लेटलेट्स की जांच ना कराएं, हमेशा CBC की जांच कराएं और जो है बिना जांच के दवाई ना लें।
1: अक्सर जब बुखार होता है किसी भी व्यक्ति को तो मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल की गोली लेकर खा लेते हैं, क्या सुझाव है डॉक्टर साहब, क्या ऐसा करना उचित है? और अगर पैरासीटामोल ही मेडिकल स्टोर से लेकर खानी है तो कब तक खा सकते हैं?
0: देखिए, आप मैं फिर से दोहराता हूँ, बुखार कोई बीमारी नहीं होती, बुखार तो बीमारी का लक्षण है। आप पैरासीटामोल खा के बुखार को दबा देंगे लेकिन बीमारी नहीं जाएगी। आप पैरासीटामोल खाएंगे तो 6 से 8 घंटे तक आपका बुखार कम रहेगा, बदन का दर्द कम रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ पैरासीटामोल खा के काम नहीं करना है, आपको अपनी बीमारी का भी इलाज करना है। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी का लक्षण है। बुखार तब होता है जब आपका शरीर बीमारी से लड़ता है। बीमारियाँ होती हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस, लेप्टो, तो जब तक आप मूल बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तब तक दवाई बंद करते सही बुखार बार बार आने लगेगा।
1: डॉक्टर साहब, डेंगू का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, एक कपकपी सी होने लगती है, इतना डरावना है डेंगू नाम ही, लेकिन आप कहते हैं डेंगू से डरना मना है।
0: जी बिल्कुल सही है, देखिए डरते समय आदमी जो है मिस्टेक्स करता है, डर की वजह से आदमी उत्तेजना में आ जाता है और गलत फैसले लेता है। डर की वजह से लोग प्लेटलेट्स पे प्लेटलेट चढ़ाते हैं और डर की वजह से लोग प्लेटलेट कम होने पे डॉक्टर पे सवार हो जाते हैं। तो डेंगू बुखार में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मेरा मानना तो है किसी भी बीमारी में डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है, मारे डेंगू के डर के लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
1: तो सेहत की पाठशाला में आज आपने जाना कि क्या है डेंगू बुखार और किस तरह से ये प्रभावित करता है लोगों को, कितना खतरनाक होता है। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के साथ अगली सेहत की पाठशाला लेकर आएगा एक बार फिर दीपमाला। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपमाला लाया सेहत की पाठशाला।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं और अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से जिन्हें रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन के आवाजों में ये गीत आपने सुना। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन, परंपरा टंडन ने मिलकर संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक और

सब कुशल मंगल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू कक्कर और वंदना सक्सेना की आवाजें थी। समीर अंजान ने इस गीत को लिखा था। साथियों, हरे भरे लहलहाते पेड़ पौधे, सुंदर बहती पुरवैया, ये सभी कितने सुंदर लगते हैं ना। और इन पेड़ पौधों की छाव में बैठने

और इन्हें निहारने में बड़ा अच्छा लगता है। बैठकर देखिए साथियों, इन दिनों 1 से 7 तारीख तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव सप्ताह हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और इस वर्ष केवल पौधा ही न लगाएं बल्कि उसके संरक्षण का भी संकल्प लें, यानी उनके देखभाल के, उन्हें सींचना, उन्हें संवारना, उन्हें निहारना, सब कुछ करते रहिए। एक पेड़ स्वच्छ हवा, शीतल छाया और आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य है। तो आइए हरियाली बढ़ाएं और धरती को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करें।

लापता लेडीज फिल्म का ये गीत आपको श्रेया घोषाल की आवाज में सुनवा रहे हैं। स्वानंद किरकिरे गीतकार हैं और राम संपत संगीतकार।

प्यारा सा गीत आप श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था।

एनिमी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन और रीना गिलबर्ट और यशिका सिक्का की थी। अब इसी गीत के साथ ही सविता सिंह को आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सकुशल, स्वस्थ और सानंद रहिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 9:30 हुए हैं और अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: लीजिए सुनिए फोकस नेत्रालय डीला पीर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेला।

0: तालाब बरेली, डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
1: मित्रों, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य ही होता है, क्योंकि शांत रहकर ही हर कठिन परिस्थिति को जीता जा सकता है।
2: जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? अच्छे ही होना चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम में विषय है नाखूना और इसका इलाज। और आज इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ हैं फोकस नेत्रालय बरेली की डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, MBBS MS, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ।
3: नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फोकस नेत्रालय आई हॉस्पिटल, मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट, आपके साथ फिर जुड़ी हूँ एक नए क्या कहते हैं विषय के साथ में
2: जी।
3: और उस विषय
2: नाखूना और इसका इलाज।
3: बिल्कुल, नाखूना
2: और उसका इलाज।
3: और उसका इलाज,
2: तो क्या लक्षण होते हैं नाखूना के जो ये इंसान परेशान हो जाता है जी?
3: नाखूना, जैसे कि आपने नाम से ही क्या कहते हैं समझ सकते हैं, नाखूना नाखून क्या होता है? नाखून जो है आपके उंगली पे जो नाखून होते हैं उस तरीके से क्या है कि वो बढ़ता चला रहता है जब तक आप उसे काटे नहीं, है ना। तो ये नाखून की तरह, जैसे अगर आप बहुत लंबे जब नाखून करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे से चौड़े होते चले जाते हैं और ऊपर से तिकोने होते चले जाते हैं, और ये बढ़ते ही चले जाएंगे जब तक आप इसे काटेंगे नहीं। इनसे फायदे तो कम, फैशनबाजी और नुकसान ज्यादा रहता है, है ना। तो उसी तरीके से जो आंख में नाखूना होता है, ये एक परत है जो कि आंख की काली पुतली पे चढ़ती चली जाती है, और जब तक आप इसे हटवाएंगे नहीं तब तक ये चढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आंख में रोशनी कम हो जाएगी। तो ये नाखूना की समस्या, इसको कहा जाता है कि एक सफेद या लाल रंग की परत जो है वो आपके काली पुतली पे चढ़ना शुरू होती है और ये चढ़ते चढ़ते काफी आगे तक बढ़ती चली जाती है। इसको जो है हम देखते हैं मशीन द्वारा, अपने यहाँ पे फोकस में मशीन पे देखा जाता है कि ये जो नाखूना है, कुछ लोगों के नाखूना एट्रॉफिक यानी कि बैठा हुआ होता है और कुछ लोगों में प्रोग्रेसिव होता है, जिसमें जो नाखूना लाल होता है और आंख में बढ़ने की इसके लक्षण होते हैं। तो हम जांच के द्वारा ये देखते हैं कि ये प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है, मतलब ये बढ़ने वाले की तरफ ज्यादा जा रहा है या ये सूखने की तरफ है। तो मशीन के द्वारा जब हम इसको देखते हैं कि ये बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है, तो इसके उपरांत ही हम डिसाइड करते हैं कि इसका ऑपरेशन होना है या नहीं होना है। तो जो नाखूने के लक्षण है उसमें यही है कि आंख आपकी लाल रहती है एक तरफ से, जिस तरफ नाखूना होता है उसी तरफ लाली होती है, दूसरी तरफ से नहीं। बहुत कम केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों तरफ, आंख के दोनों तरफ नाखूना होता है और दोनों ही आंखों में नाखूना होता है। तो ये नाखूना जो है आंख में लाली करता है, आंख में खुजली करता है, आंख से पानी ज्यादा आता है और रोशनी कम होने लगती है, चश्मे के नंबर की जरूरत पड़ने लगती है।
2: डॉक्टर साहब, जैसे आप कहते हैं कि हाथों को हमेशा साफ रखें तो आंख में कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, साफ हाथ नहीं होते हैं ये, लेकिन नाखूना होता कैसे है? क्या
3: ये जो नाखूना होता है, ये हमारी आंख जो काली पुतली है उसके चारों तरफ भगवान ने पहरेदार बिठाए हुए हैं। ये पहरेदार जो सफेद हिस्सा है उसको आंख की काली पुतली पे चढ़ने नहीं देते हैं
2: जी।
3: तो जो लोग सूरज में या जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको हम कहते हैं या सूर्य में ज्यादा रहते हैं, उनकी आंखों में ये जो है नाखूना होने लगता है, क्योंकि ये सूर्य की गर्मी से जो काली पुतली के चारों तरफ के ये जो पहरेदार हैं ये खत्म होने लगते हैं। तो जो जैसे किसान भाई लोग हैं और जो लोग क्या कहते हैं भीषण गर्मी में अपना क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, है ना, वो लोगों को ये ज्यादा समस्याएं रहती हैं और उनकी आंखों में नाखूना ज्यादा हो रहता है। तो मेनली इसका एक कारण ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सूर्य की वजह से हमारी आंखों में जा रहा है, उसमें हमारे को क्या कहते हैं से नाखूना होता है। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि काला चश्मा जरूर लगाकर बाहर निकले। अब किसान भाई ये भी पूछते हैं कि हमें किसानी करनी है, हम काला चश्मा लगा के किसानी कैसे करें, हम काला चश्मा लगा के हम अपना रोजी की मजदूरी कैसे करें। लेकिन आपको इसका कोशिश करके यही रखनी है कि आदत डालेंगे तो ये आदत भी

0: जाएगी। कुछ कुछ आदतें, अच्छी आदतें हमें डालनी होती हैं, वो अच्छी आदतें हमारे को लंबे समय तक बचाकर रखती हैं।
1: डॉक्टर साहब, सही आपने कहा कि अब जमाना बदल गया है। पहले कुर्ता और धोती पहन के किसानी करते, खेती करते थे, अब तो पैंट शर्ट और जूते पहन के ट्रैक्टर चला के खेती होती है, तो बदलना चाहिए ना इस तरह से।
0: बिल्कुल, यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि कुछ कुछ आदतें अच्छी होती हैं जो हमें बदलनी चाहिए अपने लिए, और उनकी उनमें से एक आदत ये भी है कि हम जब भी धूप में बाहर निकलें तो अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन के साथ में। हर काला चश्मा जो है वो गॉगल नहीं है, हर काला चश्मा आपको सूर्य की रोशनी से बचाव नहीं देगा, लेकिन हमारे अस्पताल में 100% यूवी फिल्टर, जो यूवी फिल्टर यानी कि सूर्य को सही मायने में उसको फिल्टर करे और आंख तक ना पहुंचाए, ऐसे जो चश्मे होते हैं उनके इस्तेमाल करने से हमारी आंख सुरक्षित रहती है, नाखूना जल्दी नहीं होता है, मोतियाबिंद जल्दी नहीं होता है, पर्दे में जो ARMD एक समस्या होती है वो जल्दी नहीं होती है। तो सूर्य के से होने वाली कई सारी आंख में जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं से हमारे को सिर्फ नाखूने से ही बचाव नहीं मिलता है, उन सारी समस्याओं से बचाव मिलता है। तो इस भीषण गर्मी में इस बात की आदत जरूर डालें कि गॉगल्स लगाएं, और वो भी 100% यूवी फिल्टर वाले ही गॉगल लगाएं। ये अपने अस्पताल में अवेलेबल हैं जो कि आप कभी भी ले सकते हैं।
1: तो इसके बारे में और अधिक जानकारी अगर चाहते हैं श्रोता, तो हम नंबर अपने श्रोताओं को बता देते हैं, 9068805050। और अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो ऐसे में क्या अगर नखुना हो जाता है, क्या लापरवाही नुकसान दे सकती है, जैसे ऑपरेशन नहीं कराते हैं, लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं।
0: हाँ बिल्कुल, लापरवाही तो ऐसी चीज है, तो लापरवाही जो है वही दुर्घटना को अंजाम देती है ना।
1: तो ये तो सड़क पे भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए ऐसे जीवन में भी, और नाखून के प्रति।
0: हाँ, तो शरीर में कभी भी कोई भी समस्या है तो उसको जरूर आकर एक बारी कंसल्ट करना चाहिए कि हमको इस समस्या से जो है किस तरीके से समाधान मिल सकता है। तो नाखूने में भी अगर हम लापरवाही करते हैं, हम सोचते हैं चलो अभी तो थोड़ा सा है, अभी तो काली पुतली पे चढ़ना शुरू हुआ है, अभी और बढ़ेगा तब देखेंगे, या चश्मे का नंबर आपका बार बार, ये नाखूना जो है नाखूने के में चश्मे का नंबर भी बार बार बदलता है, तो ये नाखूने को अगर ऐसी छोड़ देंगे और काली पुतली पे चढ़ने देंगे तो ये नाखूना जो है अंततः हमारी आंख की रोशनी को कम कर देगा और ये डैमेज परमानेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ऑपरेशन करवा लें बाद में और नाखूने को हटवा लें और आपकी रोशनी आंख में पूरी तरीके से कायम हो जाएगी। कभी कभी कायम हो जाती है और कभी कभी आपको चश्मा लगाना पड़ता है, और कभी कभी चश्मे के बावजूद भी हमारी आंख में रोशनी पूरी बनकर नहीं आ जाती है जब हमारा मोतियाबिंद बहुत हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने मोतियाबिंद की बात की, आमतौर पर हो जाता है, लेकिन नाखूना के साथ भी मोतियाबिंद का संबंध है?
0: नाखूने और मोतियाबिंद का सिर्फ यही संबंध है कि दोनों का एक होने का कारण है सूर्य और यूवी रेडिएशन, है ना। तो मोतियाबिंद और नाखूना दोनों ही सूर्य की वजह से आजकल ज्यादा हो रहा है लोगों को, और क्या कहते हैं, लेकिन नाखूने और मोतियाबिंद जो है वो दोनों ही ऐसे बीमारियां हैं जिसका इलाज 100% संभव है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर ऐसे बीमारी पता है जिसका इलाज है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, आप आइए और इलाज करा लीजिए, है ना। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज ही नहीं है, परेशान तो हमें तब होना चाहिए जब बीमारी लाइलाज हो, जब हमें पता है कि हमारे को बीमारी है और उसका इलाज है तो ये अच्छी बात है, इससे परेशान थोड़ी ना होना चाहिए। अब लोग आते हैं, हाय मुझे मोतियाबिंद हो गया, अरे मुझे मोतियाबिंद कैसे हो सकता है, मुझे क्यों मोतियाबिंद हो गया, हम पड़ोसी को तो मोतियाबिंद अभी तक हुआ नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोतियाबिंद का इलाज है, आप ऑपरेशन कराइए और रोशनी अपनी पूरी वैसी की वैसी लीजिए, और उससे अच्छी कई बारी मिल जाती है अगर हम ऑपरेशन कराते हैं। उसी तरीके से नाखूना, अरे मुझे तो नाखूना हो गया, मेरे पड़ोसी को नहीं हुआ, अरे मुझसे ही क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या कर्म कर दिए थे कि मुझे नाखूना हो गया।
1: मतलब ये हुआ कि पड़ोसी के सुख में भी सुखी रहना चाहिए और पड़ोसी के दुख में भी साथ देना चाहिए जी।
0: हाँ, अगर आप ये सुन रहे हैं एपिसोड और आपको पता है, समझ में आ गया है कि नाखूना क्या होता है, तो अपने साथ साथ अगर अपने पड़ोसी या किसी को भी नाखूना है या मोतियाबिंद है तो आपको उनको ये जानकारी देनी चाहिए कि सही समय पे लापरवाही किए बिना अगर आप अपना सही समय पे इसका इलाज करा लेंगे तो पूरी जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हमेशा सुकून से रह सकते हैं।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है।

0: जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आँख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
1: सब क्या इसमें रोशनी भी जा सकती है किसी हद तक अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो?
2: बिल्कुल, अगर ये नाखूना जो है हमारी पुतली के बीचों बीच वाले हिस्से में पहुंच गया, जिस हिस्से से रोशनी आंख के अंदर जाती है, अगर उस हिस्से तक भी ये पहुंच गया तो जो है हमारी आंख की रोशनी भी जा सकती है और परमानेंटली कम हो सकती है। ऑपरेशन के बाद भी रोशनी पूरी आने की संभावना नहीं रहती है।
1: आम व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि नाखूना हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा है?
2: मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बदलता चला जा रहा है, हम लोग शीशे के सामने बहुत रहते हैं। हर कोई जो है कंघा करते समय, नहाते समय, मेकअप करते समय, ठीक है, और सोशल मीडिया पे फोटो अपनी लगाते समय, अपने रील बनाते समय जो है अपने आप को देखता जरूर है। तो जब हम अपने ही आंखों में देखते हैं, तो जब हम शीशे में अपने को देख रहे हैं, हमें अपनी आंखें दिख रही हैं, तो हम सबको ही पता चल जाता है कि कोई एक सफेद रंग का मांस जो है हमारी काली पुतली पे चढ़ रहा है। जब ये सफेद रंग का मांस हमारी काली पुतली पे चढ़ रहा है तो हमें आके मशीन पे जांच करानी चाहिए कि ये जो है बढ़ने की कगार पे है या ये सूखा हुआ है। अगर सूखा हुआ है तो उसे पड़ा रहन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है उसका ऑपरेशन करना। लेकिन अगर ये इसके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि हम मशीन पे देखते हैं कि ये बढ़ने की कगार पे, अगर ये बढ़ने की कगार पे है तो जरूर हमें जो है इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए, ताकि बढ़ने से पहले ही हम इसको वहीं पे ही रोकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पिछले कार्यक्रम बताया था कि नासूर, अब नाखूना बता रहे, क्या ये इलाज की सारी सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में?
2: बिल्कुल, ये सारी सुविधाएं हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। आप फोकस नेत्रालय आकर अपना इलाज सही समय पे जरूर करा सकते हैं और कराना ही चाहिए।
1: तो अब सही समय एक और आ गया है डॉक्टर साहब, वो क्या है? नंबर बताने का। अपने श्रोताओं नंबर बता दें
2: जी।
1: 9068805050 9068805050। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता ये नंबर लिख चुके होंगे, कार्यक्रम के अंत में बताएंगे दोबारा फिर जी।
2: तो अब ये मैं ये भी कहना चाहूंगी अब आपको इलाज के संबंध में कि नाखूने के ऑपरेशन की भी कुछ अलग अलग तरीकों की टेक्निक आ गई हैं। ये नई टेक्निक्स हैं जो कि क्या होता है कि जब हम नाखूने को पुराने तरीके में नाखूने को हम हटा तो देते थे, लेकिन वो दोबारा ना हो इसके लिए कोई सुविधा नहीं थी। दोबारा हो सकता है ऑपरेशन के बाद भी, अगर हमने उस तरीके से नहीं कराया जिस तरीके से जो उसको रोकने का एक और ग्राफ्ट होता है वो हम चिपकाते हैं। तो पहले जो है, और ये 50% तक लोगों को दोबारा हो जाएगा अगर हम बिना ग्राफ्ट के कराएंगे। तो हम जो है ऑपरेशन के दौरान एक ग्राफ्ट चिपकाते हैं, वो ग्राफ्ट चिपका रहता है और वो एक तरीके से सुरक्षा बैरियर की तरीके से या फेंस की तरीके से वो वहाँ पे रहता है और वो नाखूने को दोबारा उसके ऊपर चढ़ने नहीं देता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम अस्पताल आ रहे हैं तो फोकस आ रहे हैं, तो हमें यही कहना है कि हमें नाखूने का वो वाला ऑपरेशन कराना है जिसमें ग्राफ्ट लगाते हैं। तो हमारे अस्पताल में इस ग्राफ्ट की सुविधा है और ग्राफ्ट लगाकर ही हम करते हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, हम बिना ग्राफ्ट के ही ऑपरेशन नहीं करते हैं।
1: आपने ऑपरेशन की बात की, लेकिन हमारे श्रोता मन में आता होगा कि दवाइयां भी खाने को मिलती हैं, क्या खाई जाती है इसमें, ऐसा है कुछ?
2: किसी भी दवाई से या किसी भी ड्रॉप से ये जो है नाखूना नहीं रुकता है, ठीक है। ये हल्का जरूर पड़ जाएगा, इसमें लाली जरूर कम हो जाएगी, लेकिन ये जिस रफ्तार से इसको चलना है ये उस रफ्तार से अपना बढ़ेगा ही। तो सही समय से ऑपरेशन अगर हम करा लेते हैं तो, और ग्राफ्ट के साथ वाला ऑपरेशन जरूरी है कि ग्राफ्ट के साथ वाला ऑपरेशन अगर हम करा लेते हैं तो ये दोबारा नहीं होता। क्योंकि अभी भी मेरे पास इस जमाने में, मतलब 21वीं सदी में भी लोग आ रहे हैं जिन्होंने बिना ग्राफ्ट के ऑपरेशन कराया हुआ है और वो दोबारा हो गया है, और दोबारा जब हम उस चीज का ऑपरेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। हम दोबारा भी कोशिश करते हैं कि हम ग्राफ्ट लगाकर कर पाएं, लेकिन एक बारी नाखूने का

0: ऑपरेशन बिना ग्राफ्ट के हो गया, उसके बाद दोबारा से नाखूना चढ़ गया, तो फिर ऑपरेशन के सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये ग्राफ्ट होता क्या है?
0: ये ग्राफ्ट क्या कहते हैं, एक तरीके से मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन हम जो है उसको लगा देते हैं, झिल्ली होती है, एक परत होती है जो कि हम आंख में लगा देते हैं, ताकि क्या कहते हैं, पर्दा मान के चलिए कि एक ऐसा पर्दा है जो उस पे दोबारा से वहां तक चढ़ने नहीं दे।
2: डॉक्टर साहब, 40 साल तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन अचानक ये मोबाइल दूर से देखना क्यों अच्छा लग रहा है?
3: जी रविंद्र जी, ये शायद मेरी ओपीडी का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, स्किन पर झुर्रियाँ आ रही हैं, वैसे ही ये आँखों के नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, ये समझेंगे कि आँख एक कैमरे की तरह से है। कैमरे में एक लेंस होता है और हमारी आंख में भी एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। कैमरे का क्या काम है कि फोकस करना, उसी तरीके से हमारी भी आंख के इस लेंस का काम है फोकस करना। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कैमरे का जो लेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि वो हिल नहीं सकता। हमारी आंख का जो लेंस है वो अपनी बनावट को बदलता है, और बनावट बदलने की वजह से हमें दूर की भी बिल्डिंग दिखाई देती है और पास में मोबाइल का या न्यूज़पेपर का छोटा सा अक्षर भी हमें दिखाई देता है। तो अब सवाल ये है कि लेंस बदलता कैसे है अपनी शेप को?
2: जी डॉक्टर साहब, कैसे वो बदलता है?
3: हमारी आंखों के अंदर एक छोटी सी मांसपेशी होती है जिसको कहते हैं सीलियरी मसल, और लेंस बहुत इलास्टिक होता है, यानी कि हिल सकता है। ये मांसपेशी जो सीलियरी मसल है और लेंस है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम दूर देखते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाती है, लेंस पतला हो जाता है और हम दूर का फोकस बना पाते हैं। लेकिन जब कम किताब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर या मोबाइल देखते हैं, उस समय मांसपेशी सिकुड़ जाती है, लेंस मोटा हो जाता है, और इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। एक तरीके से आप मान के चलिए ये ऑटोफोकस है। सोचिए जैसे कैमरे में ऑटोफोकस कितना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हमारी आँखों में नेचुरली ईश्वर ने एक ऑटोफोकस दिया है, जिससे हम हर दूरी को, हर चीज़ को बहुत ही साफ, शार्प, क्लियर देख सकते हैं। तो 40 साल के बाद ये प्रॉब्लम क्यों आती है? रीज़न बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शुरुआती दौर में बचपने में तो मसल अक्सर ठीक होती है, प्रॉब्लम लेंस में आती है। बचपन में लेंस बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, जिसके जो एक फ्रेश रबर बॉल की तरीके से होता है। एज के साथ साथ लेंस धीरे धीरे सख्त होने लगता है और मांसपेशियां भी थोड़ी सी मेहनत करने में दिक्कत देती हैं। लेंस पहले जैसा मोटा नहीं बन पाता, और जब लेंस उतनी मोटाई नहीं ले सकता है, बदल नहीं सकता है, तो पास के अक्षर यानी कि मोबाइल, न्यूज़पेपर, दवाई की स्ट्रिप पर उसकी एक्सपायरी देखने का सिलसिला धुंधला होने लगता है, और इसी कंडीशन को कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया यानी पास के चश्मे आने का सिलसिला, जो कि आमतौर पे 40 साल की उम्र पे शुरू होता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आँख की नॉर्मल नेचुरल फिजियोलॉजी है।
2: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, चश्मा लगा लिया तो क्या नंबर भी बढ़ता रहता है?
3: ये बिल्कुल गलत है। चश्मा नंबर नहीं बढ़ाता, ना वो नंबर बढ़ता है। चश्मा सिर्फ आपको फोकस उस जगह पर करता है जहाँ पे आप करना चाहते हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोग कहते हैं मैं एक्सरसाइज कर लूँगा तो चश्मा हट जाएगा, या मैं ये खा लूँगा तो चश्मा हट जाएगा, या आई ड्रॉप से ठीक हो जाएगा। तो ऐसा आँखों की एक्सरसाइज आँखों के लिए यूज़फुल ज़रूर होती है, लेकिन प्रेस बायोपिया में नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मांसपेशी की नहीं है, ये लेंस की है और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी की है। तो इसलिए चश्मा लगाने से आपको आराम ही मिलेगा, आपकी आंखों में स्वास्थ्य बना रहेगा, आप बिना जोर के, बिना पानी बहे आंखों में, बिना आंख के दर्द और सरदर्द के साथ आराम से पास का पढ़ पाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है कि जो ये पास का चश्मा होता है, ये 1.5 से 2 साल में बदलता भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार चश्मे का नंबर मिल गया तो फिर आप वही चश्मा आजीवन लगा सकते हैं। चश्मे का नंबर लगभग 1.5 से 2 साल में बदलता रहता है।
2: डॉक्टर साहब, आजकल तो चश्मे बड़े खूबसूरत आते हैं जो चेहरे की खूबसूरती को

0: और भी चार चांद लगा देते हैं।
1: आजकल के टाइम में बहुत तरीके के चश्मे के ऑप्शंस आ गए हैं, रीडिंग ग्लासेस हैं, प्रोग्रेसिव ग्लासेस हैं, मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, ये सारे चश्मे आ गए हैं। आप इनमें से कोई सा भी अच्छा चश्मा बनवा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है कि क्या चश्मा आजीवन लगाना पड़ेगा?
1: चश्मा आपको आजीवन नहीं लगाना पड़ेगा। तो अंत में मैं ये कहूंगी कि 40 साल के बाद चश्मा लगाना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपकी आंखें भी उतनी ही नेचुरली एज कर रही हैं जितनी बाकी शरीर। तो इसलिए इसको छुपाने से कोई लाभ नहीं है, इसको एक्सेप्ट करिए जिस तरीके से बाकी चीजें भी हम एक्सेप्ट करते हैं। सही पावर का चश्मा लगाएं, क्योंकि जिंदगी की हर खूबसूरत कहानी साफ नजर से ही शुरू होती है।
0: डॉक्टर साहब, आपने चश्मे की बात बहुत अच्छी कही है, लेकिन सही चश्मा कैसे चुने जो आंखों के लिए सही हो, रोशनी सही रहे?
1: तो ये बात को समझें कि सही चश्मा सिर्फ और सिर्फ फैशन नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ वो चश्मे का नंबर ही नहीं है, ये एक तरीके की मेडिकल डिवाइस है। सबसे पहले सही नंबर चूज करें, सही नंबर निकलवाएं, उसके बाद ही एक अच्छा फ्रेम चूज करें, क्योंकि महंगा फ्रेम और अच्छा लेंस भी बेकार है अगर उसमें चश्मे का नंबर गलत निकला है। तो सबसे पहले एक अच्छा चश्मे का नंबर निकलवाएं। फिर जब हम फ्रेम चूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि नाक पर वो ज़्यादा दबाव ना डाले, कानों के पीछे दर्द ना करे, फ्रेम हल्का हो, लाइट वेटेड हो, ऐसा कोई मेटल ना हो जिससे आपकी स्किन को छूकर वो रिएक्ट करे। आंखें जो हैं वो लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में रहें, वो ऊपर की तरफ ना हो, जब आप नीचे झुकें सर को हिलाएं तो वो बार बार फिसले नहीं। अगर इस तरीके की फिटिंग है तो चश्मे का फ्रेम का साइज सही है, वरना वो फ्रेम आपकी चेहरे के लिए, आपकी आंखों के लिए सही नहीं है। तो फ्रेम का सही साइज का चुनना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ज़्यादा महंगा चुनने की ज़रूरत है। लेंस बहुत ज़रूरी है, फ्रेम पर तो लोग बहुत कि अच्छा फ्रेम है, फैशनेबल है, तो ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन लेंस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ऐसा ना करें, जिस तरीके से आप फ्रेम ले रहे हैं उसी तरीके से मैं लेंस देख रही हूँ। अच्छा लेंस लेंगे, उसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे, उसमें चौंध नहीं लगेगी, उसमें डिपॉजिट्स नहीं होंगे, तो वो आपकी आंख को आराम देंगे। आपके लिए इसीलिए ज़रूरी है कि लेंस का भी, अच्छे लेंस का चुनाव करें, खास तौर से बच्चों के लिए, कि बच्चों का चश्मा बार बार गिरता है तो प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट के लेंसेज ही ज़्यादा बेहतर है, हल्के भी रहते हैं और टूटने का खतरा भी कम रहता है। जो लोग कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ब्लू कट ग्लासेस भी आते हैं, इससे आंखों पे जो ब्लू फिल्टर की लाइट है वो नहीं आती है और चौंध हमारी आंखों में नहीं लगती है। जो ब्लू कट ग्लासेस का फ़ायदा मुख्य रूप से ये है कि ग्लेयर या कम्फर्ट कुछ लोग महसूस करते हैं, लेकिन इससे आंखों की बीमारी रुकती है, जिसको कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। ये प्रॉब्लम स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है उनके लिए होती है। तो जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है वो लोग अपने स्क्रीन पर या तो ब्लू फिल्म लगवा सकते हैं या ब्लू फिल्टर ग्लासेस ले सकते हैं। बार बार पलकों को झपकाएं और 20-20-20 रूल का फॉलो करें, यानी कि हर 20 मिनट में 20 सेकेंड का ब्रेक लें और आसमान की तरफ देखें। अगर आप बार बार अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं, इस तरीके का आपका कोई प्रोफेशन है, कोई काम है जिसमें अंदर का भी काम है और बाहर जाने का भी काम है, तो आप फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस का भी चुनाव कर सकते हैं। ये धूप में गहरे हो जाते हैं और धूप को आंखों से बचाते हैं, जिससे हमारी आंखों में मोतियाबिंद, नाखूना और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और कमरे में आने के बाद सफ़ेद हो जाते हैं। तो आपको बार बार चश्मा बदलना नहीं पड़ता है।
0: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आंखों के बारे में और खास तौर पे चश्मे के बारे में आपने बताया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जान है तो जहान है कार्यक्रम अब डॉक्टर साहब अंतिम पड़ाव पर है, तो हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है अपनी आंखों के लिए, अपनी आंखों के लिए जो है थोड़े से सजग सचेत रहें, सजग रहें और

0: अपने लिए भी, अपनी आंखों के लिए भी, क्योंकि आंखें जो हैं वो शरीर का बहुत ही अनमोल हिस्सा है, उसको छोटा समझ के नज़रअंदाज हम लोग कर देते हैं, आंखों में हल्की फुल्की लाली खड़कन आई तो बाज़ार से जाके ड्रॉप ले लेते हैं। सही इलाज, सही समय पे इलाज और सही इलाज कराने से छोटी समस्या बड़ी ना होने दें, और क्या कहते हैं, अपना अस्पताल से ही इलाज कराएं, सही समय पे इलाज कराएं, ताकि कोई भी समस्या जो है आपकी रोशनी को कम ना होने दे और आपके जीवन में खूब अच्छे, जीवन भर आप खूब अच्छी रोशनी के साथ और खूब अच्छी रंग बिरंगे चीजों को देखते रहें।
1: पहले एपिसोड पहले आपने बताया था कि ड्रॉप जब लें तो उसे खोलें कैसे, पिन लगाएं या उसके सुराख कैसे खुलेगा उसका, जो जहां से ड्रॉप आएगी।
0: जैसे मैंने कहा 21वीं सदी हो चुकी है, लेकिन हम लोग भी कई सारी पुरानी बातों को नहीं भूल पा रहे हैं, हम उन आदतों को नहीं बदल पा रहे हैं, हमें उन आदतों को बदलना ज़रूरी है। उसमें से एक आदत जैसे मैंने बताया बदलना ज़रूरी है, वो ये है कि हमें धूप में निकलते समय एक 100% यूवी फिल्टर चश्मा लगाना ज़रूरी है। ये फैशन के लिए नहीं है, ये आँख की सुरक्षा के लिए है। उसी तरीके से जो हम नहीं भूल पा रहे हैं वो ये है कि आँख को, ड्रॉप को कैसे खोलना है। आँख की में पड़ने वाली हर ड्रॉप में एक चूड़ी बनी हुई होती है, और जब हम उसे कस के लगाते हैं तो ड्रॉप अपने आप खुल जाती है। लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं जो कि अपनी कोई भी सुई से या पिन से, जो कि अनस्टेराइल है, उससे ड्रॉप में छेद करते हैं, और जब हम छेद करते हैं और वो सुई या पिन हमारी ड्रॉप में जाती है तो ड्रॉप में जो ड्रॉप है, पानी है, वो पानी को इन्फेक्ट कर देती है और हमारी आंख में जो ड्रॉप डलती है वो बैक्टीरिया के साथ में और पहले से होती है। उसी तरीके से एक और आदत जो कि हम नहीं बदल पा रहे हैं वो ये है कि जब भी हमारे आँख में कोई समस्या होती है तो हम दुकान पे जाके और हम ड्रॉप ले लेते हैं और उससे हमारी आँख में घाव होने लगते हैं, और ये घाव जो हैं वो हमारी आँख को हमेशा के लिए रोशनी से वंचित कर देते हैं। तो अभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि आँख में चोट हुई, घाव वो लगा, घाव के बाद ड्रॉप डाल ली, और ड्रॉप डालने के बाद आँख में बुरे हाल से पस पड़ जाता है और तब तक अस्पताल तक आ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, अपनी आँखों के लिए सजग रहिए और सही समय पे सही इलाज कराइए।
1: और अब आज का कार्यक्रम जान है तो जहान है यही पर समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में विषय था नाखूना और उसका इलाज। विशेषज्ञ थी डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल। और अब रविंद्र मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें 9068805050।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 10 बजे हैं और आप सुनेंगे आपके पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में। और साथी कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आप सभी लोगों का पहला कमेंट हम तक पहुंचा है। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं। अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, कैलाश मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति का। कस्बा बराडा जिला अम्बाला से हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्ना।

गुर किरत साहुल, गुर शब्द सिंह राहुल, कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, प्राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का। निधा रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जेबुनिशा बेगम, जाहिद सैफी, आबाद खान। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल सहाने, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप। रामगढ़ कैंट छरखंड से हैं निप्पी सहाने। नाज रेडियो क्लब करेली से हैं इसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजरत फातिमा, अब्रार अहमद अंसारी, इसार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी का। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। और गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। मणिनाथ परेली से हैं आप सभी लोग डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया का। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण का। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार का। ये कमेंट हमारे पास आया है आप सभी लोगों का। भवानी पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से हैं प्रियांशी सोनी, आरोही संगीता मिस्किन, काशीनाथ गणेश, चंद्रकला वानी आरव और रितिका मस्किन का। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। गढ़ी कोटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम शानिया, इलियास मुशाहिद, अक्सा, आयशा उमर और समीना अंसारी का। पद्मा टाके नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शिवचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। वोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आशी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले। धोतर जोड़ा आष्टी से हैं दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते का। परेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं राजेश कुमार अकेला, यशोदा दे यादव, राजीव यादव और संजीव यादव। चंदौसी रोड से हैं मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम। बुद्धनगर खंडवा से हैं नदीम भाई, भेजोई से हैं राजू जी। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है याराना और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

0: ब्रांड के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है CKYC ID।
0: CKYC मतलब?
1: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, RBI कहता है
1: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सब्जी मंडी बरेली से हैं सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल, मोनिश सादिक और इनके मम्मी पापा। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद मंडलकर, वीणा मंडलकर और विविधा मंडलकर का। गांव कलमंडी खुर्द जिला झाड़ावा राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और जिला नांदेड़ यतला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल और दुर्गेश्वरी का। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पूरा राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। गांव लोहरडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, अंजलि, रीति जगमोहन, सुधीर रूतर, भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। कस्बा उघेती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके हिटलर और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव हाड़ी खेड़ा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। और जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगरेजा, पूनम गगरेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। सतुल शहर राजस्थान से है राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला।

रेवाड़, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान स्टार और नरगिस खातून का। कोका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल का। धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल का। सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश से हैं महिमा गुजराती, हर्षिता गुजराती, भूमिका गुजराती। धनुरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का। आदर्श नगर मरोड पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और मैंडी शर्मा का। बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से हैं अरुण कुमार मालवीय, सरिता मालवीय। एयरपोर्ट रोड बंदानगर इंदौर से है नारायण भाऊ खरसे, अलितर आशा रानी खरसे, संजना परी, गणेश, कार्तिक, देविका, लड्डू, स्वाति और प्रज्ञा चौधरी का। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है सेक्टर 18 जगाधारी से हैं, जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवान, मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी का। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, कैरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। शुगर फैक्ट्री गेवराई महाराष्ट्र से हैं दिनकर सालवे, रणजीत थोरात, नारायण चिरके। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली युवान और आर के राजा का। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुल्लरकर, रतनमाला सुल्लरकर, ओम कुमार कुमकुम। मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से हैं तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन अंसारी, अजरुद्दीन मोहम्मद अंसारी। और रिंगी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से हैं रविंद्र सिंह छावड़ा। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, कलापति सोनी और जगदीश जौहरी। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। चमनपुरा उदयपुर से हैं नजीब खान, सबीहा खानम, जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, अशरफ खान, रईसा खातून और मंजू निम्मी का। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। पंचकुला सेक्टर 9 से हैं आशु चुग, अश्वनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढिंगरा। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन अंसारी का। बड़ा बम चौक कंडवा मध्य प्रदेश से हैं ममता मार्केंडे, संजय मार्केंडे और बेबी किट्टू का। और ये कमेंट हमारे पास आया है विजय भांबे का। महाराष्ट्र जालना से हैं आप लोग विजय पाटिल और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बाबा कुटी रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान का। नेहरू चौक पैठर से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और ये कमेंट हम तक आया है आप सभी लोगों का। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक का। मोलागढ़, नई बस्ती, जिला बरेली से हैं मोहम्मद हसन अंसारी, तराना अंसारी, तराना भाई अंसारी और अजरुद्दीन। गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से हैं विनोद वारासा, विशाल वारासा, विकास, रोशनी, शगुन। लगान पंडरी छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल का।

हजारीबाग झारखंड से है, वीरेंद्र भगत, बालती भगत, विकास जितेंद्र, ऋषि और राहुल का। किशनगंज बिहार से हैं, रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। अनूपगढ़ राजस्थान से हैं, चक 5 एमडी पत्रोड़ा से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और सुनील जनागर का। उदयपुर राजस्थान से हैं, बाबू भाई भारती, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी का। खेल बाजार पानीपत से हैं, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानकचंद मल्होत्रा इनके, और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का का। खरसावा झारखंड से हैं, सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और परिवार के सभी लोग। नानक खन्ना का ये कमेंट हम तक पहुंचा है। सवितो सिटी हरियाणा से हैं, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव कुश और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव टुरोबाल जिला नवाशहर पंजाब से हैं, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी का। अक्षय कॉलोनी गोंदू रोड धुलिया महाराष्ट्र से हैं, मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता का। गांव बॉन्डी वाला फजिलका पंजाब से हैं, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं, बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश, राहुल। उगहती बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं, देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय गुप्ता का। शनि बाजार कस्बा उगहती से हैं, प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन, देव, प्रियल और कायरव गुप्ता का। गंज डुंडवारा से हैं, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा और अनु। गंज डुंडवारा से हैं आप लोग आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। सदर बाजार कुरावली से हैं, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हैं, मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना समा, हीना, रजिया, सुल्ताना अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से हैं, मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से हैं, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से हैं, जन्मा प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य का। छत्रपति संभाजीनगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद से हैं, सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन ओवी और ग्राम चांदुर विश्वा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं, किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े। ग्राम राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से हैं, राज गवई, राजवीर गवई और गनगोला दातागंज बदायूं से हैं, इज्जत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशा खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान का। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। वाराणसी से हैं, श्री काशी विश्वनाथ धाम से आंजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती विनायक, मोहिनी मोहित और प्यारी प्यारी कोको रानी का। राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं, नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकाश और आकांक्षा नरवाड़े का। पहाड़गंज मुल्तानी डाणा से हैं, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हैं, चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर का। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हैं, गुरमीत सिंह मीता और गाड़ी खाना चाईवासा झारखंड से हैं, जीवन विश्वकर्मा और मंजू विश्वकर्मा। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है तेजाब और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार ने।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जहाँ हैं आप वहाँ हैं हम। और ये कमेंट हम तक पहुँचा है, रावर करनाल से हैं विनोद लखनपाल और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। और कोल सिटी बरकाकाना से हैं अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, डिप्पी सहानी, मोहम्मद अफजल मलिक का। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से हैं सेमास्ट से विठ्ठप सुरेशो, सुषमा सुरेशो, परिधि, मायरा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, वधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर से हैं आप लोग मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभय मीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तानिया गौतम और इनके सभी साथी व इनके सभी दोस्त। ग्राम पंचायत बाकरगंज से ही हैं मास्टर अख्तर अली, शाहरुख अली, साहिबा, मोबीन, मोहम्मद आसिफ। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक, रोशनी राय और प्रांजल राय का। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेखा मूसा, भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना। सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू सोनकार का। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय श्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबवेल और पी बी कुलथे का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी का। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा का। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोदपुरी का। बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम और

कुसुम नेताम बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं, राजू माठे, गजानन माठे, संजय ज्ञानेश्वर, प्रकाश तांगड़े और देवेंद्र भटकर जी का। बोरखेड़ा पित्रामर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा। राजकोट गुजरात से हैं, रश्मि झरना, भरत कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। जय जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से हैं, रुपेश, महेश, प्रगेश, प्रदेश और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। लक्षणपुर से हैं, रामजी साहू, जीवन लाल राजा, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मछली गोदाम केदीमुड़ा रायगढ़ से हैं, पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं, पोपट राव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश कुलथे और रोहासी पलारी छत्तीसगढ़ से हैं, चेतन साहू, गायत्री साहू, खुशी साहू, रेशमा साहू और वर्षा साहू। मारहरा दरवाजा एटा से हैं, नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अशफ अब्बासी। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। गांधी रोड नई दिल्ली से हैं, कीर्ति नगर से मानसी गौरव और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, उत्तराखंड से मेराज जहां, गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी। सिद्धार्थ नगर दरापुर बाबली, दरियापुर बाबली से हैं, गजानन गेले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले। रावर करनाल से हैं, ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। कर्मचारी नगर रोड बरेली से हैं, गौतम ऋषि मौर्य, मिहिलाल मौर्य, प्रीति, रीना और सुनीता मौर्य का। संबलपुर कांकेर से हैं, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। मुबारकपुर ऊंची तकिया से हैं आप सभी लोग। दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीजा, कनी, सकीना, हसीना, दिलशाद और वसीम फातिमा का। नई बस्ती गंज डुडवारा से हैं, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम हाशमी का। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से हैं, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। वीरमगांव गुजरात से हैं, अजित भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश, सन्नी भवसार। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं, गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है रंग और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जहाँ हैं आप वहाँ हैं हम, और आप सुन रहे हैं इस समय आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीत।

को, और ये कमेंट हम तक पहुंचा है इसी क्रम में आप सभी लोगों का। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मलियाना सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन का। गांव जाखोत राजस्थान से हैं शंभूदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खट्टक का। मुजफ्फर बिहार से हैं राजकुमार, ऋतु, अर्चना, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी का। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु। सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार और हे आंश कुमार चंदन का। राजकोट से हैं जैमिन कुमार जैन, हेतक जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन का। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी, योगेंद्र नायक कासगंजी। बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से हैं सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर का। नवाबगंज कानपुर से हैं श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज, पीहू और दिया चौरसिया का। चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत से हैं जिला खरगोन से कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, नव उदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान। सियोहारा जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी का। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब का। कासम कॉलोनी सनावत से हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूरू मीना और इरफान मीना, कासिफ मीना। गली सिखलापुर बरेली मौर्य मंदिर से हैं रतनमाला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य का। सरलाही सोकनाहा नेपाल से हैं अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी और उनके साथी। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से हैं सैयद भाई, सूफियान, अनस, आयजा। सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया और पोतरा मुस्ताबा खान। बलूचिस्तान से हैं बरकत जमाली बलोच, जफरुबाद। फुलाय नगर बीड महाराष्ट्र से हैं बालाजी प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। दत्रेंगी भाटापा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पासमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। विराटनगर नेपाल से हैं अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके साथी। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। कराची से हैं आप लोग चनेश्वर गोट से अमर रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्णलाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा और बिरानी वालों का। नई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्डा, अलका मिड्डा। नई मस्जिद करेली से हैं इंतजार भाई अंसारी, बेटी हिफ्जा नूरी, पैरी हिना, नत्थू चाचा, जाहिर अंसारी और नन्हे का। सहारनपुर से हैं राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और नामदेव और हर्षित शर्मा का। एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना पप्पी, लव्या, आरफ खुराना और एस के पप्पी का। रघुनाथपुरा जिला गंगानगर से हैं आप सभी लोग लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाकर, निर्वला नवाकर। मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंगले, सोपान तैड़े और आशीष मुहेरकर। रानीगंज बंगाल से हैं रवि और इंदर। अलखनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन। बरेली से हैं बेचीलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत, ज्ञानेंद्र, योगेश कुमार, इला देवी, वर्फा देवी, सुनील, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार, विनोद दीक्षित, राज, महावीर कश्यप, श्रीराम राठौर, रमेश चंद्र, गौतम राम और बाबू भाई का। कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन एमपी से हैं प्रमेश श्रीमाली और मीना श्रीमाली।
गोवर्धन बिहारी।

करौनी शाहदरा दिल्ली से हैं, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना रिधान और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कस्बा केवलड़िया नवाबगंज जिला बरेली से हैं राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, धर्मवीर गंगवार, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू, वेदपाल, संजीव। ओखला संगम विहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से हैं अरुण, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता का। मनकारा मंदिर बीडीओ कॉलोनी करगना बरेली से हैं बिनी सिंह सागर, पनीला सागर, आशीष, अमर, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, कनक, शगुन, सारांश, आयाश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह का। लेवई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है नई दिल्ली से हैं जनकपुरी से आप लोग प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा का। आकोट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए और के संजीव डाबेराव। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से हैं आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सारिका अली खान। भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से हैं विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान का। चरौदा वार नवापारा से हैं छत्तीसगढ़ से आप सभी लोग नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जोन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, ब्रिज डिक्रेस्टो और पल डिक्रेस्टो। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। एकता कॉलोनी राहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तनवी बोट का। मजनू कटिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। रतलाम मध्य प्रदेश से हैं विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई वनदेवी, आकाश महेश्वरी, विनायक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कासम कॉलोनी सनावत से हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश खत्री, रुनू मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत और फिल्म का नाम है कुदरत और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11 बजने वाले हैं और अब आप सुनेंगे सब रंग। पर श्रोताओं, उससे पहले ये एक सूचना सुनिए। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 7 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्मे बच्चों की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की उपयोगिता। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। और इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय रहेगा नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्मे बच्चों की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की उपयोगिता। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200 और बरेली का एसटीडी कोड है 0581। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सब रंग। और सब रंग में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये पहला भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और लीजिए, आप सुनिए ये भजन हरिओम शरण के स्वर में।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और लीजिए आप सुनिए चंदन दास के सुर में ये गजल।
1: खुमार के माहौल में, क्योंकि

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11:30 होने वाले हैं और अब आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपकी कॉल्स के बिना अधूरे ही अधूरे हैं, और देखिए हमें पूरा करने के लिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो
1: रेनबो
0: हेलो हेलो
1: निकली
0: ओके
1: निकली डोरियां, मैं
0: हाँ
1: यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ,
0: क्या
1: यहाँ
0: बात है सत्यम जी, बहुत ही खूबसूरत गाया है आपने। थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल से गाने के लिए सत्यम जी ने। देखिए हमने आपका नाम बता दिया, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, जल्दी से आप शेयर कर लीजिए हमसे।
1: मैं ग्रामा पोस्ट प्रसिंधी कैसरगंज बहराई से आपका जाना पहचाना दोस्त सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ
0: जी सत्यम जी आप बताइए, बहराइच में मौसम कैसा है?
1: जी। मैम बहराइच में तो कई दिनों से भीषण गर्मी हो रही है, बादल आते हैं
0: हाँ
1: आकर चले जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, बस
0: हाँ
1: लालच देकर चले जाते हैं थोड़ी देर बाद। अभी कल भी रात में मौसम थोड़ा खराब था लेकिन
0: हाँ
1: बारिश नहीं हुई।
0: कोई बात नहीं, ये माहौल बनाना होता है। अभी बादल माहौल बना रहे हैं, फिर एक दिन जम के बरस जाएंगे बहराइच में।
1: देखिए आपके यहाँ वो सर्वेश जायसवाल सर बता रहे थे कल 7 बजे कि
0: हाँ
1: लखनऊ में यहाँ झमाझम बारिश जारी है, हमारे
0: जी
1: यहाँ तो बारिश जैसे लगता है कि कोसों दूर चली गई है।
0: नहीं, कोसों दूर नहीं गई है वो, धीरे धीरे लखनऊ से बहराइच तक भी आ जाएगी। सत्यम जी क्या कुछ मैसेज आप आज शेयर करना चाहते हैं?
1: मैसेज ये देना चाहूंगा, जैसे कई जगह पर बारिश
0: हाँ
1: हो रही है, कई जगह पर भीषण गर्मी अभी आज भी जारी है, इसके
0: हाँ
1: लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने
0: हाँ
1: अपनों का ख्याल रखें मैम।
0: हाँ बिल्कुल
1: और कुछ लोगों का नाम ले सकता हूँ जी
0: बिल्कुल ले सकते हैं।
1: मैम, सीतापुर से है समा परवीन अंसारी बहन, लखीमपुर से ताजिया अंसारी बहन है, साहिबा अंसारी बहन है, बाराबंकी से बाबू अंसारी भाई है, और लखनऊ से बबलू यादव भाई है, और रायबरेली से रिंकी पिंकी बहन है, उन्नाव से श्री प्रकाश दादा है,
0: ओके
1: और सभी लोगों को और आपको।
0: थैंक यू सो मच, और सब अपना सेहत का ख्याल रखेंगे। आप भी इस अनइवन से मौसम में अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक
1: ओके थैंक यू मैम।
0: यू, लेट्स सी अगले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो मैम नमस्ते,
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम अल्तमस अली है,
0: अरशरफ अली है,
1: नहीं अल्तमस अली,
0: अल्तमश अली है। ओके अल्तमश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं लखीमपुर खीरी से बात कर रहा
0: जी लखीमपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। तो अल्तमश जी पहले तो बताइए क्या करते हैं आप?
1: हूँ। बस मैं पढ़ाई करते हैं,
0: पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में?
1: टेंथ में है। यस
0: 10th में? अरे बहुत इंपॉर्टेंट वाली पढ़ाई करते हैं आप, बोर्ड्स हैं होंगे आपके, है ना?
1: मैम बहुत बोर हो जाते हैं एक्चुअली।
0: नहीं, पढ़ाई से कभी भी बोर नहीं होना चाहिए। तो अल्तमश जी बताइए, आपने पढ़ाई के साथ साथ हमें कॉल किया है, देखिए आपकी बोरियत को दूर करने की कोशिश हमारी रहेगी, इंटरटेनमेंट का जिम्मा हमारा, तो मैसेज क्या कुछ कहना चाहते हैं आज आप देना चाहते हैं?
1: मैम हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जैसे छुट्टियां होती हैं ना, तो अपने फैमिली के साथ अगर कहीं बाहर जाएं
0: हाँ
1: तो फोटो वोटो जो ताकि हमारी यादें बनी रहे, और उन फोटो को देखकर इतना अच्छा लगता है, फोटो
0: हाँ
1: के भी हमने यहाँ पास फोटो खींचा था और याद ताजा हो जाती है।
0: फोटो जरूर खींचनी चाहिए, ऐसा कहना है अल्तमश जी का, बात बहुत सही है। लेकिन भाई ये भी ध्यान रखें कि उस जगह, जिस जगह पे आप घूमने गए हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए हैं, वो बस फोटो फोटो में ही ना निकल जाए, है ना?
1: मैम नाम बताएं प्लीज।
0: जी जी अल्तमश बिल्कुल नाम ले सकते हैं आप।
1: मैम सत्यम कुमार थे जो अभी कॉल किया था, और साहिबा अंसारी बहन है, और
0: हाँ
1: समा अंसारी बहन है,
0: हाँ
1: और बाबू है मोहम्मद तालिब अंसारी, और ना मैम नाम भूलते हैं।
0: कोई बात नहीं, जो जो अल्तमश को जानता है उन सब का नाम अल्तमश ने देखिए ऑन एयर लिया है। ठीक है अल्तमश, ओके थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके इस साल के लिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे स्कोर्स आप लाएंगे। तो 11:37 अगला ट्रैक, अपना रेडियो स्टेशन जी अपना स्टेशन छोड़ने को तैयार है, कभी कभी हो जाता है। 11:37 हो चुका है, प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे रेडियो की इस तरफ, निधि आपके साथ बनी हुई है, आपको डायल करना है।

2 2 3 8 8 5 2 या फिर 2 9 8 2 3 7 7। ये दो माध्यम है, दो नंबर है जिनको फोन करके, डायल करके आप हमसे डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट कनेक्ट हो सकते हैं और अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: गाना पहले नहीं बजाएंगे हम, पहले हम बातें करेंगे जी हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा कभी कभी हो जाता है कि गाना पहले प्ले हो जाता है, लेकिन बहुत देर से हमने जो चीज नहीं की है वो क्या, मेल्स जो है वो नहीं ली है। तो बहुत सारे हमारे जो मेल कर रहे हैं ना श्रोतागण, वो नाराज हो जाएंगे। तालिब जी जी बहुत शुक्रिया हमारा ख्याल रखने के लिए। मुकेश कुमार जी, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, स्मॉल मैसेज, राइट नाउ पैडी ट्रांसप्लांटिंग इज गोइंग ऑन, सो प्लीज कीप केमिकल मेडिसिन यूज इन फील्ड अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। ओके, वो सारी जो केमिकल्स वाले खाद्य पदार्थ है ना, उनको बच्चों से दूर रखिए, ऐसा कहना है मुकेश जी का। मेरे सभी देशवासियों को एक संदेश है कि जो भी भाई बहन माँ और सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस तरह से वो अपने घर के अंदर साफ सफाई रखते हैं, वैसे अपने घर के बाहर भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अगर ये कूड़ा आगे जाता है तो वो ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकता है। जैसे कुछ देर पहले हमारे कॉलर ने भी हमसे यही मैसेज शेयर किया था। ईमेल पढ़ने की कृपा करें गुलफ्सा जी, हमने आपका ईमेल पढ़ लिया, संडीला से आपने किया है। आपका संदेश यह है कि हम सबको अपने घर की फ्रिज को टाइम

टाइम से साफ करते रहना चाहिए, फ्रिज की बोतल को भी साफ करना चाहिए। बिल्कुल, ये वो जगह हैं जहां सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो जन्म ले सकते हैं और आपको इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। मोनू सेठ जी का मेल, काट दिए जंगल सभी, कंक्रीट हर छोर, दूषित कर पर्यावरण, हम विकास की ओर। बहुत गलत बात है, बिल्कुल, और बहुत गलत बात है पेड़ काटना। और ये कहना है मोनू सेठ का, जिनका कहना है कि भाई लगातार बस पेड़ लगाते जाइए धीरे धीरे, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ आप लगाएं और ज्यादा से ज्यादा हरियाली फैलाएं।

0: नहीं भाई, हम आपका हाल चाल लेने के लिए तो ये प्रोग्राम लेके आते हैं, और साथ ही साथ आपके हाल चाल के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई ऐसा संदेश, वो भी हम कोशिश करते हैं कि हम बाकी लिसनर्स तक पहुंचा सके। प्रतापगढ़ से हमारे साथ कोई जुड़ चुका है। हेलो
1: प्रभाकर तिवारी,
0: जी
1: रसूलपुर गुलराहा,
0: जी
1: रसूली बाजार, पोस्ट
0: जी
1: रामनगर भोजपुर, बाबा
0: ओके हाँ
1: विश्वनाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे मैडम जी।
0: ओफो ओके, अब तो सबको पता चल गया होगा और बहुत विस्तार से पता चल गया होगा आपकी पूरी डिटेल। तो प्रभाकर जी, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप?
1: मैडम जी, हमारा यही संदेश है कि हरा भरा वृक्ष, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएं। और मैडम जी, पेड़ पौधा जो अधिक रहेगा तो समय से बारिश होगी, समय से मानसून भी सक्रिय हो जाएगा। और मैडम जी, बहुत गर्मी है, देख रही हैं आप,
0: जी जी जी तो
1: तापमान जो है बहुत अधिक चल रहा है, पेड़ पौधा जो है नहीं ज्यादा।
0: हाँ
1: तो मैडम जी, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएं।
0: जी, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं तो ऐसा कहना है, कोशिश करेंगे कि सब लोग एक पेड़ तो जरूर लगाएं, और न सिर्फ लगाएं उसकी देखभाल भी करें, है ना?
1: हाँ, मैडम
0: जी,
1: जी
0: तो
1: जरूरी है,
0: प्रभाकर
1: नहीं तो हाँ नहीं तो पर्यावरण संतुलन जो है ठीक नहीं रहेगा मैडम
0: ठीक
1: जी,
0: नहीं
1: समय
0: रहेगा
1: से
0: जी।
1: बारिश भी नहीं होगी, समय

0: जैसे मानसून भी नहीं आएगा।
1: जी प्रभाकर जी, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। प्रभाकर जी
0: नमस्ते। मैडम
1: नमस्ते। अगला मेल हमारे पास वारिस जी का है, जिन्होंने बहुत सारी तारीफ की, उसके लिए शुक्रिया। इतना आसान नहीं है जिंदगी का हर किरदार निभा पाना, इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्ते को समेटने के लिए। दाम्पत्य जीवन में अगर प्रेम के साथ साथ तकरार नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वो रिश्ता दिल से नहीं निभाया जा रहा है। ओहो, ये तो आप सबके लड़ाई करवा देंगे वारिस जी। मतलब जो लोग समझदारी के साथ साथ साथ रह रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना उनके बीच में लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन ये भी है कि लड़ाइयां होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना भी रिश्ते में मजबूती लाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद आसिफ अंसारी जी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। क्या बात है। मोस्टली आज अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि पेड़ लगाया जाए। गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज शुक्रिया। संदेश ये है कि बारिश का मौसम है, अंधेरे में उठे तो टॉर्च लेकर उठे, क्योंकि बहुत सारे जहरीले जानवर हैं जो आसपास रहते हैं या बारिश में बाहर निकल आते हैं तो उसमें मुश्किल हो सकती है। और बच्चों को तो स्पेशली ध्यान रखें कि वो ऐसे कहीं भी ना जाएं, कुछ बारिश में बिल्कुल कहीं ना जाएं, ऐसा आपके बगैर, आपके साथ के बगैर कहीं ना जाएं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता और उन्हें अच्छे भले लोग परेशान किया। अच्छा ओके, वो लोग जो मेंटली चैलेंज होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, ऐसा कहना है शमशाद अंसारी जी का, जिन्होंने हमें हैदराबाद उन्नाव से मेल किया है। भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों के मेल को शामिल कर सके। अगर किसी का मेल छूट जा रहा है या हम तक नहीं आ पा रहा है या कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही तो क्षमा करिएगा उसके लिए। हम अभी कुछ 12 मिनट और आपके साथ रहने वाले हैं तो कोशिश करेंगे और फोन कॉल्स और कॉलर्स को और संदेश को आपसे जोड़ सकें।

0: जी, हम हर धुन बजाने की कोशिश करते हैं और हमारी इन धुनों के साथ साथ अपनी आवाज मिलाते हैं हमारे लिसनर इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे, जो बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले करिश्मा हमसे जुड़ चुकी हैं। यस करिश्मा, हेलो
1: जी मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, बस कुछ और क्षण गुड मॉर्निंग को रह गए, कुछ मिनट बाद आफ्टरनून हो जानी है ना करिश्मा?
1: जी मैम
0: जी, वक्त बदल जाना है। तो करिश्मा जी,
1: ठीक हो?
0: हम एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: मैम हम भी ठीक हैं। और मैम हम कहना चाहते हैं कि हमारे भैया की शादी है 11 जुलाई को, तो आप आ जाइए और जितने आरजी हमारे सुन रहे हैं सभी आ जाएं।
0: क्या बात है, सब के सब आपके यहाँ आ जाएंगे तो सोचिए कितना बढ़िया माहौल हो जाएगा, है ना?
1: जी मैम मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: करिश्मा जी आना कहाँ ये तो बताया ही नहीं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम मैं जिला सीतापुर के तिहार गांव से बात कर रही हूँ।
0: ओके, और सीतापुर में आपने बोला कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है क्या?
1: नहीं मैम, धूप निकली है।
0: धूप निकली है,
1: काफी गर्म है।
0: काफी गर्म है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं करिश्मा जी?
1: मैम संदेश हमारा यही है कि जैसे सब लोग धूप इतनी तेज हो रही है, अगर बाहर जाना है तो छाता जरूर लेकर जाए।
0: हाँ ये बात काम की कही आपने, देखिए छाता लेके जाइए, आपको धूप से भी बचाएगा और अगर बारिश होने लगी तो फिर बारिश से भी बचा लेगा ना। करिश्मा ने डबल काम की बात कही। तो करिश्मा जी थैंक यू सो मच हमें फोन करने के लिए, आपको आपके भाई की शादी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं भाई।
1: जी मैम
0: जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ जी,
1: मेरे यहाँ कटका में रहते हैं वकील भैया, हाँ। वो भी शादी में आ जाएं और रोशनी दीदी रावत,
0: आप सबको आप ऑन एयर ही इनवाइट कर लेंगे, तो पर्सनली इनवाइट नहीं देंगे तो बुरा मान जाएंगे ना सब?
1: नहीं मैम, हमारे ग्रुप में यही है, तो हम लोग जुड़े हैं तो हमारे पास उनका नंबर या कोई बात।
0: अच्छा ओके, चलिए आई होप उन तक आपकी आवाज और आपका इनवाइट पहुंच गया होगा। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।
1: जी
0: मैम नमस्ते। जी तो अगला जो मेल हमारे पास है वो है साबिर अंसारी जी का कानपुर से। आपको अच्छे लगे सॉन्ग सिलेक्शन, थैंक यू सो मच। आपका और आपके दोस्त का नाम ले लीजिए, आसिफ अंसारी जी और तालिब अंसारी जी राजा कटरा से, इस्माइल अंसारी जी कानपुर से, अली अंसारी जी कानपुर से। आप संदेश भी लिख देते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तालिब अंसारी जी बिल्कुल जब हम जल्द आएंगे आपको जल्द पता चलेगा। नाजिम जी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, उसके लिए बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी बात कही आपने। कुलदीप मौर्य जी लगीमपुर खीरी से, राधे राधे, इन सभी लोगों के नाम ले लीजिए। कुलदीप मौर्य, पूनम मौर्य, मनोज मौर्य, प्रतीक मौर्य, कुणाल मौर्य, पूर्वी मौर्य, आयुषी मौर्य, राधा। ओके, इतना नाम, लंबा नाम लेने के साथ साथ अगर आप छोटा सा मैसेज भी हमसे शेयर करते तो हमें अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच उन सभी को जिन्होंने आज हमें मेल किया या फिर फोन करके हमसे जुड़े। अब बस आखिरी कुछ क्षण, आखिरी ट्रैक आपके रेडियो सेट पर आने वाला है, क्योंकि निधि यहां से टाटा बाय बाय करने वाली है। बाहर बहुत धूप है क्योंकि ये मुझे पता चल गया है। किसने बताया ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो अगली आवाज है वो मौसम की जानकारी के साथ अंदर एंटर हुई है और यकीन मानिए बाहर मौसम बहुत गर्मा गर्म है। तो इस गर्मा गर्म मौसम में अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। निधि कहती है फाइनली टाटा बाय बाय, मिलूंगी आपसे फिर किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता अखंडता के संकल्प को नई संजीवनी दी। अखंड भारत के प्रति उनका समर्पण हम सभी को नई प्रेरणा, नई ऊर्जा और नई शक्ति से भर देता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आज बताया कि उर्वरक तथा कच्चा माल भारत ला रहे कुल 15 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि इन 15 जहाजों में से 8 जहाज 3,32,000 मीट्रिक टन यूरिया, 4,000 2,57,000 मीट्रिक टन डायमोनियम फॉस्फेट और 3 जहाज 1,11,000 मीट्रिक टन सल्फर लेकर भारत रवाना हो चुके हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि 5 और जहाज भारत के लिए रवाना होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि आज प्रयागराज में काली घाटी स्थित प्रेरणा पार्क के लोकार्पण के साथ राष्ट्र निर्माण के अमर पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय संस्कृति के यशस्वी संवाहक अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र का अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी

चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:14 हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रु पर, जिसमें शालिनी लेकर आई है खास आज हेल्थ की बात महिलाओं के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। कल भी बात बहुत सारी की गई ना हेल्थ एंड फिटनेस में आपकी सेहत से रिलेटेड, और आज 12 बजे से 1 बजे के बीच शत्रुपा में हम हेल्थ की ही बात करते हैं। और कौन सी होने वाली है बात, किससे है रिलेटेड और क्या क्या है चीजें, ये आज खास हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए है। और बारिश का मौसम आ चुका है ना, कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं होकर जा रही है। तो ये जो बदलाव वाला मौसम होता है ना दोस्तों, उसमें कई सारी परेशानियां होती हैं। तो बस आज का जो हमारा विषय है, मानसून के मौसम में महिलाओं की सेहत, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में कोई खास मेहमान, जी हाँ एक्सपर्ट विशेषज्ञ आ चुके हैं। वो हम आपको बताएंगे इस गाने के बाद कौन है, कहाँ से है।

0: दोस्तों 12:09 और 48 सेकंड का वक्त। शालिनी ने अभी आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि मानसून के मौसम में महिलाओं की सेहत, और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दर्शन बजाज, रेस्पिरेटरी मेडिसिन से हैं, प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: नमस्कार भाइयों बहनों मित्रों, और मैं हूं डॉक्टर दर्शन कुमार बजाज और मैं KGMC के रेस्पिरेटरी मेडिसिन में प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूं। और धन्यवाद शालिनी जी, आपने आज आकाशवाणी मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपना।
0: सर, जैसा कि आज के प्रोग्राम का हमारा विषय ही है कि मानसून के मौसम में महिलाओं की सेहत, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मानसून के मौसम में महिलाओं को सांस से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं।
1: बहुत अच्छा सवाल है ये। और मानसून, वैसे तो देखिए हम लोग सब उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि मानसून आएगा, सुहाना मौसम लाएगा, गर्मी से राहत दिलाएगा और जो है हमें जो है उजला उजला वो दिखेगा, मतलब सूरज की जो रोशनी है झुलसाने वाली जो है उस वक्त है उससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो मानसून है उसमें हमें कुछ तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मानसून जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। तो मानसून में जो हमारी सबसे बड़ा दुश्मन है वो होती है नमी। नमी और सीलन जो है वो हमारे मानसून में सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें, क्योंकि वो जो मानसून में नमी और सीलन आती है उसकी वजह से जो है जो बीमारियां एलर्जी की हैं, स्किन की हैं, सांस की हैं, वो सब बढ़ जाती हैं। और मानसून में क्या होता है कि फंगस, जिसको हम फफून बोलते हैं अगर हिंदी में बोला जाए तो ये सब चीजें जो है इसका बढ़ावा होता है इसमें मानसून में। और नमी और सीलन जो है एलर्जी की बीमारियां, जैसे कि चमड़ी की एलर्जी हो गई या सांस की एलर्जी हो गई या आंखों की एलर्जी हो गई, किसी भी तरह की एलर्जी होती है और सांस संबंधी बीमारियां जो होती हैं जिनको ऑलरेडी हैं, जो मरीज इनसे जूझ रहे हैं, जैसे कि किसी को अस्थमा हो रखा है, किसी को दमा हो रखा है, तो वो सब बीमारियां इस सीजन में बढ़ जाती हैं। तो इनसे बचाव के लिए हमें नमी को कंट्रोल करना है। तो नमी को कंट्रोल करने के लिए आप जो है जहां से पानी का रिसाव कहीं घर में हो रहा हो तो उसको आपको उसमें रखना है, कंट्रोल में रखना है, पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए आपके उस एरिया को जहाँ पे नमी जो है ज्यादा रह रही है। इसके अलावा जो छत होती है, छत के ऊपर से पानी लीक करता है तो उसका भी जरा ध्यान रखना चाहिए, वॉशरूम की वजह से जो, तो ये सब चीजों का ध्यान, जो भी मतलब

0: आपके जो नमी को रोकने वाले जो भी सारे साधन हैं वो आपको करने चाहिए।
1: जैसे जो महिलाएं हैं ना, वो घर और बाहर दोनों की दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं। आप समझ रहे होंगे कि हम वर्किंग महिलाओं की भी बात कर रहे हैं। ऐसी महिलाओं के लिए इस मौसम में कौन-कौन सी खास सावधानियां जरूरी हैं?
0: देखिए, महिलाओं का मैं शुरू से बहुत आदर करता हूँ। वो मतलब पुरुष तो एक ही काम कर पाते हैं और महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं और घर तो घर का ध्यान तो रखती हैं। इसके अलावा बाहर भी आप आज देखिए पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि कई जगह पुरुष से भी वो आगे हैं हर मामले में। तो वाकई में उनको मेरा जो है बिल्कुल सलाम है महिलाओं को। और लेकिन क्या है कि हर एक की प्रकृति ने पुरुष को और महिला को अलग अलग तरीके से बनाया है। तो महिलाओं में जो एलर्जी की समस्याएं हैं वो थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं और उनमें हार्मोन्स भी डिफरेंट रहते हैं। अगर हम पुरुष के हार्मोन देखें और महिला के हार्मोन देखें तो उनमें कुछ चीजों का जो है दिक्कत ज्यादा रहती है। तो उनको जो है बेसिकली अगर वो ठीक रहेंगे तो घर का काम भी अच्छे से कर पाएंगी और बाहर का काम भी अच्छे से कर पाएंगी। तो उनको सावधानी बहुत अपनी बरतनी है। और जैसे मैंने पहले बताया कि उनको जो है घर में किसी भी तरह की नमी या सीलन से बचाव रखना है, ठीक है। और शुद्ध वायु घर में आनी चाहिए, जानी चाहिए। वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो शुद्ध वायु देखिए, हम लोग जितना ज्यादा नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं उतना ज्यादा हम शुद्ध वायु को खो बैठे हैं। हमें शुद्ध वायु ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ता है। तो ऐसा क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह का जो भी बन चुका है तो उसको तो नहीं हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो भी है जैसे भी है, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल साधन है जैसे कि एयर प्योरीफायर्स वगैरह हैं वो भी है, जो लोग अफोर्ड कर पाए उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें शुद्ध वायु और नमी इनको जो है एड्रेस करना है। इसके अलावा जो है अपने ऊपर कसरत पे ध्यान देना है, व्यायाम पे ध्यान देना है, अपने खान पान पे ध्यान देना है।
1: सर, अगर हम बात करें रसोई के धुएं की, तो चाहे वो शहर हो चाहे गांव, अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर चूल्हे से खाना बनाया जाता है और ईंधन के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका धुआं निकलता है। तो जैसे क्या रसोई का धुआं है, या जो नमी की आप बात करें, या बंद कमरे की जो हवा है, ये सारी चीजें सांस लेने की समस्या को और बढ़ा देता है।
0: बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो ये धुआं है रसोई का हो, चाहे किसी भी चीज का धुआं हो, चाहे आप ले लीजिए हवन सामग्री का धुआं हो। कोई लोग कहते हैं कि ये तो पूजा का धुआं है। भैया धुआं धुआं होता है, वो नुकसान करेगा ही करेगा। धुआं क्या करेगा भैया, वो आपके फेफड़े में जाके उनको खराब, अपने जो है जो अंदर के एयरवेज है उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो धुआं कोई भी हो, चाहे वो रसोई का हो, चाहे किसी भी तरह के प्रकार का धुआं हो, सिगरेट का धुआं हो, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो धुआं किसी भी प्रकार का हो उसको हमें कंट्रोल रखना है। उसके लिए आपको चिमनियां लगानी है रसोई में, ठीक है। अपने दरवाजे जो खिड़की हैं रसोई में वो खुली रखती है ताकि धुआं जो है उसका वो बाहर जा सके वहां से रसोई से। जैसे मैं घर जाता हूँ तो कई बार मेड जो डोमेस्टिक हेल्प हमारी होती है तो वो इस्तेमाल कर रही होती है रसोई को, और वहां पे कई बार जैसे ही घुसता हूँ तो खांसी आना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं देखता हूँ तो देखता हूँ कि चिमनी चालू नहीं है या हवा मतलब जो है उसका आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रसोई का धुआं भी उतना ही हानिकारक है।
1: सर, जैसे कि आपने फफूंदी के बारे में बताया, तो जो घर में फफूंदी है या सीलन है, उससे महिलाओं और बच्चों को कैसे बचाया जा सके?
0: तो देखिए, फफूंदी अगर नमी होगी तो फफूंद बढ़ेगी, और फफूंद को हम नॉर्मल भाषा में फंगस बोलते हैं। तो फंगस जो है वो जैसे कि कहते हैं ना कि भगवान हर जगह, तो ऐसे फंगस भी हर जगह। अब कोई कोई फंगस जिसकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर होती है आदमी व्यक्ति की, तो उसमें अफेक्ट करती है, उसको बीमारी पहुंचा देती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक रहती है उसमें वो उतना असर नहीं डाल पाती है, उसको छोटा मोटा ही गला खराश या खांसी जुकाम में काम हो जाएगा। लेकिन फंगस जो है बहुत गंभीर बीमारियां भी कर देती है, हर तरह की, चाहे चमड़ी की, चाहे सांस की, और भी कई कई शरीर में कई तरह की वो है, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, गले की बीमारियां। तो फंगस को हमें कंट्रोल रखना है, और जहां भी फंगस देखे उसकी सफाई करवाइए, ठीक है। और तो इस तरीके से फंगस अगर वहां की घर की कंट्रोल रहेगी तो आपकी बीमारियां कंट्रोल में रहेंगी।
1: बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। और समय बता दे अपने श्रोताओं को, 12:16 और 32 सेकंड का वक्त हो चला है। कई सारी चीजों की जानकारी मिल चुकी है और अभी भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है, जैसे कि जिन महिलाओं को पहले से अस्थमा या एलर्जी की परेशानी है, तो उन्हें मानसून शुरू होने से पहले और क्या तैयारी करनी है ताकि उनको परेशानी ना हो, और जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है मानसून में, उन्हें भी सांस लेने की तकलीफ होती है, तो उससे वो कैसे बचें, क्या ध्यान रखें, और क्या मानसून में वायरल संक्रमण महिलाओं के फेफड़ों पर ज्यादा असर डालता है, कुछ इस तरह के प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे डॉक्टर दर्शन बजाज जी से, जो कि प्रोफेसर हैं रिस्पायरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। इस प्यारे से गाने के बाद

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दोस्तों 12:23 और 28 सेकेंड का वक्त, प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ लेकर आज मानसून के मौसम में महिलाओं की सेहत का हाल। जी हाँ, और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दर्शन बजाज, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रोफेसर, किंग जॉर्ज के सब विश्वविद्यालय से। तो सर, जिन महिलाओं को पहले से अस्थमा या एलर्जी है, उन्हें मानसून की स्टार्टिंग से ही क्या क्या ऐसा सीधी बात भाषा में यही कह सकते हैं कि तैयारी क्या करनी चाहिए जिससे कि उन्हें परेशानी और ज्यादा ना हो?
6: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। और क्या है कि हिंदुस्तान में क्या है, महिलाओं को अनफॉर्चुनेटली जो है वो थोड़ा सा हेल्थ के मामले में कम तवज्जो दी जाती है, और वो भी अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं, वो भी थोड़ी सी लापरवाही और कोताही बरतती हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मानसून से पहले ही उनको तैयार होना है लड़ने के लिए मानसून से, तो उससे पहले अगर वो ट्रीटमेंट में थोड़ा भी बहुत भी इधर उधर कर रही हैं तो उसको वापस ट्रैक पे लेके आना है। अपना जो डॉक्टर जिसको दिखा रही हैं, चिकित्सक को दिखा रही हैं, उसकी सलाह को बिल्कुल मानना है। और अपने जैसे कि कोई मरीज अस्थमा दमा के इनहेलर्स वगैरह पे होते हैं तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल नियमित रूप से करना है जैसे कि डॉक्टर बताए, बिना अपने आप कुछ नहीं करना है। ऐसे नहीं कि मेडिकल स्टोर पे गए और फलाना दवाई ले ली, वैसे कर ली वो कर ली, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। और अपने आप को तैयार रखना है हर चैलेंज से निपटने के लिए। और जैसे मेरे पास मरीज आते हैं तो मुझसे बोलते हैं यार सर इसका एडिक्शन हो जाएगा तो इनहेलर का तो क्या करेंगे, मेरा एडिक्शन क्या हो जाएगा तो भाई तुम्हारी जरूरत है, जैसे मेरी जरूरत है चश्मा मेरा आंखों का, बिना चश्मे के मैं देख नहीं पाता हूँ, मुझे दिक्कत होती है। तो ऐसे ही आपके फेफड़ों का चश्मा है तो इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप सही रहेंगे। और इसका क्योंकि वो इनहेलर जो होते हैं उनमें भ्रांतियां बहुत है समाज में, इनहेलर बहुत ही माइक्रो डोज में जाता है आपके फेफड़े में जो आपको बिल्कुल ना के बराबर साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी बहुत किसी किसी में कोई ऐसा हो गया नहीं, तो बिल्कुल सेफ टाइप के चीजें हैं जो आपके फेफड़े के लिए बहुत ही मतलब तरीके से वरदान कहूंगा मैं तो साइंस मेडिकल साइंस का इसको, तो उससे बिल्कुल भी डरे नहीं इनहेलर से, वो आपके लिए जीवन एक तरीके से पोषण टाइप का है और कई लोगों को इसने लाभ पहुंचाया है। और आज भी हम डेली हमारी जो OPD है 250-250 मरीजों की OPD है और उसमें कईयों को इनहेलर चल रहा होता है और वो अच्छा जीवन बिता रहे हैं। तो इस तरीके से आपको महिलाओं को मेरा कहना मतलब है कि डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए जो भी ऐसे सांस की गंभीर बीमारियों से पीड़ित चल रही है, तो बहुत जरूरी है वो।
5: सर, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें मानसून में सांस की तकलीफ से बचने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में भी जरा बताएं।
6: शालिनी जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया। देखिए, महिलाएं तो गर्भवती तो वही मातृशक्ति हैं, तो जन्म भी वही देंगी, दुनिया उन्हीं के बल पे चल रही है। तो क्या है कि अब ये धारणा बन हुई है हर एक में कि गर्भ में जो है जब बच्चा पल रहा होता है तो हमें दवाइयों का सेवन जो है बहुत मिनिमाइज कर देना, क्योंकि कई दवाइयां बच्चे के ऊपर असर डालती हैं। और इस चक्कर में दवाइयां जो है, वाकई में बात सच है कि दवाइयां लिमिटेड हैं प्रेगनेंसी में जो सेफ हैं, उनकी कैटेगरीज अलग अलग होती है, ABCD कैटेगरीज होती हैं जिसके बारे में हम विस्तार से यहाँ नहीं बात कर पाएंगे। लेकिन जो मरीज जो मतलब महिलाएं गर्भवती हैं और जो पीड़ित हैं सांस की गंभीर बीमारियों से जैसे अस्थमा से दमा से, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो इनहेलर का प्रयोग बिल्कुल कर सकती हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, लिटरेचर जो भी हमारे पास अवेलेबल है, रिसर्च जो भी अवेलेबल है, वो ये कहती है कि उसका उपयोग सेफ है और रिस्क बेनिफिट रेशियो देखा जाता है। तो अगर आप नहीं लेंगे तो बच्चे पे ज्यादा रिस्क पड़ेगा बजाय इसके कि आप उसको इस्तेमाल करें, तो आपको इस्तेमाल करना है बिना किसी शंका के, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इनहेलर आर सेफ इन प्रेगनेंसी, मतलब बच्चे के लिए ज्यादा सेफ है बजाय इसके कि आप अपना ट्रीटमेंट छोड़ दें, तो इसका जरा बिल्कुल ध्यान रखें गर्भवती महिलाएं कि अपना खान पान, अपनी दवाई, अपना जो भी न्यूट्रिशन सपोर्ट है या फिर चिकित्सकीय सलाह है उसको जरूर फॉलो करें और इस तरीके से अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखें।
5: जी हाँ बिल्कुल, और किसी भी चीज को शुरू करने से या उसे रोकने से पहले कुशल चिकित्सक से सलाह जरूर लें। क्यों सर,

0: अच्छा सर, ये बताएं कि जो ये लगातार खांसी आ रही है या सांस फूल रहा है या सीने में जकड़न बनी हुई है और इन सारी चीजों को कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: बिल्कुल शालिनी जी, ये देखिए ऐसा होता है कि हर बीमारी की दुनिया में जितनी बीमारी उनकी स्टेजेस होती हैं, तो अगर हम पहली स्टेज को इग्नोर करेंगे तो स्टेज आगे पहुंच जाएगी। तो आपको जैसे ही ऐसा कुछ लगे कि ये जो है जो कुछ मेरे साथ चल रहा है ये थोड़ा लंबा खिंच गया है, इसमें ये जो नॉर्मल होता है कि चलो 2 4 दिन का खांसी जुकाम हुआ वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बीमारी लंबी खिंच रही है, ज्यादा दिन तक सिम्टम चल रहे हैं, लक्षण ज्यादा दिन तक चल रहे हैं, तो आपको चिकित्सकीय सलाह लेनी है। ऐसा नहीं किसी मेडिकल स्टोर पे गए और अपना जो है उसने कोई दवाई पकड़ा दी और लेके अपना चुपचाप बैठ गए, क्योंकि आपकी स्टेज अगर बीमारी की बढ़ जाएगी तो आपकी दिक्कत आगे बढ़ती जाएगी, उम्र के साथ साथ स्टेज बढ़ती जाएगी। अभी आप झेल पा रहे हैं।

0: जाएगी। तो आपको जैसे ही ऐसा कुछ लगे कि ये जो है, जो कुछ मेरे साथ चल रहा है, ये थोड़ा लंबा खिंच गया है, इसमें ये जो नॉर्मल होता है कि चलो 2-4 दिन का खांसी जुकाम हुआ वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बीमारी लंबी खिंच रही है, ज्यादा दिन तक सिम्टम चल रहे हैं, लक्षण ज्यादा दिन तक चल रहे हैं, तो आपको चिकित्सकीय सलाह लेनी है। ऐसा नहीं किसी मेडिकल स्टोर पे गए और अपना जो है उसने कोई दवाई पकड़ा दी और लेके अपना चुपचाप बैठ गए, क्योंकि आपकी स्टेज अगर बीमारी की बढ़ जाएगी तो आपकी दिक्कत आगे बढ़ती जाएगी, उम्र के साथ साथ स्टेज बढ़ती जाएगी। अभी आप झेल पा रहे हैं, आगे उसको नहीं झेल पाएंगे। और साथ में जो लोग उनसे पीड़ित हैं डायबिटीज से या किसी और ऐसी बीमारी से जिसमें कि शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उन लोगों तो और ज्यादा सावधानी बरतनी है। तो इसलिए जैसे ही आपके सिम्टम्स या लक्षण जो है कुछ दिनों से ज्यादा आगे बढ़े हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और अपना बढ़िया से इलाज करवाएं।
1: थैंक यू सर, बहुत अच्छे ही शब्दों में आपने समझाया। सर, क्या मानसून में वायरल संक्रमण महिलाओं के जो फेफड़े हैं उस पर ज्यादा असर डाल सकते हैं?
0: ऐसा कह सकते हैं कि वायरल संक्रमण जो है महिलाओं के ऊपर ज्यादा असर डालता है, क्योंकि क्या होता है कि ये भी देखा गया कि महिलाओं अपने खान पान का पूरा ध्यान नहीं रखती हैं, और कई महिलाएं जो आती हैं, क्योंकि देखिए समाज में हर तरह का तबका रहता है,
1: जी
0: उसमें छोटे तबके का आदमी भी है, बड़े तबके का आदमी भी है, कोई अपना मतलब ढंग से ले पा रहा है न्यूट्रिशन, कोई नहीं ले पा रहा है, तो जो न्यूट्रिशनली डेफिशियंट होगा उसमें संक्रमण के ज्यादा चांसेस होंगे, इम्यूनिटी डाउन होगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर भारत में एक अभिशाप टाइप का है कि जो महिलाओं को मतलब एक तरीके से गांव की महिलाएं या और जो नीचे तबके से आती हैं, तो
1: जी
0: वो जो है उनका ध्यान नहीं रखते उतना उनके घर वाले, उनके जो है थोड़ा सा ये दिक्कत तो है। तो अगर इम्यूनिटी कम रहेगी क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल उनके संक्रमण ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। तो बिल्कुल ये बात कुछ हद तक सही है।
1: तो दोस्तों, सुना ना आपने, कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो हमारी इम्यूनिटी से भी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना ख्याल रखना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है ताकि बीमारी ना हो सके। पहला स्टेप ये, हमें बहुत सारे रोगों से बचने के लिए सावधानी रखनी है। और उसके बाद अगर हम फिर भी किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो दूसरा स्टेप क्या, समय रहते ही कुशल चिकित्सक से सलाह लेनी है। तो पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें बीमारी ना हो इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को बनाना है। तो दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद अभी जानेंगे और भी चीजें, जैसे कि छोटे बच्चों की देखभाल माताएं कैसे करें, और ये जो वर्किंग वुमेन है इनको ट्रेवल बहुत ज्यादा करना पड़ता है कई बार, तो इस दौरान वो सांस की सुरक्षा के क्या उपाय हैं, ये सारी चीजें हमें बताएंगे डॉक्टर दर्शन बजाज सर, जो कि प्रोफेसर हैं रिस्पायरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा।
2: जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

0: तो 12:35 और 12 सेकंड हो चले हैं। प्रोग्राम शत्रुपा में आज हम बात कर रहे हैं मानसून के मौसम में महिलाओं की सेहत के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर दर्शन बजाज, प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। सर, कामकाजी जो महिलाएं होती हैं, यानी कि जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, उन्हें कई बार ट्रेवल करना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं, और इस यात्रा के दौरान या ऑफिस जाने के दौरान जो सांस से रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं, सुरक्षा के जो उपाय हैं, वो जरा बता दीजिए।
1: तो देखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो काम भी कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको ड्यूटी लीव क्या मेडिकल लीव लेके घर बैठना पड़ेगा। तो अगर काम करना है तो अपना इलाज बिल्कुल नियमित रूप से करना है, चाहे वो आपका यहाँ का लोकल एरिया काम हो, चाहे आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा हो कि आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। तो इसलिए क्या है कि अपना जो भी आपका, जैसे यात्रा ज्यादा करते हैं किसी भी अपने काम की वजह से, तो अपना एक किट बना के रख लें कि भैया ये मेरा यात्रा का ट्रेवल किट है, जिसमें मेरी दवाई वगैरह सब रहती है, जिससे कि आप ये ना हो कि अपना ट्रीटमेंट ले जाना भूल जाएं और जो है उसको वहां पे आप मिस कर दें। क्योंकि अगर आप वहां मिस कर देंगे तो आपको दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको अपना डॉक्टर वहां नहीं मिलेगा जहां पे आप यात्रा कर रहे हैं। तो इसलिए वो दवाइयां वगैरह जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल आपके उससे यात्रा से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो आपका नियमित रूप से रहेगा। और इसको थोड़ा सा इंश्योर कर लें कि ये हमें इसको एडहर करना है, मतलब इससे कॉम्प्लायंट रहना है। तो ये मेरी सलाह आपके लिए कि आप यात्रा के दौरान भी अपना बिल्कुल ध्यान रखें।
0: सर, एक इम्पोर्टेंट बात, महिला कहते हैं ना कि दोहरी जिंदगी जीती है, घर भी देखती है, परिवार भी, ऑफिस भी, लेकिन घर में भी वो सबका ख्याल रखते हुए अपना ख्याल रखती है, और खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी देखभाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जो ऐसी माताएं हैं जो छोटे बच्चों की देखभाल कर रही हैं, वो अपने और अपने बच्चों की जो सांस से संबंधित चीजें हैं उनकी सुरक्षा कैसे करें?
1: देखिए, छोटे बच्चे के अब ध्यान रख रहे हैं आप, तो आपको ये ध्यान रखना कि मेरा संक्रमण मेरे बच्चे तक ना पहुंच जाए। तो इसलिए अपना आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका क्या कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, तो बच्चे तक भी बीमारी नहीं फैलेगी। बच्चा देखिए, जिस जिस उम्र का बच्चा है वो माँ के करीब में ज्यादा रहता है, चाहे बच्चा दूध पीने वाला बच्चा हो तो वो माँ के बिल्कुल ही करीब में रहता है, गोदी वाला बच्चा है या छोटा बच्चा है। क्योंकि अगर एक तरीके से आज भी इसको पुरुष प्रधान समाज माने तो भैया पुरुष लोग तो काम पे चले जाते हैं।

0: हैं, माता ही अपने बच्चों के नजदीक रहती है, और बच्चे भी अपने माँ के लिए क्या है कि उनको ज्यादा महसूस करते हैं सहज उनके साथ। तो माँ की
1: जी
0: ममता तो देखिए शुरू से ही हम लोग प्रचलित है कि माँ की ममता होती है, बाप की बापता की कोई बात ही नहीं करता। तो इसीलिए जो है माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, तो
1: जी
0: इसीलिए अपने जो माँ अगर जो है अपना खान पान ध्यान रखेगी, अपने बच्चे का खान पान का ध्यान रखेगी, उसको अपने इन्फेक्शन को होने से किसी को रोकेगी, अपनी बीमारी जो उसकी चल रही है उसका कंट्रोल में रखेगी अपना जो भी चिकित्सकीय सलाह से। उसके साथ में एक बहुत जरूरी बात है जो व्यायाम वाली बात मैंने बताई, तो 24 घंटे में से 1 घंटा आपको अपने शरीर को देना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने साथ जो है एक तरीके से पाप कर रहे हैं। और क्या है कि आपका स्वस्थ अगर शरीर है तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, क्या बोलते हैं ना हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। और धीरे धीरे करके ये आप देखेंगे, अगर आप व्यायाम शुरू करते हैं आज भी तो कुछ महीनों में आप देखेंगे आप में बहुत ही जबरदस्त बदलाव आएगा, आप ज्यादा खुश रहेंगे, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप जो है छोटी मोटी दिक्कत होते हैं तो आप उसकी परवाही नहीं करेंगे, हाँ भाई ये मतलब जो छोटे मोटे शरीर में दर्द उठते रहते हैं तो वो आपके दिमाग से नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो व्यायाम का बहुत बड़ा रोल है, तो खुद भी आप व्यायाम करिए और आपका बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें भी ये इंस्पायर करिए कि हाँ भाई बेटा तुमको भी या बेटी तुमको भी जो है अपना ध्यान रखना है, तो ये बहुत जरूरी है व्यायाम करना।
1: जी सर, जैसे कि आपने बताया कि अगर महिला को किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वो ये ध्यान रखे कि वो बच्चे तक ना पहुंचे, मतलब इन्फेक्शन बच्चे तक ना पहुंचे, उस चीज़ का प्रिकॉशन लेकर बच्चे का ध्यान रखे। तो क्या घर में किसी को अगर सांस का संक्रमण है तो महिला जो है ना फैमिली की, वो क्या सावधानी, उसे क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: हाँ शालिनी जी, ये सवाल बहुत अच्छा उठाया आपने। क्या होता है कि जैसे कि आप जाते हैं ना एरोप्लेन में जाते हैं, तो एरोप्लेन में एयर होस्टेस बोलती है कि पहले अपनी सुरक्षा करें और फिर जो है बाकी लोगों को ऑक्सीजन लगाएं,
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: मास्क जो ऑक्सीजन का जब बताती है एयर होस्टेस, तो
1: जी
0: ऐसे ही क्या है कि आपको घर में किसी को संक्रमण है तो उसकी भी सेवा करनी है लेकिन खुद को भी बचा के रखना है। तो संक्रमण किसी भी तरह का हो सकता है उसको कोई इन्फेक्शन हो, उसको कोई टीबी हो या ऐसी कोई बीमारी हो जो फैलने वाली हो। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि भाई आपके मुंह पे मरीज खांसे नहीं, ठीक है, जब भी उससे करें तो उससे मतलब ऐसा कोई आपको अछूत का बर्ताव नहीं करना है, लेकिन अपनी एहतियात बरतनी है कि आप मास्क पहन के रखें जो कम करते हैं ना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और अपने मरीज को भी मास्क पहनने की सलाह दें जब तक कि वो 2-4 दिन उसके बीत जाए, जब तक इन्फेक्शन कम हो जाए। तो थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगे जो भी घर का मरीज है,
1: जी
0: तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और उसका भी जो है आप ध्यान रख पाएंगे। तो आपको मरीज का ध्यान बिल्कुल रखना है, उसकी हर चीज का ध्यान रखना है, उसकी दवाई का ध्यान रखना है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, लेकिन साथ में खुद को भी बचाना है। तो इसलिए या तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें मास्क पहनकर, या फिर ये बिल्कुल उसको बोलेंगे रुमाल मुंह पे रखे खांसे, या जो है अपने कोहनी मुंह पे रख ले, है ना, अगर रुमाल रुमाल नहीं है तो। लेकिन क्या है कि आपको खुद को बचाना है, ये बात तो है।
1: बिल्कुल सही बात है ना दोस्तों, कितने अच्छे एग्जाम्पल के साथ में सर ने हमें समझाया। और अब बारी है प्यारे से ट्रैक की, और सुनते हैं, और इसके बाद अभी भी कई सारे प्रश्नों के उत्तर जानने हैं।

0: 12:46 और 35 सेकंड का वक्त। प्रोग्राम सतरूपा में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सेहत की, मानसून के मौसम से रिलेटेड। और इस सारी चीजों को बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दर्शन बजाज, प्रोफेसर रिस्पायरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। सर, क्या ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए जो बचाव के उपाय हैं अलग अलग होने चाहिए या क्या डिफरेंट है दोनों में?
1: देखिए, फर्क तो ये है कि बनावट का फर्क है शहर और गांव का। शहर ग्राम जो मतलब कह रहे हैं, गांव वाली बातों में क्या है कि अभी प्रकृति वहां पे मौजूद है, वहां पे नेचुरल चीजें हैं, और यहाँ शहर की तरफ आते जाते सब खत्म हो जाता है। तो ये बात भी है कि वहां पे मेहनत ज्यादा लगती है महिलाओं की, लेकिन वहां पे क्या है कि मेहनत ज्यादा है, कम्फर्ट कम है। यहाँ उल्टा, यहाँ मेहनत कम है, कम्फर्ट ज्यादा है। तो दोनों का बैलेंस हमें बनाना है, और बैलेंस कैसे आएगा, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर अपना शरीर का व्यायाम, कसरत, योगा, इस तरह की कोई चीजें करनी है, ठीक है, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब चीजें भी काफी लाभदायी हैं। तो बेसिकली ग्रामीण महिलाओं,

0: चाहे वो शहरी महिला हो, उनको अपना बैलेंस रखना है लाइफ का। देखिए कई लोग बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट मतलब बहुत आराम तलब जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी नहीं करना है। और इतनी मेहनत भी नहीं करनी है कि आप अपने शरीर को झोंक दें और अपना खान पान का ध्यान ना रखें। नींद पूरी लेनी है, जैसे गांव में आप जाएंगे तो वहां पे हरियाली ज्यादा होगी, ठीक है, खुला वातावरण होगा, शुद्ध वायु ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है, तो ये चीजें गांव में थोड़ी बेहतर हैं। लेकिन गांव में दिक्कत क्या है, गांव में आपको प्रॉपर जो है एक तरीके से ध्यान आपका मतलब कम रख पाते हैं आप लोग अपना, उस तरीके की सुविधाएं आसपास मौजूद नहीं है, चिकित्सकीय सुविधाएं भी दूर पड़ेंगी आपको। तो अपना जो है आसपास के एक नजदीकी डॉक्टर से अपना संपर्क बना के रखें गांव वाले, और जो है अपना नियमित एक तरीके से चाहे जा जाके मिले, अपना जो गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं वो अपने मिलते रहें टाइम टाइम से, या फिर एक कम से कम टेलीफोनिकली वो लोग कनेक्टेड रहें इस तरीके के चिकित्सकीय सपोर्ट के साथ में, कभी कोई दिक्कत ऐसी आ जाती है तो कम से कम वहां तक पहुंचने से पहले ही वो लोग अपना एक रिटर्न अपना एक प्लान बना के रखें। कई हम कई मरीजों को जो दूर रहते हैं हमसे, उनको हम रिटर्न प्लान बना के देते हैं कि भैया ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना है, इस दवाई का डोज बढ़ा देना है, दवाई का डोज ऐसे कर लेना है, तो उसे बोलते हैं रिटर्न एक्शन प्लान। तो वो ऐसे मरीजों के लिए डॉक्टर लोग कर सकते हैं, और मरीज भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जाके कि सर अब हम दूर रहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, जितना जल्दी आ नहीं सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के काम हो सकता है।
1: सर कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब महिलाओं को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: कोई भी चीज ऐसी हो जो कि अचानक से हो जाए, वो चीज जो है आपके लिए ज्यादा डेंजरस होती है, जैसे कि अचानक से सांस फूलने लग जाए किसी की, खांसी में खून आ जाए आपको, ठीक है, या फिर बहुत तेज दर्द होने लग जाए छाती में, चाहे पेट में, चाहे कहीं शरीर में, तो जो चीजें अचानक से हो रही हैं और तेजी से हो रही हैं, तेजी मतलब उनकी जो तीव्रता है वो ज्यादा है, या फिर ऐसे कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जैसे खांसी में खून आ गया, ठीक है, या फिर जो है हाथ नीले पड़ रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है उनके, वैसे तरीके मतलब दर्द वैसा अकड़न वाला, जैसे कि सुबह लोग उठते हैं तो हाथों में अकड़न रहती है और जो है छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द होता है, तो ऐसे लक्षण जब आप में आने लग जाएं तो आपको जरूर उस चीज का एक्सपर्ट से मिल लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात बताई है। और सर अब हम लास्ट में मानसून के दौरान महिलाओं के लिए आपकी जो सबसे जरूरी सलाह है क्या होगी, क्योंकि हर महिला अपने घर की देखभाल करती है और तो वो इस मानसून में अपने सांस और फेफड़ों का ख्याल कैसे क्या रखे, इन सारी चीजों के बारे में बस कम शब्दों में जरा बताएं।
0: तो शालिनी जी देखिए, आप भी महिला हैं और महिला जो होती है वो होती है रीढ़ की हड्डी, अपने घर का स्तंभ होती है, ठीक है, अगर स्तंभ भी चरमरा गया तो फिर दिक्कत है, तो इसलिए आपको जो है अपने को मजबूत रखना है ताकि पूरा घर आपका जो आप घर की धुरी हैं, तो इसलिए जो अब तक हमने अभी तक डिस्कशन किया है उसी को लेते हुए चले, तो आपको भैया पहली बात अपना मानसून में नमी से बचाव, दूसरी बात शुद्ध वायु, तीसरी बात व्यायाम, चौथी बात खान पान, ठीक है, और पांचवी बात चिकित्सकीय सलाह। तो ये पांच चीजों का आप अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो आपका जो है बढ़िया से मानसून कट जाएगा, इसके अलावा लाइफ भी अच्छी कटेगी। इसके अलावा अपने दिनचर्या में आप जोड़िए अच्छे संगीत को जोड़िए, ठीक है, संगीत बहुत अच्छा सूदिंग चीज है, संगीत जो है या फिर अच्छा अच्छे दो तीन ऐसे दोस्त तैयार हो आपके जिनके आप खुल के बात कर पाए, जिनके आप दिल का सारा जो मलाल है सब निकाल दें, ऐसे लोग आपके साथ होने चाहिए, दो तीन ऐसे लोग, चाहे परिवार में हो चाहे परिवार से बाहर हो। तो वो कहते हैं ना कि अगर दिल खोल लोगे यारों के साथ तो खुलना नहीं पड़ेगा औजारों के साथ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल सही बात बताई। और सर संगीत की बात कर रहे हैं तो हमारा FM संगीत पहुंचाता है लोगों तक, और बहुत सारे दोस्त हमसे जुड़े हैं जिन्हें हर एक चीज का ज्ञान होता है। थैंक यू सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और अपने विचार रखने के लिए, और मैं वाकई में सोचता हूँ कि जो तजुर्बा मैंने अभी तक जुटाया है अपने, मेरे को लगभग 30 साल हो गए डॉक्टरी में आए हुए, तो मैं समाज तक आपके जरिए पहुंचा पा रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों 12:56 और 15 सेकंड का वक्त हो चला है और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम शत्रुपा आपको पसंद आया होगा। ढेर सारी चीजों की जानकारी मिली होगी और साथ ही साथ 5 बातों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। अपनी सेहत का ध्यान रखना है, व्यायाम करना है और कुशल चिकित्सक की सलाह लेनी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है और सबसे पहले खुद की हेल्थ की ख्याल रखना है ना। तो बस इसी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप और नेक्स्ट प्रोग्राम और चुपे तेरी बात में आज होने वाली है खास बात कि बारिश का मौसम आपको कैसा लगता है और कई लोगों की आवाज को हम लेकर आए हैं आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज है दिन सोमवार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज पहला पत्र आप सभी लोगों का हम तक पहुंचा है, ग्राम बठेना पाटन से हैं बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली शिवम, चटौदा सारा गांव से हैं सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और निर्मला, साथ ही हैं कृष वर्मा। बेरडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर का ये पत्र हमारे पास पहुंचा है आप सभी लोगों का। झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से हैं रामतुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा का। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से हैं चनेठी बरेली से आप सभी लोग विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और प्यारी सी मुस्कान। छत्तीसगढ़ बाटापारा दत्तरेंगी से हैं तारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है जहर और इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल ने।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
1: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 7 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्मे बच्चों की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की उपयोगिता। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। और इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय रहेगा नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्मे बच्चों की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की उपयोगिता। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ का। मिलक भूजपुर आशा, जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से हैं। रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन और शहजाद हुसैन। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं। बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। पीर बहोड़ा बरेली से हैं आजाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम। मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से हैं आप सभी लोग फजलुद्दीन भाई, अब्बार भाई, अफजाल भाई और रामप्रसाद शर्मा। गैंगटा काशी धर्मपुर बरेली से हैं फहीम खां, सिद्दीक अली साबिया। धुनेनगर से हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का। बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, अमान भारद्वाज, महीपाल, प्रदीप पाल, नमन, संतोष, नितिश और सोनू का। मनकारा मंदिर बीटे कॉलोनी करगेना बरेली से हैं बनी सिंह सागर, पन्नी लाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती उमती भारती, रवनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह का। बक्सरिया फरीदपुर बरेली से हैं रामप्रसाद तोमर, मुरली देवी, मनोरमा देवी, भाग्यवती तोमर, रक्षपाल और बिट्टू तोमर का। ग्राम शंकरपुर पोस्ट सुसावा जिला बदायूं से हैं आप सभी लोग सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरज श्री यादव का। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है जुल्मी और इस गीत को गाया है उदित नारायण और आशा भोसले ने। शब्द रचना है गुलशन की और संगीत दिया है दिलीप सेन और समीर सेन ने।

चार मेगा हर्ट्स यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें

अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR बरेली CBS@gmail.com।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जहां हैं आप, वहां हैं हम, और आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी का अनुरोध गीत में। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति, थनक्ष और आरू साहू का। मोहल्ला गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से हैं केसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम, नवेद और रजिया शमसी, साथी हैं बेबी। खमरिया विलासपुर से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। ग्राम बहरामपुर टेका जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। बिलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी और आवाद खान। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति। पिपरपारा पालचूबा मुंगेरी छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन, वंशिका दिवाकर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। मोहल्ला हलवाइया शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। गांव चोहलादा बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। और बहड़ी से हैं आप अंजुम भाई और खालिदा बेगम। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है यस बॉस और इस गीत को गाया है अभिजीत ने।

4 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। और ये पत्र हम तक पहुंचा है अब आप सब लोगों का। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोत्रन मुस्ताबा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, प्रेम कमल वाष्णे, सुशीला कमल वाष्णे, प्रभात, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेद्रिचा, ऐश्वर्या, आप सभी लोगों ने यह पत्र हमें भेजा है वजीरगंज जिला बदायूं से। कुंज निवास धाकुंज इज्जत नगर बरेली से हैं वीके जौहरी विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी और शायना बी। राजनंदगांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और यांश ठाकुर। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। दावर तालाब लोनी से हैं रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। फूलबाग किला छावनी बरेली से हैं विशेंद्रत भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देव की देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम, मुन्नी देवी और श्री राम राठौर का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है ये दिल लगी और इस गीत को गाया है अभिजीत ने

0: मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 बजकर

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश का। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया, तनिष और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। परीमहल कासगंज से हैं आवाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नवील और गंजवारा से हैं शमसुल कमर राही। और आप सभी लोगों ने ये पत्र हमें भेजा है। छावनी अशरफ खां से हैं, राम प्रसाद शर्मा, वंश छोटी, गौरी काकू, रीता, विनोद कुमार, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी और अजय शर्मा, बाकी इनके परिवार के सभी सदस्य। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। करुलम रदावास से हैं अयूब खान, इरम

गुड़िया शोएब खान और नवेद खान सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं, जीशान वारसी और इमरान शेख, साथी हैं रेहान शेख। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान और डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी और इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है उपदेश देना आसान है, स्वयं आचरण में उतारना मुश्किल। और आइए अब जानते हैं हमारे श्रोताओं के विचार जो उन्होंने हमें लिखकर भेजे हैं फेसबुक कमेंट में। ये कमेंट है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर का, ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। ये लिखते हैं कि दूसरों को ज्ञान देना आसान है क्योंकि उसमें त्याग नहीं लगता, पर खुद उसी राह पर चलना कठिन है क्योंकि तब आदतें, आलस और स्वार्थ बीच में आते हैं। उपदेश शब्द है आचरण परीक्षा, जो कहता है वही करें, वही सच्चा है। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आइए अब चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट हमें लिखकर भेजा है भेरूलाल वाक्तारिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि हम दूसरों को सलाह तो बहुत आसानी से दे देते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मेहनत करो, पर इन बातों को स्वयं अपने जीवन में नहीं उतारते। अंत जिन बातों को हम स्वीकार कर सकें उन्हीं का उपदेश देना चाहिए दूसरों को।

104.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय है उपदेश देना आसान है लेकिन स्वयं आचरण में उतारना मुश्किल। चलते हैं कमेंट्स की ओर। ये कमेंट हमें लिखकर भेजा है ग्राम गोपी खीरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, हरिमोहन, अंजना, ज्योति बघेल और लक्ष्य बघेल लक्षू ने और साथ में पूरे परिवार के सदस्य लिखते हैं कि दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल होता है लेकिन उन आदर्शों को उन आदतों को अपने दैनिक जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल है। कथनी और करनी का भेद सदियों पुरानी मानवीय कमजोरी है। विचारों में आदर्श को अपनाना आसान होता है लेकिन बात जब वास्तविकता या फिर वास्तविक जीवन में हो तो उनके पालन की हो तो स्वभाव और परिस्थितियों का दबाव आड़े आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने और इसी बात पर आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: बहुत।
1: कार्यक्रम का अगला कमेंट हमें भेजा है। हमारा विषय आपको पता ही है, उपदेश देना आसान है लेकिन स्वयं उससे अपने आचरण में उतारना कितना मुश्किल है। इसी विषय पर अपने विचार हमें लिखकर भेजे हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये लिखते हैं कि आज का विषय है उपदेश देना आसान, खुद करना मुश्किल। कोई बात किसी से कहना, किसी को हिदायत देना, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, मगर उन बातों को खुद पर अमल करना, अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी व्यक्ति को वही हिदायत देनी चाहिए जिसको हम खुद अपने में अमल कर सकें। लाल मोहम्मद अंसारी जी, बहुत सही आपने लिखा है कि दूसरे को तो हम ज्ञान दे देते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में भी हमें आत्मसात करना चाहिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर। आज का विषय है, उपदेश देना आसान है, स्वयं आचरण में उतारना मुश्किल। इसी विषय पर अपने विचार लिखकर भेजे हैं मोहम्मद आसिफ अंसारी ने हैदराबाद तेलंगाना से। ये लिखते हैं कि आज का टॉपिक ही बहुत ही अच्छा है। हम दोस्त लोग दूसरे लोगों को ये बता सकते हैं कि ये कर लो वो कर लो, पर एक्चुअली वह होता नहीं है, उतना आसान नहीं होता। सर, और आज हम गाना, इन्होंने अपना गाना भी लिखा है, ये कहना चाहते हैं कि हम दूसरों को तो अपने दोस्तों को बहुत जल्दी हिदायत दे देते हैं कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, लेकिन उतना आसान जितना दूसरे को कहने में लगता है, असलियत में वो बात उतनी आसान होती नहीं है। इसीलिए उपदेश देना आसान हो जाता है पर स्वयं आचरण में उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ 100.4 FM पर। और आज का विषय है, उपदेश देना आसान है, स्वयं आचरण में उतारना मुश्किल। जानते हैं हमारे अगले श्रोताओं के विचार। ये कमेंट है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। ये लिखते हैं कि बिल्कुल 100% सही बात है कि उपदेश देना बहुत आसान है और उपदेश की पालन या उपदेश को पालन करना बहुत मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर आप उपदेश दे रहे हैं तो उसकी पालना करनी चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जितने उपदेश दिए उन सभी की पालना की है, यानी उनका पालन किया है। तो हमें भी गीता से ज्ञान लेना चाहिए और उपदेश देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि क्या हम उन उपदेशों को पालन कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो उपदेश देना नहीं चाहिए। अगर उपदेश दे रहे हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम इन उपदेशों की पालना करें।

100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। विषय है उपदेश देना आसान, स्वयं आचरण में उतारना उतना ही मुश्किल। और कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं के विचार कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट है तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, अरहम बाबू और किशबा नूर। ये लिखते हैं कि दूसरों को उपदेश या सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा कठिन। जब आप किसी और को सलाह देते हैं तो आप भावनात्मक रूप से उस समस्या से दूर होते हैं। इससे सही और निष्पक्ष बातें सोचना बहुत सरल हो जाता है। उपदेश देते समय आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती और ना ही आपको अपने ही शब्दों को अपनी जिंदगी में तुरंत लागू करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के 107.4 FM पर। और श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का भी और बचे हुए जो कुछ कमेंट्स हैं उनको शामिल करने का। ये कमेंट हमें लिखकर भेजा है प्रवीण चौहान ने। ये लिखते हैं कि उपदेश देना इतना प्रभावशाली नहीं होता जितना हमारा आचरण, जो हमें चरित्रवान बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में जगह दे देता है। उपदेश में सिर्फ बोले शब्द होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन अच्छे आचरण में हमेशा अच्छे कर्म होते हैं जिसके लिए स्वयं कर्म करना पड़ता है, इसीलिए ये मुश्किल होता है। हमारे एक श्रोता हैं अनोखेलाल मौर्य जी कटरा चांद खां बरेली से, इन्होंने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। एक और कमेंट हमारे एक श्रोता ने किया है, इनका नाम है उमेश कुमार गौर। ये लिखते हैं कि जो शांत हो गया जरूरी नहीं कि वो संघर्ष से डर गया, हो सकता है उसने पूरा खेल ही समझ लिया हो। ये कमेंट हमें लिखकर भेजा है प्रवीण चौहान ने। ये लिखते हैं कि उपदेश देना इतना प्रभावशाली नहीं होता जितना हमारा आचरण, जो हमें चरित्रवान बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में जगह दे देता है। उपदेश में सिर्फ बोले शब्द होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन अच्छे आचरण में हमेशा अच्छे कर्म होते हैं जिसके लिए स्वयं कर्म करना पड़ता है, इसीलिए ये मुश्किल होता है। हमारे एक श्रोता हैं अनोखेलाल मौर्य जी कटरा चांद खां बरेली से, इन्होंने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। एक और कमेंट हमारे एक श्रोता ने किया है, इनका नाम है उमेश कुमार गौर। ये लिखते हैं कि जो शांत हो गया जरूरी नहीं कि वो संघर्ष से डर गया, हो सकता है उसने पूरा खेल ही समझ लिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का कि आपने इतने प्यार से इतने सारे कमेंट कार्यक्रम में भेजे और अपने विचार भी हमें लिखकर भेजे कि किस तरह से दूसरों को ज्ञान देना तो आसान है लेकिन अपने जीवन में उसे आत्मसात करना, उसको उतारना बेहद मुश्किल हो जाता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ से अमृता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में शाम 5:30 पर आप सुन सकेंगे महिला साथियों का प्रिय कार्यक्रम नारी संसार, जिसमें चर्चा होगी मोबाइल की लत और परिवार से बढ़ती दूरियां। सुनिएगा वार्ता, ब्यूटी टिप्स और इनसे मिलिए भी। युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युवाणी आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे से, जिसमें होगा आज का सवाल, कुछ खास है आज और धूम धड़ाका। ग्राम जगत, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 से। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम अक्षय वट का। आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे अनुरोध गीत, समय रहेगा 7:31 का। और रात्रि 8 बजे से आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की शेष सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हमारी कल की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी कल प्रातः 8:15 से, जिसमें कल सुबह आप सुनेंगे नमस्ते बरेली, जिसमें होगी बरेली की खबरें और ओबी साथी फोनों भी। समय होगा सुबह 8:15 का। लोकगीतों का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:45 पर। 9 बजे से आपको जोड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। आपकी पसंद सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सुबह 10 बजे से। सब रंग, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 11 बजे से। 11:15 का समय रहेगा कार्यक्रम झुमका गिरारी का, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम।

11:30 से आपको जोड़ेंगे FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रमों से। आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत को आप सभी सुन सकेंगे कल दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम रस रंग का, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गजलें, कव्वाली व लोकगीतों को। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आपको सुनवाएंगे दोपहर 3:30 से। कल शाम 4 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। भजन संध्या आप सुनेंगे कल शाम 5:05 पर। महिला साथियों का प्रिय कार्यक्रम नारी संसार आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:30 पर, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा सोशल मीडिया सुविधा या परेशानी। साथ ही होगी वार्ता, किचन टिप्स और इनसे मिलिए युववाणी, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 6 बजे से, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज और आपकी पसंद। किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर, जिसमें आज की बात में बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। साथ ही होगा हेलो किसान वाणी, बाजार भाव, कृषि समाचार, सवाल व नसीहत और साथ ही साथ लोकगीत भी। कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुन सकेंगे कल शाम 7 बजे से, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा संतुलित आहार पर और वार्ता होगी जल ही जीवन है पर। वार्ताकार होंगे विजय कुमार, साथ ही होगा लोकगीत व ओबीवी। प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन आप सुन सकेंगे कल शाम 7:31 पर, जिसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। विषय होगा नवजात शिशुओं और समय से पूर्व जन्मे बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका, शंकाएं व समाधान। और रात्रि 8 बजे से आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 होने वाले हैं।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के ठीक 5:05 और 4 सेकंड। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम भजन संध्या का पहला भजन आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज में।

आप सुन रहे हैं भजन संध्या 100.4 FM पर। कार्यक्रम का अगला भजन आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम का अगला भजन आप सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल के ही स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संसार।

प्रोग्राम नारी संसार सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों और सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।

सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM। सखियों, कुछ लोगों को अपने घरों में पालतू जानवरों को पालने का बहुत शौक होता है। वो पालतू जानवर कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारी सखियां सहेलियां अपने घरों में कुत्ते पालती हैं, बिल्ली पालती हैं, खरगोश पालना भी पसंद होता है। और हमारी जो बहनें गांव में रहती हैं वो अपने घरों में गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, भेड़ आदि जानवर भी उन्हें पालना बहुत पसंद होता है। वो उन जानवरों को अपने घरों में रखती हैं जिससे उन्हें काफ़ी सारे फायदे भी हैं। दूध, उपले, गोबर की खाद, ये सारी चीज़ें हमें गाय भैंस से प्राप्त होती हैं। सखियों, हमारे घर में जो भी जानवर हैं हमें उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। उनके भोजन के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। जब भी वो बीमार हों तो उनका इलाज करवाएं, उनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान दें। सखियों, आज है 6 जुलाई, आज मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। इसका उद्देश्य जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जैसे रेबीज, कोविड-19, इबोला, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। दुनिया भर में लगभग 60% संक्रामक बीमारियां इसी श्रेणी में आती हैं। सखियों, हम सबको जागरूक होना चाहिए, लोगों को इन बीमारियों के जोखिम, बचाव के उपायों जैसे स्वच्छता, टीकाकरण और सुरक्षित भोजन तथा एक स्वास्थ्य मानव पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं अवधारणा के बारे में शिक्षित करना है। हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पालतू जानवरों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और उनका टीकाकरण भी अवश्य कराना चाहिए जिससे उनके शरीर में रेबीज ना हो, तभी वो हमारी फैमिली में अच्छे से हमारी फैमिली में बच्चों के साथ रह सकते हैं। उनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है।

0: सखियों, हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। हमारा आज का सवाल है, विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? आप अपना कमेंट हमें सेंड कीजिए, हमें इंतज़ार है। अब हम शुरू करते हैं अपना सेगमेंट इनसे मिलिए। आपको मिलवाते हैं श्रीमती मंजू देवी से, जो एक लघु उद्योग करता है। आइए सुनते हैं।
1: मंजू जी, आप अपने बारे में हमारी बहनों के लिए बताइए, आप क्या करती हैं?
2: मैं गृहिणी हूँ और सिलाई वगैरह भी, जैसे घर का काम करती हूँ, उसके बाद जब टाइम मिलता है थोड़ा सा सिलाई वगैरह भी करती हूँ। मेरी सोना पत्तल की मशीन है, जिससे समूह में जुड़ी गई हूँ
1: जी।
2: ये जैसे कुछ महिलाएं हैं वो आती हैं हमारे साथ में, और जो दोनों पत्तल की मशीन है उसका सब लोग महिलाएं काम भी करती हैं।
1: तो मंजू जी, आप सबसे पहले बात तो ये बताइए, समूह के बारे में बताइए, समूह क्या होता है हमारी बहनों के लिए?
2: समूह वो होता है, जैसे हम महिलाएं होती हैं, जैसे 10 महिलाओं से कम नहीं होना चाहिए उसमें।
1: अच्छा।
2: और 20, हाँ उससे ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन 20 मतलब 10 महिलाओं से कम नहीं हो सकती है। तो उसमें हमारे लिए बहुत फायदे होते हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जिनके लिए पैसा नहीं मिल पाता है, या पैसे जो कार्य करना चाह रही हैं उनके लिए पैसा नहीं है उनके पास में
1: जी।
2: तो ये समूह हम लोग होते हैं जो 12 ही लोग होते हैं, सब लोग अपनी बचत जमा करके हमारे लिए बैंक से भी मिलता है।
1: अच्छा।
2: जो की टाइप में लोन टाइप में होता है।
1: अच्छा।
2: हमारे लिए कार्य करने के लिए, घरेलू कार्य करने के लिए मिलता है।
1: अच्छा, मतलब कोई भी हम घरेलू कार्य कर सकते हैं?
2: हाँ, कर सकते हैं। और फिर थोड़ा उसका ब्याज वगैरह भी कम पड़ता है। बहने होती है जो की हम पैसे नहीं है उनके पास में, जो कार्य करना चाह रही हैं, इसलिए हाँ तो इसलिए वो पैसा ले और अपना कार्य कर सकती, कोई भी कार्य कर सकती हूँ घरेलू।
1: अच्छा, तो ये भारत सरकार की तरफ से स्कीम है ये। आपने बताया कि आप एक गृहिणी हैं और खाली समय में आप सिलाई भी करती हैं, जो आपका शौक है, और साथ ही साथ आप दोना बनाती हैं।
2: हाँ, दोना पर ये दोना प्लेट बनते हैं, जिससे कि चाउमीन है या बताशे वाले होते वाले दोने होते हैं
1: जी, जी
2: बनते
1: हैं। अच्छा, तो वो मशीन आपके घर में खुद आपकी अपनी लगी हुई है?
2: जी हाँ।
1: तो उसका काम किस तरह से होता है, आप हमारी बहनों को थोड़ा विस्तार से बताइए इसके बारे में।
2: उसका काम ये है, जैसे वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
1: जी,
2: जिससे की वो लाइट से चलती है।
1: अच्छा।
2: तो उसमें एक पेपर आते हैं, जो डोना बनाने के लिए पेपर आता है, तो के लिए हमें उसका एक स्टैंड होता है पीछे।
1: अच्छा।
2: तो हमें उस पेपर के लिए लगाना पड़ता है उसमें, फिर लाइट से उसे मतलब लाइट से उसे चलाते हैं। जो डाइयां होती हैं उसमें हीटर लगे हुए होते हैं।
1: अच्छा।
2: उनके लिए जब हम गर्म करते हैं तो वो दोना, तो जब हम उसे ऑन करेंगे तो वो जो पीछे वाला रोल आगे आता है,
1: तो
2: डाई में उससे कटती रहती है।
1: अच्छा।
2: जो भी साइज वो हम काट सकते हैं, जैसे मान लो चाउमिन प्लेट है, या हमारी जो बड़े वाले दोने हैं जो टिक्की में यूज होते हैं ये वाले दोने, लेकिन जो भी साइज काटते हैं वो उसकी डाई हमें बदलनी पड़ती है।
1: अच्छा, नहीं तो उसका फ्रेम, उसका कोई फ्रेम टाइप होता होगा कि आपको किस डिजाइन का किस तरह का बनाना है?
2: जी हाँ जी।
1: अच्छा।
2: फ्रेम आते हैं, जैसा हमें चाउमिन प्लेट बनाना है लगाना होगा, और जैसे हमें जो टिक्की वाला दोना बनाना है तो फ्रेम।

0: बनाना
1: तो इसकी टाइमिंग क्या हो रही है, वर्क होता है कितनी देर में, कितनी प्लेटें दोने बन जाते हैं, क्या समय रहता है इसका?
0: इसमें जैसे हमारे अगर हम दो चला दे तो हमारा ये एक मशीन में 25 पीस बनते हैं, और अगर हम डबल डाई बनाएंगे जैसे दो मशीन हम अगर चला रहे हैं एक मिनट में 50 पीस बनेंगे। इस हिसाब से अगर हम एक घंटे में उसमें मशीन चलाते हैं तो उसमें दोनों अगर हम डाई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं 3000 पीस बनते हैं।
1: अच्छा, काफी फास्ट काम होता है फिर तो ये।
0: हाँ, और तो, फिर उसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है।
1: अच्छा, तो ये देखने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक लगता होगा, क्योंकि एकदम इस तरह से जब प्लेटें और ये सब बनते होंगे तो अच्छा भी लगता होगा देखते हुए काफी।
0: इसलिए ये है कि जैसे मान लो जब बनते हैं तो 2-3 हजार पीस मिलती है, तो अब उसमें प्रॉफिट भी हमें सही मिलता है, उसमें हमारे लिए बचत भी सही होती है। अगर हमें एक घंटे में उस पर पूरा जितना भी हमारा खर्चा होता है सारा खर्चा काटने के बाद में 100 रुपए बचते हैं।
1: अच्छा,
0: और अगर हमने वो मशीन अगर 2 घंटे या 3 घंटे चला ली तो उस हिसाब से 100 के हिसाब से अगर 3 घंटे चलाए तो 300 रुपए हमारा फायदा मुनाफा हुआ।
1: ये भी अच्छा है कि घर बैठे ही आप अपना काम कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर के काम के साथ साथ आप अपना ये काम भी कर सकती हैं, मतलब दोनों ही काम हो सकते हैं, घर गृहस्थी का भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अपना ये भी काम कर सकती हैं। और आपने बताया कि आप खाली समय में सिलाई भी करती हैं, समूह से भी जुड़ी हैं, कितने सारे काम आप एक साथ करती हैं, बहुत बिजी रहती हैं आप तो फिर तो। मंजू जी, आप ये जो वर्क करती हैं, ये जो डोना बनाने वाला, ये अकेले ही करती हैं या फैमिली में कोई और भी आपके साथ हेल्प करवाता है?
0: हाँ है, वो मेरे पति हैं, वो उनका सबसे बड़ा सहयोग है।
1: अच्छा,
0: जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, वो
1: अच्छा।
0: उनके सहयोग से, और जो मेरी बहनें हैं जो समूह में जुड़ी हुई हैं उनके सहयोग से ही ये काम चल रहा है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही और ये हमारी सभी बहनों के लिए है कि अगर उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट करते हैं तो वो कोई भी काम कर सकती हैं, जो भी उनका सपना है वो पूरा कर सकती हैं अगर हस्बैंड उनको सपोर्ट करने वाले मिले हैं। मंजू जी, मुझे ये बताइए कि हमारी बहनें हैं, उनका आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, जैसे कि आप आत्मनिर्भर हैं, कितना जरूरी है, क्या मानते हैं आप?
0: उनका बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर होना, क्योंकि अगर हमारे पास में पैसा है तो हम अपनी सारी जरूरतें पूरा कर सकते हैं
1: जी,
0: अपनी फैमिली की भी जरूरतें पूरा कर सकते हैं,
1: क्योंकि
0: आज का समय ऐसा है जब तक दोनों लोग नहीं कमाएंगे
1: जी
0: तब तक मुश्किल हो रहा है घर का खर्च, क्योंकि आजकल बहुत सारी महंगाई है
1: जी, जी,
0: बहुत
1: जी।
0: सारे खर्चे हैं जो कि एक इंसान कैसे कर सकते
1: हैं, खर्चे हैं और महंगाई है और फिर साथ ही साथ शौक भी बहुत सारे हैं इंसान के,
0: क्योंकि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अपना शौक पूरा कर सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, हर मेरा कहना है हर महिला के लिए कि अगर जो भी है घर में है खाली टाइम में तो सही कार्य करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही,
0: हमारे पास पैसा होगा तो हम अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी शौक कर सकते हैं, अपने पति की इस तरह से मदद भी कर सकते हैं,
1: मदद भी कर सकते हैं जी जी।
0: एक इंसान पूरे नहीं कर सकता है खर्चा, जो खर्चा करेगा या वही बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एक इंसान नहीं कर पा रहा है
1: जी जी।
0: दोनों लोगों को अगर हम मिलकर करेंगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा रहेगा।
1: नहीं, जब ये जो डोना बनाने वाला ये जो वर्क स्टार्ट किया आपने, कैसे किया, अगर हमारी कोई भी बहन ये वर्क करना चाहती है तो वो कैसे शुरुआत करें इस काम की?
0: उसमें मशीन, हमने पहले ये मशीन ली थी
1: जी,
0: और उसके बाद में जो पेपर वगैरह मिलते हैं उसके लिए हमने थोड़ी जानकारी ली थी, फिर उसमें यहाँ पर पेपर मिलता है
1: जी जी।
0: और मशीन में तो इसी तरह के मेरे पति हैं जो उन्होंने मेरा सहयोग किया, इसीलिए मैं इस काम के लिए आगे बढ़ा।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है जो आप दोनों लोग मिलके, आपके हस्बैंड आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप काम कर रही हैं इस फील्ड में और अपने शौक भी साथ ही साथ पूरे कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आप इतनी बिजी रहकर भी आपने हमारी बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने हमसे बात करी, अपना कीमती समय निकाला। मंजू जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों, मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल हर वर्ग हर उम्र का व्यक्ति कर रहा है। मोबाइल से हमें कई सुविधाएं तो मिली हैं, साथ ही साथ हमारा काम भी आसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल के प्रति लोगों में लत बहुत बढ़ गई है, जो कि एक समस्या बन गई है। सखियों, मोबाइल के कारण परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव कम हो रहा है। हम देखते हैं लोग एक घर में तो रहते हैं एक साथ, लेकिन आभासी दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। सखियों, हम देखते हैं फैमिली में, घर में हर सदस्य के पास अपना अपना अलग अलग मोबाइल फोन है। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। पास में बैठे किसी भी फैमिली मेंबर से बात नहीं होती है। जो भी हमारे सोशल मीडिया पर दोस्त हैं, उनसे ही बातें करना, उनसे जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। सोशल मीडिया, गेमिंग और रील्स के इस्तेमाल से लोग परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। लोग बाहरी दुनिया में ही अपनी खुशी ढूंढने लगे हैं। सखियों, बच्चों में भी मोबाइल देखने की लत बहुत लग चुकी है। सखियों, बच्चों को आप आउटडोर गेम खेलने की आदत डालें, उन्हें उनके दोस्तों के साथ खेलने की आदत डालें, उनके शौक उनकी रुचि के हिसाब से उनको प्रोत्साहित करें। इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा और वो स्वस्थ भी रहेंगे। और पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए। बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, बच्चों को उनके दादा दादी के साथ बैठने की आदत डालें और जब भी समय मिले तो बच्चों के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान ज़रूर बनाएं, उन्हें घुमाने ले जाएं। इससे बच्चों का मानसिक विकास होता है और उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। बच्चों को फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आप ज़रूर बताएं, जिससे बच्चों को फ़ोन की लत से बचाया जाए। और आप खुद भी फ़ोन का इस्तेमाल कम और लिमिट से कीजिए, जब ज़रूरत हो तब।

सखियों, मानसून ने दस्तक दे ही दी है, बारिश का मौसम आ गया है। ऐसे मौसम में हम कैसे रखें अपनी हेल्थ का ख्याल, इसके लिए ज़रूरी है आप दूषित पानी और बाहर के खुले खाने से बचें, क्योंकि इस समय बैक्टीरिया और मच्छर जनित बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे उबला हुआ या शुद्ध साफ आरो पानी पिएं, सड़क के किनारे बिकने वाले कटे हुए फल, चाट और खुली हुई चीज़ें खाने से बचें। ताज़ा और हल्का भोजन जो पचने में आसान हो वही खाइए, और हरी सब्जियां और पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर व पकाकर ही खाएं। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी लें। अपनी डाइट में नींबू, संतरा और मौसमी फल शामिल करें। गर्म पेय जैसे हर्बल चाय या अदरक वाली चाय का सेवन करें, जो गले को संक्रमण से बचाती है। अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए और बारिश के मौसम का आनंद लीजिए। और हाँ, आप जब भी सोएं तो मच्छरों से बचाव जरूर कीजिए, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, जिससे आप डेंगू मलेरिया आदि से बचे रहेंगे।

सखियों, आज हमने आपसे पूछा था, आज का सवाल सवाल था विश्व की सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी का नाम। इसका सही जवाब है मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 को मिलाकर कुल 10,868 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। सही जवाब दिया है इन श्रोताओं ने राजवीर सिंह यादव, लाल मोहम्मद अंसारी, राजेश वर्मा, प्रवीण चौहान और उमेश कुमार बुलंदशहर से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे महिला साथियों का प्रिय कार्यक्रम नारी संसार। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवाणी।

हर बार की तरह इस बार भी युववाणी का ये मंच तैयार है युवाओं की ऊर्जा, उनके सपनों और उनकी आवाज को एक नई उड़ान देने के लिए। अगले कुछ मिनट हम और आप मिलकर बुनेंगे यादों का एक खूबसूरत ताना बाना, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर। और अभी एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आज है 6 जुलाई, और 6 जुलाई का जो दिन है वो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि आज हम बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वो एक प्रख्यात शिक्षाविद, वकील और राजनीतिक थे। बहुत कम उम्र में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथियों सबसे युवा कुलपति बने, और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उन्होंने उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। सन 1900

1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक रहे। उनका प्रसिद्ध नारा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। वर्ष 1953 में जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया, जहां 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर प्रोग्राम युववाणी और मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा। दोस्तों, जिंदगी की इस भाग दौड़ में कभी कभी ठहर कर खुद से बात करना बहुत जरूरी होता है और इसी की सोच के साथ अब वक्त हो गया हमारे आज के सबसे खूबसूरत सेगमेंट धूम धड़ाके का। तो आइए धूम धड़ाके सेगमेंट में सुनते हैं ये धूम धड़ाके वाला सॉन्ग।

0: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। और आप बने हुए अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है, आज हम मना रहे हैं वर्ड जूनोसिस डे। तो वर्ड जूनोसिस डे के बारे में जानकारी लेते हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हरिओम पांडे, जो की एक सीनियर साइंटिस्ट है IVRI से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। आज सभी युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम पांडे
0: जी। डॉक्टर साहब, आज जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड जूनोसिस डे है, इसे पूरी दुनिया 6 जुलाई को मनाती है, तो इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे अपने युववाणी प्रोग्राम में।
1: जी जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं विश्व जूनोसिस दिवस, जो कि आज 6 जुलाई को है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये बड़ा रोचक है और हमें जान लेने की जरूरत भी है कि मानव के साथ पशुओं का बड़ा पुराना संबंध रहा।
0: बिल्कुल।
1: करीब करीब 12,000 वर्ष पूर्व ऐसा मान सकते हैं कि जब मानव सभ्यता वैज्ञानिकों के हिसाब से शुरू हुई होगी, या मानव ने जो है अपना सिविक जीवन शुरू किया होगा, तो

0: में सबसे पहले उसका साथी बना कुत्ता, मतलब जिसे हम स्वान कहते हैं, और बाद में इसी तरीके से 10,000 वर्ष पूर्व करीब करीब गायों को, फिर ऐसे अलग अलग कालखंड में उन्होंने बहुत सारे पशुओं को जो है पालतू बनाया और उनके साथ जीवन चलाते आए हैं। इनके साथ बहुत सारा उनको लाभ मिला, मगर लाभ के साथ साथ चुनौतियां भी रहती हैं, या कह सकते हैं थोड़ी बहुत समस्याएं। उन्हीं में से एक ये है, पशुओं से मनुष्यों में या मनुष्यों से पशुओं में कुछ बीमारियां फैलती हैं, और ऐसी ही बीमारियों को हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। उसी की जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम 6 जुलाई को जो कि आज है ये मनाया जाता है।
1: अच्छा, इसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ आप और विस्तार से बताइए हमारे लिसनर्स को कि ये क्या है।
0: जी, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई विश्व जूनोसिस दिवस की इतनी जरूरत क्यों आ पड़ी।
1: जी,
0: तो इसमें देखा गया बहुत सारी बीमारियां पहले जो है ये होती रही, मगर इतनी जागरूकता नहीं थी। तो ये हुआ कि सबसे पहले तो हम इसको एक जागरूकता कार्यक्रम में मनाना शुरू करें, और ये 6 जुलाई को इसलिए रखा गया क्योंकि 6 जुलाई 1885 में एक बहुत महान वैज्ञानिक जिनको लुईस पाश्चर कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार रेबीज से पीड़ित एक बालक का सफल टीकाकरण किया था। तो उन्हीं के इसमें कम्यूनिकेट करने के लिए इस ऐतिहासिक उपलब्धियों को स्मृति के रूप में मनाने के लिए 6 जुलाई का चयन किया गया है। जी
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके जो प्रमुख जो भी जूनोटिक रोग हैं उनके बारे में कुछ बताइए। ऐसा भी तो है ना कि इसमें बहुत सारे रोग प्रमुख भी बताए गए हैं कि इनसे जल्दी फैलता है।
0: जी जी, जैसे इसमें कुछ रोग तो निश्चित रूप से हम सभी श्रोताओं को जानना चाहिए। जैसे कि एक रोग है रेबीज, जो कि हमारे
1: बहुत ज्यादा सुनने में आता है,
0: बहुत सुनने में आता है, और बहुत सारे लोग सफर भी करते हैं, और इसमें बहुत ही दुखद अंत होता है और जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें।
1: जी, अच्छा, रेबीज तो डॉक्टर साहब वो होता है ना जो कि कुत्ते के काटने से होता
0: जी
1: है।
0: इसमें कुत्ते हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, या और भी अन्य स्तनधारी पशुओं के काटने से हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा पशु जो कि स्वयं संक्रमित हो वो काट ले तो उसके होने की पूरी संभावना रहती है और होता भी है। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कि जहां पर काटा हो, जो घाव बनी हो, उसको लगातार साबुन लगा के धोते रहें, करीब करीब 15 मिनट तक धोएं बहते पानी में।
1: ऐसा क्या जैसे कि एकदम से हमारे किसी कुत्ते ने काटा, एक तो नॉर्मल कुत्ता है जो काट लेगा, एक है कि जो कि पहले से पागल हो गया, ये भी बोलते हैं ना, तो खतरनाक कौन सा ज्यादा है, या फिर हम किस तरह से उसमें जब हमारे तुरंत काटे तो हम क्या करें, क्योंकि हम एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए।
0: देखिए, ऐसा है कि रेबीज जो संक्रमित कुत्ते हैं
1: जी,
0: वो तो उनका लक्षण दिखता है, उनके व्यवहार में दिखता है कि वो पागलपन का व्यवहार करेंगे, भौंकेंगे, पीछे से आएंगे, काट सकते हैं, लार गिरती रहती, बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं
1: जो कि जिनसे पहचाना जा सकता है।
0: मगर क्योंकि ये जो है ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसमें आदमी को चांस नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ये जो कुत्तों में भी लक्षण काफी समय बाद आता है, या हो सकता है तुरंत ना आए, हो सकता है कुत्ता संक्रमित हो, लक्षण ना दिखा रहा हो, आपको काट ले तो आपको हो जाए, बीमारी का व्यवहार बाद में प्रदर्शित करे। तो जो भी कुत्ता आपको लगता है कि वो स्ट्रे डॉग है, कोई ऐसा है जो कि किसी का पालतू नहीं है, जिसका रेबीज का स्वयं का टीका ना हुआ हो, ऐसा अगर कुत्ता काटता है तो हमेशा यही संस्तुति दी जाती है, कहा जाता है कि आप बिना सेकंड चांस लिए जो भी प्रोटोकॉल है डॉक्टर के पास जाएं और रेबीज का टीकाकरण कराएं, क्योंकि जान है तो जहान है, जीवन बहुत जरूरी है और इसमें जीवन ही खतरे में पड़ जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम कुछ वक्त से देख रहे हैं वन हेल्थ की जो डॉक्टर साहब बात हो रही है काफी ज्यादा चर्चा में है ये, तो आप इसमें अगर कुछ बताना चाहें वन हेल्थ के।
0: देखिए, हम लोग कभी कभी जो है स्वयं तक सीमित हो जाते हैं, तो जैसे हम मानव हेल्थ की बात कर लेते हैं, कभी कभी हम पौधों की हेल्थ की बात कर लेते हैं, कभी कभी पर्यावरण की हेल्थ की बात कर लेते हैं, मगर जब हम इसको समेकित रूप में एक ही फ्रेम में देखते हैं, और वो जरूरी भी है, जब सब स्वस्थ रहेगा तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर है। वन हेल्थ एक ऐसा विचार है जिसमें तीनों का स्वास्थ्य एक साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारा पशु, पर्यावरण और मानव, और जब ये तीनों स्वस्थ रहेंगे तो हमारी पूरी धरा और पूरी जो है सभ्यता स्वस्थ रहेगी। तो ये वन हेल्थ हमको लगता है इससे जो है ज्यादा सरलता से नहीं समझा जा सकता।
1: अच्छा, कुछ लोग होते हैं डॉक्टर साहब, तेने काट लिया तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। और क्योंकि ऐसा भी मैंने सुना है कि कभी कभी लक्षण जो है उसी वक्त नहीं दिखते हैं लेकिन बहुत टाइम बाद फिर दिखते हैं, तो हमें टीका कब तक लगवा लेना चाहिए? क्योंकि अगर हमारा ऐसा हुआ कि एकदम से हम नहीं लगवा पाए तो कितने वक्त के बीच में हमें टीका लगवा लेना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ जो है हम सेव कर सकते हैं?
0: ऐसे जो इसमें रिकमेंडेशन है कि जब आपको काटता है तो कायदे से तुरंत लगाना चाहिए, मगर अगर

0: किसी कारणवश आप दूर हैं, कहीं ऐसा कोई भूल हो गई, संशय में हैं, किसी ने आपको सही तरीके से रिकमेंड नहीं किया है, तो आप यथा शीघ्र डॉक्टर के पास जाएं और टीका जो है वो आप लगवाना शुरू करें। क्यों? निश्चित रूप से जो आपने बताया कि इसमें बीमारी कभी कभी लक्षण प्रदर्शित करने में बहुत समय लग जाता है, ये निर्भर करता है कि कुत्ते ने काटा कहाँ है, और वायरस होता है, विषाणु जनित रोग है, नर्व्स के माध्यम से वो ट्रेवल करता है और मस्तिष्क में पहुंचता है, तो वो काफी समय लग सकता है, तो ये निर्भर करता है कि वो कुत्ते ने आपको काटा कहाँ है। तो इसलिए इसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आप यथा शीघ्र पहुंचें और आप वैक्सीनेशन या टीकाकरण शुरू करें। और ये संक्रामक रोग जितने भी हैं, आजकल जो आप जूनोसिस डे की चर्चा कर रही हैं, इसमें ऐसा देखा गया है कि जो भी विश्व में ज्ञात संक्रामक, जो भी विदित संक्रामक रोग हैं, इसमें लगभग 60% जूनोसिस, मतलब कि ये जो है मनुष्य इसमें पशुओं में और पशुओं से मनुष्य में आ जा सकती हैं, और इनमें करीब नए संक्रमण रोगों में लगभग 75% रोग पशुओं से संबंधित पाए गए हैं। इसीलिए हमें इन रोगों के रोकथाम को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। अगर आप कहें तो हम और भी एक दो बीमारियों का नाम बता सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बिल्कुल श्रोता जानना चाहेंगे।
0: जो कि जूनोटिकली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें से एक ब्रुसेलोसिस है। ब्रुसेलोसिस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग तो इसका नाम भी नहीं सुने रहते हैं। यह रोग संक्रमित पशुओं के गर्भपात से, भ्रूण से, प्लेसेंटा या जो योनि से स्राव होता है, कभी कभी कच्चे दूध के संपर्क से भी ये मानव में फैल सकता है। लंबे समय तक अगर ये संक्रमण रहता है तो आप पाएंगे जोड़ों में आपके दर्द होगा, कमजोरी होगी, कार्य करने की क्षमता में जो है आपकी कमी आती है। और इससे बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा उबला हुआ या पाश्चराइज दूध पिए। और जो भी ये संक्रमित पशु हैं, इनको जब भी आप जैसे गर्भपात हो रहा है या ऐसे समय पे, तो वहां पर दस्ताने का उपयोग करें और उनसे सीधा जो है स्किन के कांटेक्ट में ना आए।
1: तो जैसे कि लिसनर्स आप सुन रहे हैं कि ऐसे में दस्तानों का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में उनके आएंगे तो आपको जो है ज्यादा दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमने आपसे बात किया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी चलते चलते आप हमारे यूथ को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो आप क्या कहेंगे?
0: इसमें एक बहुत अच्छी खास बात आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा जो है वो हमारे पशु प्रेमी हैं।
1: जी,
0: पशु प्रेमी होना बहुत ही एक मानव का बहुत अद्भुत गुण है, इसको जिंदा रखें, मगर पशुओं के साथ साथ के लिए जागरूक रहें कि भाई इनके साथ क्या क्या बीमारियां हैं जो इनसे हमें हो सकती है या हमसे इनको हो सकती है। तो इनमें अपने पशुओं को सही तरीके से रखने के लिए टीकाकरण सही तरीके से करवाएं, और व्यक्तिगत रूप से जब भी इनको छुएं तो साफ सुथरे हों। जैसे अगर आप पशुपालक हैं तो आप ये जानें कि कैसे आप उनका रख रखाव करेंगे। अगर आप पेट को पालते हैं तो आप उनको नियमित टीकाकरण करें, आपके इर्द गिर्द उनको जागरूक करें कि इनका टीकाकरण खासकर ऐसी जगहों पर जरूरी है। ये सब जो खतरनाक बीमारियां हैं, ये जूनोसिस के माध्यम से या पशुओं के माध्यम से आ सकती हैं, तो इनसे निजात पाने के लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा किस माध्यम से ये उनसे हम में आती हैं, और उनके बचाव के लिए जो भी वैज्ञानिक रिकमेंडेशंस होती हैं इनको अगर करते हैं तो ये पाएंगे कि हम लोग पशुओं के साथ हम लोग कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब हम साथ साथ रह सकते हैं और साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है युवाओं के लिए कि वो इस चीज को वैज्ञानिकता के साथ इसका महत्व दें और उनके निर्देशानुसार वैज्ञानिक तरीके से बनाएं और अनुमोदित विधि चीजों का अनुकरण करें।
1: जी, जैसा कि श्रोताओं आपने सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया आप उन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे और अपने पेट का जिस तरह से आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखेंगे।
0: जी, तो एक शब्द मैं और कहूंगा कि भाई पशु स्वस्थ होंगे, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तो ही हमारा समाज, हम पूरा जो है मानव और पूरी पृथ्वी स्वस्थ रहेगी। तो वो जो वन हेल्थ का भी जो हमारा उद्देश्य है
1: वो भी पूरा होगा।
0: धन्यवाद श्रोताओं, खासकर हमारे युवा साथियों।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: नमस्कार
1: साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप सभी अपना और अपने पशुओं का खूब ख्याल रखेंगे।

आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी। और प्रोग्राम में अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। और सवाल हमने आपसे पूछा है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव जो एक कछुआ है का नाम क्या है, और इसका सही उत्तर है जोनाथन। सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल है राम कुमार रेवार, विष्णु धर्मेंद्र छिपा, जॉन्डी कैस्ट्रो, दिनेश वर्मा, उत्तम सिंह जागेल, सुदर्शन शाह, गंगा सिंह रावत, हीरा मणि वर्मा, विजय फागू राम यादव, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, राम सरन, अनोखे लाल दिग्दर्शन गौड़, प्रदीप कुमार और हमारे अन्य सभी साथी।

और साथियों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली। हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपने दोस्त आबिदा को इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके भैया कन्हैया की ओर से राम राम। श्रोताओं, आज हम आपसे बात करेंगे शिक्षा का महत्व और साथ ही चलेंगे एक गांव में और आप तक पहुंचाएंगे।

एक वार्ता भी, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता इस विषय पर, और ये सब बातन के साथ साथ भैया जो पढ़ाई लिखाई है वो केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना है, बल्कि ये वह माध्यम है जो व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करती है और सही सोचने समझने को निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। ये गरीबी उन्मूलन, आर्थिक समृद्धि और समाज में सकारात्मक बदलाव की मुख्य कुंजी है। अगर हम बात करें, शिक्षा कौशल प्रदान करती है जिससे बेहतर जीविका के अवसर मिलते हैं और व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनता है। अगर हम बात करें नैतिकता की और सामाजिक विकास की, तो

0: को निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। ये गरीबी उन्मूलन, आर्थिक समृद्धि और समाज में सकारात्मक बदलाव की मुख्य कुंजी है। अगर हम बात करें, शिक्षा कौशल प्रदान करती है जिससे बेहतर जीविका के अवसर मिलते हैं और व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनता है। अगर हम बात करें नैतिकता की और सामाजिक विकास की, तो ये हमें मानवीय मूल्यों, शिष्टाचार और सांस्कृतिक का ज्ञान देती है, जिसमें समाज में बहस गुणता, शांति और भाईचारा बढ़ता है। अगर विशेष रूप से हम बात करें सशक्तिकरण की, तो ये महिलाओं के लिए शिक्षा एक बड़ी शक्ति है। ये लैंगिक समानता को दूर करने, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ में हमारे जो अंधविश्वास हैं उन्हों के प्रति हमें जागरूक करती है। और स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, इनको हम सही तरीका से, इनके अंदर तक की बात हम तभी जान सकते हैं जब हम पढ़े लिखे होंगे। और हमारे सरकार को जो प्रयास है कि जो हमारे देश की शैक्षिक स्तर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाओ जा सके, और इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं आजकल सरकार के माध्यम से स्कूलन को प्रदान करी जा रही हैं, जिससे कि जो गांव क्षेत्र के बच्चा हैं वे स्कूल की तरफ आने के लिए आकर्षित हों। बातचीत आपसे और करेंगे, लेकिन आज हम पहुंचे हैं एक गांव में जहां हमारी बात हुई रामवीर साहू भूरे और प्यारे लाल जी से। और ये गांव कौन सा है ये इन्हीं से जान लेते हैं। आपको नाम कहा है साहब?
1: हमारा नाम है साहब रामवीर साहू।
0: किस गांव में रहते?
1: हम जैनपुर कादराबाद में रहते साहब।
0: ये किस ब्लॉक का गांव है?
1: ये ब्लॉक मजगमा लगता है साहब।
0: रामवीर जी, तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की थी?
1: हमने साहब पढ़ाई की है 10वीं क्लास तक की है।
0: अच्छा, हाई स्कूल तक आपने पढ़ाई की, तो इतना कम क्यों पढ़े, क्या वजह रही?
1: ऐसी कुछ व्यवस्था बन गई कि घर परिवार में जो कुछ काम काज में लग गए, नहीं पढ़ पाए कुछ, और माँ बाप की कुछ जिम्मेदारियां बन गई, जो मजबूरियां हो गई, नहीं पढ़ पाए।
0: यानी कि घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई इसलिए आप नहीं पढ़ पाए, है ना? तो हम अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे कि आज के दौर में, चूंकि आप कम पढ़े लिखे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो है वो जरूरी है कि थोड़ी पढ़ लिख करके आज के दौर में काम चल जाता है?
1: पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है सर। कम पढ़ लिखने से कोई फायदा नहीं है। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं।
0: जी
1: हर किसी को साक्षर होना चाहिए, साक्षरता बहुत जरूरी है।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। जीवन यापन के लिए हर कोई काम काज करता है,
1: जी।
0: तो हम अपने सुनने वालों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या काम काज करते हैं?
1: हम तो सर जी खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती बाड़ी में इस समय तो क्या फसलें लगी हुई हैं?
1: खेती बाड़ी में अभी धान की तैयारी चल रही है सर, बहुत तैयार होने वाली है। और जो तोरिया लगाई है हमने, हाँ
0: अच्छा
1: तोरिया जो सब्जी की फसल लगी हुई है, और मिर्च तो कट ही चुकी है, अब
0: जी,
1: धान की तैयारी चल रही है सर।
0: अच्छा, तोरिया हम देख रहे हैं कि आपकी लगी हुई है और बरसात का मौसम चल रहा है। सब्जी वाली फसलों को कहते हैं बरसात के मौसम में बचाना थोड़ा कर्रा काम होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तोरिया है इसको इस बरसात के मौसम में सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं?
1: इसके लिए सर यही उपाय किया जाता है। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो सब्जी की फसल है उसके बचाने के लिए पानी की निकासी बहुत जरूरी है।
0: जी
1: उसमें पानी नहीं भरना चाहिए,
0: ठीक,
1: उसमें पानी नहीं भरना चाहिए। और तोरिया की जो सब्जी की फसल है इसके लिए हमने ये ठट्टर बनाया है, तो जब जमीन पे पड़ी होगी तो ये जमीन पे खराब हो सकती है, इसलिए ठट्टर पे लगाया है, तो ठट्टर पे खराब नहीं होती।
0: तो ये जो ठट्टर पे आपने लगाया कि खराब नहीं होती है, क्या क्या फायदे हैं इस ठट्टर को बनाने से?
1: ट्रैक्टर को बनाने से यही बात है, एक तो फल सीधा रहता है आपका,
0: जी
1: जमीन पर होगा तो टेढ़ा भी होगा,
0: ठीक,
1: और इसमें जो है बीमारी भी कम लगती है सर।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो ये जो ठट्टर है आपका, ये कितने दिन हो गए बनाए आप?
1: ये तो अभी करीब 20 दिन हो गए होंगे।
0: क्या क्या सामग्री इसमें इस्तेमाल की है? सामग्री से मतलब है क्या क्या चीजें इसमें लगाई हैं आपने?
1: इसमें सबसे पहले तो बांस गाड़ने पड़ते हैं,
0: जी
1: बांस गाड़ने के बाद में उसके बाद में तार लगाना पड़ता है,
0: जी
1: तार लगाने के बाद में उसके बाद में प्लास्टिक की जो है पूरनी पड़ती है,
0: ठीक,
1: तो जाकर ये ठट्टर तैयार होता है।
0: ये जो बांस है सीधे गड़े हैं और तुरई जब आएगी तो उसका वजन होगा, तो ये गिरे नहीं, सीधे रहें और बरसात के मौसम में झुके नहीं, तो इसके लिए पुख्ताई का आपने क्या इंतजाम किया है?
1: इसके लिए सर जो कोने वाला वो होता है बांस होता है, उसके लिए 2 तने लगाए जाते हैं,
0: अच्छा,
1: जिससे कि वो झुके नहीं।
0: से जानना चाहेंगे अगर पानी भर जाता है तो

0: क्या नुकसान हो सकता है?
1: पानी भरने से तो जड़ गलती है,
0: अच्छा
1: जितनी तो फसल सूख जाती है।
0: ठीक,
1: हाँ, तो इसलिए सबसे पहले पानी निकासी का बहुत ध्यान रखें, इसका
0: पानी ना भरने दे।
1: पानी ना भरना।
0: जो सूड़ी है बरसात के मौसम में लगती है, उसके लिए दवा का प्रयोग करना
1: जी
0: पड़ता है। तो दवा जब आप प्रयोग करते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं?
1: दवा जो सही टाइम पे लगना चाहिए, दवा फल तोड़ने से कम तो 3 दिन पहले लगना चाहिए। फल जब तैयार हो तो उस स्थिति में दवा लगानी नहीं चाहिए, जिससे
0: अच्छा
1: कि हम और आप उस सब्जी को खाएं
0: हाँ,
1: तो नुकसान ना दे।
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो रसायन का प्रयोग हम
1: जी
0: करेंगे फसल के ऊपर या फल के ऊपर, तो उसका कुछ ना कुछ असर लंबे समय तक
1: लंबे
0: रहेगा,
1: समय तक रहता
0: है
1: है
0: ना,
1: जी।
0: तो उससे स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए आपने बताया कि जो है जब फल तैयार हो तो किसी भी दवा का प्रयोग ना करें।
1: ना करें।
0: बहुत अच्छी बात है, हमारे जो कृषक साथी हैं इस समय अपने खेतों में उनकी जो सब्जी वाली फसलें खड़ी हुई हैं उनमें अगर वो किसी दवा का प्रयोग करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके मशवरा को वो अवश्य मानेंगे और जब फल तोड़ने लायक होगा तब वो किसी दवा का प्रयोग ना करेंगे। चूँकि आप एक सब्जी उत्पादक हैं, सब्जी उत्पादक के तौर पर आपने हमारे कृषक साथियों को संदेश दिया है। हमारे बीच में एक साथी आप ही के पास में बैठे हुए हैं, जान लेते हैं साहब आपको नाम कहाँ है,
1: भूरे नाम है हमारा,
0: कौन से गांव रहते हैं?
1: रहने वाले तो ग्राम खजुआई के हैं।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या काम काज कर रहे हैं?
1: यहाँ पर हम घूमने आए तो हमारे एक मित्र ने पेड़ लगाए हैं,
0: अच्छा,
1: तो पेड़ हम देखने आए तो बहुत ही अच्छे पेड़ चल रहे हैं यहाँ पर, ये तो हम उसकी छाई में बैठे हैं अभी।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: आपने पेड़ की बात की तो हमको एक बात याद आ गई, हम वन महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं,
1: जी
0: तो क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों से, चूंकि आप पेड़ों के बीच में बैठे हैं, छांव में बैठे हैं,
1: जी
0: तो जो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोग आपकी बातचीत को सुन रहे हैं
1: जी
0: उनको संदेश में क्या कहना चाहेंगे पेड़ों के बारे में?
1: पेड़ के बारे में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ में क्या होता है पेड़ से कि एक तो हमें छाया मिलती है,
0: जी,
1: दूसरी बात अगर हमारे कटने लायक हो जाते हैं तो उन्हें काट कर बेच दिया जाता है, फिर से लगाएं।
0: जी
1: उससे क्या होता है कि तापमान सही बना रहता है, अगर पेड़ ना होते तो इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है गर्मी।
0: जी
1: तो पेड़ इतने काम आने वाली चीज़ें हैं, यही तापमान बनाते हैं
0: जी
1: और इन पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है और ये छाई भी देते हैं और लकड़ी भी देते हैं
0: जी
1: जलाने के काम में, बहुत सी चीज़ों के बारे में आती है, लकड़ी बेचने के काम में भी आती है।
0: आपने यहाँ पर पेड़ के जो फायदे थे वो तो हमारे सुनने वालों के लिए बता दिए, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक पेड़ जो है वो कितना उपयोगी है?
1: एक पेड़ तो इतना उपयोगी है कि कोई पेड़ होता है वो जल्दी तैयार होता है, कुछ पेड़ होते हैं वो काफी लंबे समय तक तैयार होता है
0: जी,
1: तो वो ज्यादा समय तक जो होता है तो वो और प्रकार के होते हैं, और जो पैदावारगिरी करते हैं पेड़ लगाकर वो वैरायटी अलग चीज होती है।
0: अच्छा,
1: तो इसमें यह है कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, और अभी वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है
0: जी जी,
1: तो उसमें जो है बताई गई है कि हर किसी को पेड़ लगाना चाहिए।
0: बहुत अच्छे विचार आपने हमारे आज के कार्यक्रम में रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नाम कहा है साहब?
2: हमारा नाम है प्यारे लाल।
0: आप कौन से गांव में रहते हैं?
2: हम जैनपुर कादराबाद में रहते हैं।
0: ये भी मझगवां ब्लॉक का गाँव है?
2: हाँ, ये मझगवां ब्लॉक।
0: हमारी आपकी बात हो रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्र होगी साहब आपकी?
2: हमारी उम्र होगी लगभग 65 साल।
0: 65 साल उम्र है आपकी?
2: हाँ।
0: और आज भी देखने में अच्छे खासे लगते हैं।
2: हाँ।
0: हम अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे ये अच्छी जो सेहत है आपकी, हाँ, इसका क्या राज है?
2: इसका ये राज है कि हमने अपने जीवन में
0: जी
2: आज तक के कोई गुटखा तम्बाकू नशा पानी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया।
0: अच्छा।
2: हाँ, और खाने पीने में हमने घी दूध मट्ठा दही इस्तेमाल किया।
0: अच्छा, ये जो धूम्रपान लोग करते हैं और उससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है?
2: आप इसके लिए हमारी नज़रों में तो असर पड़ता है ज्यादा, क्यों कि हमारी उम्र के लोग जो हैं डंडे का बल रोकना चाहते हैं, इस समय डंडे से अपना बल लेते हैं
0: जी,
2: और आज हम अगर 50 किलो वजन अगर हमारे लिए रख दिया जाए
0: जी
2: तो उठा करके इस 60 साल की उम्र में आराम से सर पर रख है और कम से कम तो आधा किलोमीटर चले जाएंगे।
0: यानी कि जो आपकी उम्र के हैं वो लोग आज उठने के लिए सहारा लेते हैं। तो क्या वो धूम्रपान करते हैं?
2: हाँ, धूम्रपान करते हैं अच्छे तरीके से।
0: अच्छा, तो मतलब एक तरीके से आपके स्वास्थ्य की तुलना की जाए

0: और जो आपके हम उम्र है उनके स्वास्थ्य की तुलना आपने की है तो ये अंतर आपको दिखाई देता है। सुनने वाले लोग हैं हमारी आपकी बातचीत को आज के कार्यक्रम ग्राम जगत के माध्यम से सुन रहे हैं, तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों से?
1: हम ये कहना चाहेंगे कि भाई साहब अपना स्वास्थ्य अगर बढ़िया रखना है
0: जी
1: तो खान पान पे अपना विशेषतर ध्यान दें
0: जी।
1: जो भी हमारे देसी जो है अपने भोजन जो है शाकाहारी भोजन है उसी पे ध्यान दें, उसी से अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया जो है रहेंगे।
0: आपने पान की बात कर दी और उसके साथ में जोड़ा था खान, तो खान में क्या क्या चीजें हैं जो खानी चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आप क्या खाते हैं?
1: हम साहब खाते हैं साग सब्जी दाल, और सबसे बढ़िया जो है घी दूध का जो है ये पालन बहुत बढ़िया समझते हैं।
0: अच्छा,
1: यहाँ इससे हमने ये देखा है कि इस इन चीजों से खाने से हमारा जो ब्रेड जो है तामसी नहीं बनता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, घी दूध मसाले ये खाने से, शाकाहारी भोजन साग सब्जी ये खाने से इसमें हमारा ब्रेड जो है ये तामसी नहीं बनता है।
0: अच्छा, जो आपकी 65 साल उम्र आपने बताई
1: जी,
0: तो लोग हमारी और आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सुनने वालों को आपने बताई कि हम इतना वजन ले जा सकते हैं। हमारे साथ के लोग जो धूम्रपान करते हैं उन पर आज उठा बैठा भी नहीं जाता है, सहारा लेते हैं कहीं आने जाने का भी, तो ये जो धूम्रपान है वो असर डालता है कहीं ना कहीं, कुछ जो खाने की चीजें हैं वो भी आपने कहा कि असर डालती हैं, वहीं पर हमारी रोज की जो दिनचर्या है जो हमारे काम काज का नियम है क्या वो भी असर डालता है स्वास्थ्य पर?
1: अब हमारा एक नियम ये है पक्का कि हम सुबह के लिए 4 बजे के और 5 बजे के दरमियान में 4 पाई छोड़ देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, और 4 पाई छोड़ देने पर गांव से हम हर 5 खेत दूर जाकर के घूम फिर के अपने आके घर पर कुल्ला दतौन करके खाने वाने में हम जो है, अगर हमारे लिए दूध अगर मिल रहा है तो हमने दूध ले लिया
0: जी,
1: और दूध लेने के बाद 1 बिस्कुट ले लिया पैकेट
0: जी,
1: और बस खान पान में अपने कर लिए, ये हमारा सुबह का नियम है
0: जी।
1: अगर किसी इस पाक हमारे लिए दूध ना मिल रहा हुआ है तो हमने थोड़ी चीनी ले ली, इसी में हमने जल ले लो 1 गिलास
0: जी,
1: 1 गिलास जल लेके उसी में हमने थोड़ा नींबू डाल लिया
0: जी,
1: थोड़ी चीनी डाल ली
0: जी,
1: थोड़ा नमक डाल लिया
0: जी,
1: और बना करके और इसी से हम 1 अपने बिस्कुट का पैकेट खा लेते हैं, ये हमारा पहला नियम।
0: अच्छा,
1: खाने पाने में
0: जी।
1: फिर शाम तक जो है अच्छी चीजें जो है हम अपने खाना वाना ये खाते रहते हैं, लेकिन सुबह का ये हमारा नाश्ता पहला काम है।
0: अच्छा, और दिन में क्या करते हैं?
1: और साहब फिर हम दिन में क्या करते हैं? दिन में जो है अपने खेती बाड़ी देखते वारते हैं और पशुओं के लिए अपने चारा ले आए
0: जी,
1: और ये पशुओं के लिए पानी है
0: जी,
1: और इनके लिए नान सानी है, ये करना है, इनकी सेवा करना है
0: जी,
1: पशुओं की
0: जी,
1: और अपने बच्चों के लिए देखना है और बच्चों के लिए समझाना है कि भाई ये काम करो, जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं उनके लिए हमें शिक्षा देना है कि बढ़िया तरीका से जैसे टाइम टेबल से स्कूल जाओ
0: जी,
1: बढ़िया तरीके से पढ़ो
0: जी,
1: और अपने जो आचार्य हैं उनके जो है बताए हुए नियम पर जो है आप चलो
0: जी,
1: इतने समय से उठो
0: जी,
1: समय से नहाना धोना और स्कूल जाना
0: जी,
1: और जो काम करने वाले बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा देते हैं कि भाई जाओ सुबह के लिए सुबह ही जाके अपना काम लगाओ
0: जी,
1: जिससे ठंडे ठंडे में आप अपना काम का सुधार कर लेंगे
0: जी,
1: जितना सुबह के लिए आप टाइम टेबल से ही सुधार कर लेंगे
0: जी,
1: पहले काम पकड़ लेंगे
0: जी,
1: तो वो आपके लिए उन्नति शाम तक रहेगी बढ़िया,
0: बिल्कुल
1: बढ़िया काम आपका अच्छा रहेगा। जब आप जो है 7 बजे या 7:30 बजे आप चारपाई छोड़ेंगे
0: जी,
1: फिर 9 बजे जो है आप आपके अपने काम की तैयारी करेंगे
0: जी,
1: फिर 9-10 बजे धूप पर निकलती है, फिर तो आपका काम पीछे होगा।
0: बिल्कुल सही बात है, और बहुत अच्छे विचार आपने हमारे श्रोताओं के बीच में रखे कि क्या करना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कैसी दिनचर्या हो, खान पान कैसा हो, और साथ ही साथ में जो हमारे नवयुवक हैं उनको भी क्या करना चाहिए, इस बारे में बहुत अच्छा संदेश हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं के बीच में आपने पहुंचाया, अपने विचार हमारे कार्यक्रम में रखे, इसके लिए आपका प्यारे लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, हमें उम्मीद है आज आपने जो बातचीत सुनी ही हमारी ग्राम जो हो वो भैया कादराबाद से हमारे ये साथी ही जुड़े हुए रामवीर साहू भूरे और

0: और प्यारे लाल। और उम्मीद करते हैं इनने जो बातें बताई हैं वे निश्चिंत ही आप अपने समझ में रखेंगे। और अब एक वार्ता है अपने कार्यक्रम में, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता, इस पर बता रहे हैं आपके लिए तेज पुंज।
1: जैसा कि आप जानते हैं, भारत का भविष्य गांव में बसता है। महात्मा गांधी का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वर्तमान में भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है, और इस युवा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। बदलते समय के साथ केवल पारंपरिक खेती और मजदूरी ही ग्रामीण युवाओं के लिए पर्याप्त नहीं रही। उनके उज्जवल भविष्य और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में भारी संघर्ष करना पड़ता है। अधिकांश युवा स्कूल बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले होते हैं या उनके पास कोई व्यावसायिक डिग्री नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है और वहाँ भी अकुशल श्रमिक के रूप में वेतन पर काम करना पड़ता है। ग्रामीण युवाओं को इस दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए उन्हें आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार अशिक्षित और प्रशिक्षित करना अनिवार्य हो गया है। कौशल प्रशिक्षण का महत्व और आवश्यकता के अनुसार उद्योगों को हमेशा तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यदि ग्रामीण युवाओं को इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर संचालन, सिलाई मशीनरी, मरम्मत आदि का प्रशिक्षण दिया जाए तो उन्हें स्थानीय स्तर पर ही अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है। इससे युवाओं को अपनी आजीविका चलाने के लिए शहरों की ओर भागना नहीं पड़ेगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही नहीं बल्कि युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए योग बनाना भी है। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके युवा अपने गाँव में ही छोटे पैमाने पर उद्योग, मुर्गी पालन, डेयरी, बकरी या हस्तशिल्प का काम शुरू कर सकते हैं। जब ग्रामीण युवा कुशल बनते हैं तो उनकी उत्पादकता में भारी वृद्धि होती है। आय का स्तर सुधारने से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जो अत्यंत संपूर्ण ग्रामीण समुदाय और देश की जीडीपी में सकारात्मक योगदान देते हैं। आज का युग डिजिटल युग है। ग्रामीण युवाओं को यदि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना और बेसिक कंप्यूटर का प्रशिक्षण मिले तो वे अपने स्थानीय उत्पादों को सीधे ऑनलाइन बाजारों में बेच सकते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं की इस आवश्यकता को समझा है और कई प्रभावशाली कदम उठाए। कौशल भारत पर मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को मुफ्त अल्पावधि प्रशिक्षण और प्रमाणन दिया जाता है। विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों के युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक वेतन वाली नौकरी से जोड़ना है। इसके अलावा पारंपरिक कारीगरों के कौशल को औपचारिक मान्यता देकर उन्हें भी आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। यद्यपि सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों की कमी, आधुनिक उपकरणों का अभाव और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या इसमें मुख्य बाधाएं हैं। इन कमियों को दूर करके प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए निजी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और सरकार को मिलकर काम करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता समय की सबसे बड़ी मांग है। यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र और विश्व की कुशल राजधानी बनाना है तो ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना ही होगा। कौशल प्रशिक्षण की एक ऐसी कुंजी है जो ग्रामीण युवाओं के छिपे हुए हुनर को पहचान देती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। जब गांव का युवा कुशल और आत्मनिर्भर होगा तभी सही माने में समग्र भारत का विकास संभव हो सकेगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने ये जानकारी सुनी, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता। जानकारी दे रहे थे तेज पुंज जी, और जो तेज पुंज जी ने आपको बताया था, उम्मीद करते हैं कि निश्चिंत ही जो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो कितना उपयोगी है हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। और ये सब बातें आप जान गए होंगे इनकी जानकारी के माध्यम से। और अब भैया, कार्यक्रम में जानकारी और बातचीत चलते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, तो अब आपको थोड़ी मानसिक और शारीरिक थकान हो रही होगी। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अब थोड़ी गौनाई बजने की। लेकिन गौनाई बजने के लिए कुछ हमारे जो श्रोता हैं सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपनी जो है नाम

हम लेकर के भेज रहे हैं। ये हैं विजयपाल यादव, शुभम, शिखा, ऋचा, गुड़िया और सुरभि, ग्रामा पोस्ट ललुआ, जिला खीरी से। आप हमें लिख रहे हैं, मलवा रेडियो श्रोता संघ, ग्राम हिंगड़ी अलोटा, जिला रतनलाम, एमपी से। जगदीश धाकड़े और रंजूबाई, युवराज सिंह और सीमांगी धाकड़ इसी लोकगीत के लिए लेकर के भेज रहे हैं। शादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। और आपने हमें लेकर के भेजा है चंग डोंगरी पिपरिया, जिला काशी, जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से। दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू और जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू और इनके समस्त परिवारीगण। और इसी लोकगीत को लिए लेकर के हमें भेज रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार। और आप हैं दंतरेंगी भटपारा छत्तीसगढ़ से। आपने लेकर के भेजा है हीरा राम मणि वर्मा, पारस राम, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा। आप हैं शादुल शहर से रानी गौड़, उमेश गौड़ और इनके समस्त परिवारीगण। आपने लिखा है हमें ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी, दुधबिया, प्रतीक, रोशनी और इनके समस्त परिवारीगण, कोटवा, नारायणपुरा, बाबापट्टी, बलिया से। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर ये लोकगीत।

नगिन तलवार हाथी पच सावध पर आला कूचक डंका दिहिन बजाय हाथी की घरे घोड़ाई।

और श्रोताओ, अब कार्यक्रम ग्राम जगत को समय जो है हमें इजाजत न दे रहो और कोई बातचीत या चर्चा इस कार्यक्रम में आपसे करी है, तो अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया कन्हैया को यहीं पर अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए हमारी राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय वट।
1: पीछे की जानिब है, कदम आगे है मेरा। मैं बूढ़ा होता जाता हूँ जमा होने की खातिर। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिथिलेश श्रीवास्तव और कुछ ऐसी ही पंक्तियों को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस समय जो स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ आज के मेहमान अक्षय वट कार्यक्रम के, उनका नाम है राजन भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में।
2: धन्यवाद भाषण, धन्यवाद जी।
1: तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप बहुत बड़ी कंपनी जो है LIC, उसमें आप मैनेजर रहे हैं और आप रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अक्षयवट जो हमारा प्रोग्राम है वो दरअसल शुरू होता है जो दूसरी पारी कही जाती है, रिटायरमेंट के बाद जो पारी शुरू होती है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे हैं?
2: मैं 2017 में रिटायर हुआ था।
1: अच्छा सर।
2: और रिटायरमेंट के बाद मैं बरेली कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ।
1: अच्छा।
2: और वहीं जो है कैंसर के मरीजों को देखना, उनकी देखभाल करना या उनके लिए जो हम बेहतर कर सकते हैं वो कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, समाज सेवा से आप जुड़े हैं
2: जी।
1: और इसमें अब ये बात आती है सर कि जब आप रिटायर

0: हुए उस समय और अब इन 7 सालों में जो समय गुजरा है कैसा रहा, क्या महसूस?
1: मैंने ये महसूस किया है कि इन
0: जी
1: 7 सालों में जो सबसे बड़ा मार्केट में आया है
0: जी जी
1: वो आया है फाइनेंशियल फ्रॉड,
0: फाइनेंशियल
1: लोगों को बेवकूफ बनाना, उनको चीट करना, धोखा देना।
0: जी जी
1: ये
0: जी
1: बहुत ज्यादा हो गया है, पहले इतना ज्यादा नहीं था लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया।
0: तो इसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को कुछ बताइए, थोड़ा जागरूक भी हो जाएं
1: देखिए
0: क्या?
1: मैं बता दूं आपको,
0: जी जी
1: फाइनेंशियल फ्रॉड हम खुद करवाए। जब हम लालच में आ जाते हैं तो हम गलत रास्ते पे चल जाते हैं।
0: जी
1: अभी मैंने देखा कुछ कंपनियों के केसेस हुए हैं, ये भूख है,
0: हम्म,
1: लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या जो इन्वेस्ट कर रहा है वो खुद नहीं सोच पा रहा है कि 1 महीने में 5% कौन दे देगा। आपने क्यों मान लिया? क्योंकि वो तो चीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरा पहला कहना ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ये सोच के करिएगा कि बैंक आपको क्या ब्याज दे रहा है और मार्केट का रेट क्या है। जो बीच में आपका माध्यम बन रहा है वो भी कुछ कमाएगा,
0: कमाएगा
1: वो
0: बिल्कुल।
1: ऐसा कहाँ से दे देगा, 5% पर मंथ कहाँ से दे देगा, ये संभव ही नहीं है। और ये जो कारों ते हैं घूमते फिर रहे हैं आपके पास, जितने कारें हैं ये कारें आप ही के पैसे से ली हुई हैं, और आप से जो पहले जिनके साथ फ्रॉड किया है उनके पैसे से ली हुई कारें हैं, और आपके पैसे से आगे जाके वो कारों
0: आगे
1: पे
0: जाते
1: घूमेंगे
0: रहते हैं
1: और फिर
0: जी
1: वो भाग जाएंगे, फिर आप चिल्लाएंगे, फिर आप दूसरों पे दोष दें।
0: और उसमें पहला रीजन है लालच, कि
1: लालच।
0: हम लालच में आ जाते हैं, कह रहे भाई बैंक में 2.5% मिल रहा है सेविंग में, और चलो ये ज़्यादा दे दे रहा है, चाहे मान लीजिए FD में 7% के आसपास मिल रहा है, कोई कहे नहीं हम 12% देंगे, तो हम लालच में आ जाते हैं
1: तो ये
0: वहीं।
1: संभव ही नहीं है। जो रिजर्व बैंक के हमारे जो है इंटरेस्ट तय हो रहे हैं, जो
0: जी
1: अप डाउन होते हैं मार्केट में, ये लगभग पता है कि न्यूज में आते हैं, सब जगह पता है, हर बैंक का है, कहाँ से दे देगा वो, ये संभव ही नहीं है।
0: जी जी
1: लेकिन आप पैसे के लालच में, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में, बिना मेहनत के कमाने के लालच में आ जाते हैं तो वो पैसा जो लेके भाग जाते हैं।
0: तो इनसे कैसे हम लोग बचे रह सकते
1: पहली
0: हैं?
1: बात तो ये है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको देखिए कि वो आपको रिटर्न क्या दे रहा है। अनाप शनाप दे रहा है तो 100% वो बेईमान होगा। हाँ ये जरूर है, जो इस समय आ गया है आपके पास मोबाइल में बहुत से ऐप्स आते हैं कि आप डाउनलोड कर दीजिए, आपसे डाउनलोड करिए, आप नहीं जानते कि वो डाउनलोड करते ही आपके अकाउंट की सारी जानकारी उनके पास चली जानी है।
0: जी बिल्कुल।
1: दूसरा, अभी मैं देख रहा था कि कुछ जो आपके जो है फेसबुक्स पे प्रोग्राम आने लगे हैं, ड्रामास आने लगे हैं कि अगला ड्रामा देखने के लिए 1 रुपए में ड्रामा देखिए पूरा,
0: देखिए।
1: और आपने जैसे ही 1 रुपया डाला आपने, आपके अकाउंट से 1 रुपया नहीं जाएगा कहीं। मैंने अभी, मेरे पास एक केस है, उसने 1 रुपया डाला था, 1400 रुपया चला गया, तो क्योंकि ऑटो डेबिट हो जाता
0: ऑटो
1: है,
0: डेबिट हो गया, लिंक जनरेट कर
1: हाँ
0: लेते
1: लिंक
0: हैं
1: जनरेट हुआ, तो वो आपके
0: जी।
1: साथ बेईमानी होगी। किसी भी कीमत पे आप कोई भी इस तरह का ऐप लोड ना करें, किसी भी कीमत पे ना करें, ये आप मान के चलिएगा, पहले सोच लीजिएगा कि ये आपके साथ बेईमानी करने के लिए ये आपके पास, ये पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद अगली सोचिए।
0: बिल्कुल, यहाँ पे हमें नेगेटिव होना चाहिए,
1: बस बिल्कुल
0: कहा जाता है
1: नेगेटिव,
0: बी पॉजिटिव, लेकिन
1: नो
0: इस
1: नो
0: मामले में हमें बी
1: बिल्कुल
0: नेगेटिव।
1: नेगेटिव कि ये बेईमान है,
0: बेईमान है
1: 100% ये बेईमान है।
0: जी।
1: दूसरा, आपके पास कॉल आएगी, कॉल्स आती हैं कि मैं जो है आपके नंबर जो है इस पे गलत इस्तेमाल हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं उसकी इंक्वायरी है, ये है वो है, या मैं DSP बोल रहा हूँ, या जो भी मैं बोल रहा
0: हाँ,
1: हूँ अपने
0: डिजिटल अरेस्ट की
1: है,
0: चल रही
1: वो
0: है।
1: आप किसी भी कीमत पे पहले सोच के चलिए, ये एक बेईमान आदमी बोल रहा है, ईमानदार आदमी होता तो आपके पास सामने आता।
0: बिल्कुल
1: और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि आपको फोन पे आपको कोई आपको आपको धमका दे, इवन पुलिस भी आपको नहीं कभी फोन पे धमकाती, आपके पास मिलेगी, आपसे बात करेगी, आपकी बात सुनेगी। आप खुद सोचिए कि ऐसे कैसे कोई बेईमानी कर लेगा अगर आप संभले हुए हैं, लेकिन जहां आप डर गए वहां बेईमानी की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी।
0: ज्यादा हो जाती है
1: और
0: बिल्कुल।
1: खुद सोचना है कि हमारे नेशनलाइज बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, या इंश्योरेंस कंपनी जो आपको कितना दे रही है। और एक बात मैं और कहूंगा कि बैंकों में भी या हमारे यहाँ कंपनीज में भी अलग अलग तरह से कुछ लालच दे के, कुछ कर्मचारियों को लालच दे के प्राइवेट कंपनियां कह देती हैं कि हमारा इतना काम करा दो, ये करा दो, वो करा दो, तो वो कई बार अकाउंट होल्डर के ऊपर भी एक प्रेशर बनाते हैं कि आप इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, पता ये चला कि आपने लगा दिया और पूरी जानकारी आपने नहीं ली, और वो व्यक्ति तो वहां से 2 साल बाद 3 साल बाद ट्रांसफर होकर चला गया। बहुत से केस ऐसे आते हैं कि कह रहा है कि उन्होंने तो कहा था इतना मिल जाएगा, अब वो है ही नहीं,
0: है ही नहीं, तो कहां से
1: मिल जाएगा। इन चीजों से बचना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल

0: इन्वेस्टमेंट में हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल, दूसरे का नहीं।
1: दूसरा
0: मान के चले उसे सबसे पहले मान लीजिए कि ये अपने लालच के लिए कह रहा है।
1: और इसमें सबसे जरूरी चीज है कि लालच से बच के रहें। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सर आपने श्रोताओं को। और जैसा कि हमारा जो फॉर्मेट है अक्षय वट में, जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि आपने कैसे शुरुआत की अपने सर्विस की, तो कुछ इसके बारे में कुछ बताइए।
0: मेरा जीवन जो रहा है बहुत ही संघर्ष वाला रहा। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स में था,
1: अच्छा,
0: खिलाड़ी था मैं।
1: और
0: मैं
1: यूनिवर्सिटी क्या खेलती थी?
0: मैं एथलेटिक्स में था, हाफ मैराथन का था।
1: अच्छा।
0: और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में रहा, मैं खालसा कॉलेज में पढ़ा। कुछ हालात ऐसे हुए थे कि मैं उत्तर प्रदेश में आया, यहाँ आके जैसे होता ही है, मैंने एग्रीकल्चर का काम था, बेसिकली मेरे पास एग्रीकल्चर का था। वहीं से मैंने LIC ऑफ इंडिया का फॉर्म भरे और मैंने एक एजेंट से करियर शुरू करके फिर विकास अधिकारी बना, फिर मैं सीनियर बिजनेस एसोसिएट बना।
1: और इस दौरान आपने अपनी फैमिली और जॉब में कैसे मैनेज किया? क्योंकि इसमें ये जो काम है इंश्योरेंस का हेक्टिक होता है, एक टारगेट होता है, उसके लिए आप हमेशा लगे रहते हैं।
0: हाँ, इसमें मेरा सहयोग दिया मेरी धर्मपत्नी ने।
1: जी जी,
0: क्योंकि मैं सुबह 7 बजे निकल जाता था और वापसी का कोई टाइम नहीं होता था। और मेरे तो ऐसे क्लाइंट भी रहे हैं जो रात को 2 बजे ही बैठते थे।
1: अच्छा।
0: उनका जॉब ऐसा था, उनका बिजनेस ऐसा था, तो उनका बिजनेस जो था कि रात भर जगने का होता था। मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो वहाँ रात को 2 बजे का अपॉइंटमेंट होता था, तो रात को 2 बजे जाते थे। और ये था कि एक ही सबक मैं दूसरों को भी देता हूँ, वो चीज मैंने भी सीखी अपने गुरु से कि हर चीज का सब्स्टिट्यूट है लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट वो तो हमें करनी पड़ेगी,
1: करना ही पड़ेगा।
0: फील्ड के लोगों के लिए एक बात मैं कहा करता हूँ, मैं लोगों को बताता भी हूँ कि फील्ड वालों की जो किस्मत है वो उनके बाइक का, उनकी कार के अगले पहिए पे लिखी हुई है। जितना चलेंगे उतना आपको फायदा होगा, रुक जाएंगे तो रुक ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कोई
1: सही बात है। अब प्रोग्राम में हम चूंकि आपसे बात कर रहे हैं और इंश्योरेंस से जुड़े हैं आप, तो हमारे बहुत सारे साथी जो हैं इंश्योरेंस लेने से कतराते हैं, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से इंश्योरेंस की, बीमा की इम्पोर्टेंस, महत्व समझा दीजिए।
0: देखिए,
1: आज के समय में खास
0: हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरा करीब 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है।
1: जी,
0: ये मान के चलिएगा कि इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी। जब किसी की मृत्यु होती है, उसके, मैं तो शमशान घाट की बात करता हूँ, वहाँ लोग आपस में क्या बात करते हैं कि ये जो मरा है इसके कितने का बीमा चल रहा है, ये चीज बाद में याद आती है। जैसे मैं सीधा कहा करता हूँ कि जब कोई टकरा जाता तब कहते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल होना चाहिए था।
1: तो जान बच जाती शायद।
0: जान बच जाती,
1: सही बात।
0: लेकिन वैसे क्या है, अपना हेलमेट जो पीछे लगा के चलेंगे बाइक के। इसी तरह से इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का महत्व जो है ये है, उससे पूछ के देखिएगा जिसके घर में डेथ हो गई और उसके हस्बैंड का अच्छा बीमा था, उसकी फैमिली का, और जिसके हस्बैंड का बीमा नहीं था, दोनों के जीवन में क्या फर्क, तब इंश्योरेंस का पता चलता है। इंश्योरेंस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जरूर होना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल मानने को, इवन मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी कहता हूँ, क्योंकि आजकल जो सबसे खतरनाक जो काम, आपकी जिंदगी भर की कमाई एक बार में जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: मेरा विषय नहीं है, लेकिन तब भी मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई बीमारी आ गई, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोग मुझसे।
1: और आजकल तो कई तरह की, जैसे कोरोना आया था उस समय बहुत विकट स्थिति थी।
0: मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो मैं एक बात कहता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस हर आदमी का होना चाहिए और ईश्वर ना करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन होना जरूर चाहिए,
1: होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ जाए तो जो अच्छे खासे खर्चे हो जाते हैं, अचानक से 40-50 लाख खर्च का बिल बन जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो आम आदमी कैसे बियर कर पाएगा। इसमें ये एक भी सवाल है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी बीमा लेने से पहले।
0: बीमा लेने से पहले कोई फैक्ट छुपाना नहीं, कोई फैक्ट नहीं छुपाना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी बीमारी है तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। शरीर में कोई समस्या चल रही है तो डिस्क्लोज करना चाहिए। आपकी, हो सकता है प्रीमियम आपकी बढ़ जाए, ऐसा नहीं कि बीमा नहीं होगा, प्रीमियम बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें आपके अगर कोई क्लेम होता है तो कोई कंपनी उसको रोके, लेकिन कोई चीज आपने डिस्क्लोज नहीं की, आपने फैक्ट छुपाया, तो फिर उसका खमियाजा आपके ना रहने पे लोगों को, आपके परिवार वालों को।
1: जब वो क्लेम किया जाएगा तो पता चलेगा,
0: पता चलेगा
1: उस समय तो ऐसा कुछ था इनको। तो उसमें क्या मेडिकल टेस्ट करा लेना?
0: नहीं नहीं, मेडिकल टेस्ट तो हर कंपनी कराती है, लेकिन
1: मान लीजिए मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें कुछ चीजें सामने आ गई और उसके बाद प्रीमियम तय हुआ,
0: हाँ,
1: तो फिर तो आदमी सेफ है,
0: फिर सेफ है।
1: मतलब अगर कोई कंपनी हो जो मेडिकल टेस्ट किए बिना दे रही हो बीमा, तो बल्कि कह दे कि मेरा मेडिकल
0: कुछ बीमे बिना

0: मेडिकल के भी होते,
1: जी
0: कुछ हद तक बीमे
1: जी
0: नॉन मेडिकल भी होते हैं। उसमें ये होता कि आपके स्टेटमेंट को ही सही माना जाता है, जो आपने स्टेटमेंट दिया, जो आपने जिस पे सिग्नेचर किए हैं कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं
1: नहीं।
0: बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बीपी शुगर कुछ नहीं है, तो उसको मानते हुए कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल सही कहता है तो बीमा कर लिया जाता है।
1: लेकिन जब क्लेम की बात ही आती है तो
0: तो वो
1: फिर
0: आपने
1: वो
0: सिग्नेचर
1: रिजेक्ट हो
0: किया,
1: जाता
0: हाँ,
1: है।
0: तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें भी एक चीज है, कंपनीज के ऊपर एक बाउंडेशन होता है कि अगर पहले 3 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो कंपनी जो है उसकी जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी कि इसको कोई बीमारी नहीं थी। अगर बीमा कंटिन्यू 3 साल चल चुका है, पूरे चल चुका है, तो कंपनी फिर उस पर, कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कि उसके क्लेम को रोक।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कई सारे आपने लोगों के शंकाओं का भी समाधान किया और अपनी लाइफ के बारे में भी आपने बताया कि किस तरह आपने रिटायरमेंट के बाद बड़ी खूबसूरती से अभी भी आप समाज सेवा कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम श्रोता उससे ज़रूर प्रेरित होंगे और जो जानकारियाँ आपने दी हैं आने वाले समय में लोग बीमा के प्रति भी जागरूक होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, अपने जीवन के बारे में भी अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका सर।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 FM पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय वट। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी आवश्यक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 8 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 7 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में गंगाशील एवं गंगाचरण अस्पताल बरेली की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या सिन्हा उपस्थित रहेंगी। विवरण एक बार फिर से सुन लें। विषय है महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 7 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 होने वाले हैं।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना सुनिए। तनु पुत्री सचिन निवासी डूडा कार्यालय के सामने वाटर पार्क रोड थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं। आयु लगभग 17 वर्ष, कद 5 फीट, गोल चेहरा, रंगोरा, आंख, नाक, कान औसत, काले बाल, इखरा मजबूत जिस्म है। इन्होंने बैगनी रंग की टी शर्ट और प्लाजो पैंट पहनी हुई है। ये 27 मई 2026 से लापता हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया संपर्क करें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं।

104.4 FM पर ही आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और आवश्यक सूचना सुनिए। सर्वेश कुमारी, पत्नी दिनेश, निवासी कस्बा व वार्ड नंबर 4 फैजगंज।

बहेठा जनपद बदायूं। आयु लगभग 22 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, गोल चेहरा, रंग सांवला, आंख नाक कान औसत, काले बाल, इखरा सामान्य जिस्म है। ये 13 मई 2026 से लापता हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया संपर्क करें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:18 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: लखनऊ केंद्र है, शाम के 7:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
4: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक

मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार।

0: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बताया कि बैठक में चंपत राय की जगह ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव का कार्यभार कृष्ण मोहन को सौंपा गया है।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपताय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे।
0: श्री गिरी ने बताया कि न्यास की अगली बैठक 22 तारीख को होगी और उम्मीद है कि तब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बैठक में उस रिपोर्ट पर चर्चा के साथ ही अतिरिक्त ट्रस्टी नियुक्त करने पर फैसला होगा। इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि इस मामले का किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही और सरकारी वकील शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी याचिका उच्चतम न्यायालय में पहले ही लंबित है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला ने याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
2: आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है। 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। और आज स्टार्टअप मिशन गवर्नमेंट के अंडर में सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
0: वहीं श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल और वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है। उन्होंने बताया कि इस ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर श्रमिकों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा।
3: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। खेल मंत्री गिरीश यादव ने बताया कि बैठक में ओलंपिक पैरालंपिक एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के काली घाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है, आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा लेगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है।
1: महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम सब आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं और सी प्रेरणा के स्रोत ये महापुरुष हम सब के लिए हैं और वही तो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि अगर विकास करना है हमें विरासत का सम्मान करना होगा। और विरासत का सम्मान कैसे करना है ये प्रयागराज से ज्यादा कोई नहीं जानता, प्रयागराज ने तो करके दिखाया है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रेलवे ने काफी प्रगति की है, रेल ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशनों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहिब आदि कैलाश और नानकमत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से पीलीभीत के विकास को गति मिलेगी।
2: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
0: इस दौरान श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी जनपदों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने जबकि पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओ लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: RBI कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो चुके हैं। इसी के साथ समय होता है आप सभी के अनुरोध पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत का। कार्यक्रम अनुरोध गीत में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ अमृता और आइए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से सफर की, जिसमें आप और हम मिलकर तय करेंगे ये गीतों भरा सफर और साथ होंगे आपके भेजे हुए ढेर सारे प्यारे प्यारे पत्र। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले पत्र की। ये लेटर हमें भेजा है अजीत नगर मलोत पंजाब से, लिखने वाले हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनक दीप कौर।

सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनक दीप कौर। अगला लेटर हमें भेजा है जमशेदपुर से, और इनका आगे का जो पता है वो है बड़ा बाम्बे गांव सुपाई साई से। देवेंद्र तांदी, राकेश तांदी, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी। गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से ये पत्र है, मुनव्वर लल्ला भाई, नसरीन मिर्जा, नसरीन बेगम, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना बेगम और इनके साथ में है महतबी शेख, बादाम अली, किशमिश जहां। अजीत भावसार, भावेश सन्नी, हीतल कृष्ण, जैमिन भावसार और इनका पता है वीरम गांव गुजरात से। चलते हैं अगले लेटर की ओर। ये पत्र है प्रमिलागंज आलोद जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई और साथ में है माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। खुर्जा उत्तर प्रदेश से ये पत्र है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा का। बटंडा पंजाब से रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। गांव कुमारहेड़ा जिला सहारनपुर से सैयद मसूर, गुलजार जहां और इनके साथ में है अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। पुराना होली चौक ग्राम करगना करीली बरेली से गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज, इशिता, वीर शर्मा, संदीप, चंचल, सूरज शर्मा, पिंकी, चिंकी शर्मा, अबरार अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां व परिवार के सभी सदस्य। ये पत्र हमें भेजा है श्री भक्त प्रहलाद रेडियो श्रोता संघ से, और इनका पता है दसमल चौक परतूर जिला जालना से। सुरेश अप्पा दसमले, सौरभ दसमले, सुधाकर दाजी सरजे, दसमले चौक परतूर जालना से। जयश्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना, आकांक्षा और पूरा दसमले एवं काटे परिवार। मस्तानपुरा तहसील पूर्णा से आनंदा भगत, अरुणा भगत, लोचना भगत और चेतन कुमार भगत। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म गुरु का गीत, आवाज है हरिहरन और अलका याग्निक की, लिखा है गुलजार ने, संगीत है ए आर रहमान का।

आप सुन रहे कार्यक्रम अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित 100.4 FM पर। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। आप सभी ने अनुरोध किया है फिल्म दिल ही दिल में का गीत आवाज है अभिजीत की। लिखा है महबूब ने, संगीत है यार रहमान का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धज्जे, राहुल कुमार धज्जे, विशाल कुमार, शीला गायत्री धज्जे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी महिमा, नीतू और परिवार के सभी सदस्य, कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरान इदरीसी और परिवार के सभी सदस्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये लेटर हमें भेजा है हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक और मीका वीरक ने। इसी गीत को सुनना चाहे जिला बदायूं कस्बा बिलसी मोहल्ला नंबर 5 से रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन, जानवी, हानिया, निजाकत, शाहीन, आहिल बाबू अलवी और आदिल अलवी ने। चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं अभिजीत गुहाड़कर, राही, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश गुहाड़कर और इनके साथ में है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, कुमारी ध्वनि वाड़कर उर्फ परी। ग्राम रट्टे नगला अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश से ये पत्र है दीपक शाक्य, ज्योति, अंकित शाक्य, पूजा और सक्षम शाक्य का। फिल्म दिल ही दिल में के इसी गीत को सुनना चाहा है सुंदर खेड़ राजमाता नगर बुलडाड़ा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार ने। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और इनके साथ में है अब्दुल्ला आजाद, लच्छनपुर से रामजी साहू और जीवन लाल रजक, होपका भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू, कटाचांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, अरोही और स्वाति मौर्य, बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, मोहनलाल, सोनू, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल, नमन और परिवार के सभी सदस्य। चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये लेटर हमें भेजा है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और इनके साथ में है रेखा देवी, श्वेता देवी, सूरज।

जी देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से ये पत्र है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव का। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म दिल ही दिल में का ये गीत।

104.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। और चलते हैं अगले पत्रों की ओर। राजनंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, जेल रोड रायगढ़ से ये पत्र भेजा है रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी ने। फूलबाग किला छावनी बरेली से विशन दत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर। अगला पत्र है औरंगाबाद से, लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से ये पत्र है वीके जौहरी, विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी और शायन अबीका। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीबन बेगम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोतरा, मुश्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल वाशने, प्रभात कमल, अमरी सलोनी, सचिन, नीरू देविका, कार्तिक वेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वाशने। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, ज्योति रियांश और गुड़िया ठाकुर। डाबर तालाब लोनी से ये पत्र है रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा का। चंडीगढ़ से ये पत्र हमें भेजा है सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, साथ में है परिवार के सभी सदस्य। डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म इश्किया का गीत, आवाज है राहत फतेह अली खां की, बोल है गुलजार के, संगीत है विशाल भारद्वाज का।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित। चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर। फिल्म का नाम है आशिकी 2, आवाज है श्रेया घोषाल की, लिखा है संदीप नाथ ने, कंपोज किया है यानी संगीत है अंकित तिवारी का। सुना चाहे आप सभी श्रोताओं ने यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार, करोला मुरादाबाद से ये पत्र हमें भेजा है अयूब खान, ईरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान ने, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से ये पत्र भेजा है विमल वर्मा, विनय वर्मा व परिवार के सभी सदस्यों ने, राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश, छोटी गौरी, काकू, रीता, विनोद कुमार और घर के सभी लोग, इनका पता है छावनी अशरफ खां, मंदिर के सामने से जिला बरेली यूपी से, परिमहल कासगंज से आबाद खां, गजाला खां, अल्ताफ नबील, एम असलम सैफी और गंज टंडवारा से शमशुल कमर राही व परिवार के सभी सदस्य, गुरु नानक नगर मलोत पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती और तनीश सेतिया, मलोत कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी और साथ में है सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुना चाहा है हर्षिता, रमेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभुलाल और परिवार के सभी सदस्यों ने, इनका पता है लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये पत्र है रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता का, ग्राम बुढ़ गहन छत्तीसगढ़ से। मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन, निसार बाबा और मस्तान बाबा। ये पत्र हमें भेजा है वीनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने, बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहिटी बरेली से। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म आशिकी 2 का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत 100.4 FM पर। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि की 8 बजने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कार्यक्रमों से।
1: मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बजे है और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनिए बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम, दलित चेतना के संवाहक बाबू जगजीवन राम।

कुछ व्यक्तित्व केवल अपने समय के नेता नहीं होते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बन जाते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे बाबू जगजीवन राम। उन्हें स्नेहपूर्वक बाबूजी कहा जाता था। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और समाज के प्रति समर्पण हो तो अभाव, भेदभाव और कठिनाइयां भी सफलता के मार्ग को रोक नहीं सकती। 5 अप्रैल 1908 को चंदवा में जन्मे बाबू जगजीवन राम का बचपन अनेक सामाजिक विषमताओं के बीच बीता, किंतु उन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने के बजाय शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक उन्होंने हर चुनौती का साहसपूर्वक सामना किया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। युवावस्था में

0: नहीं, वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने देश की आजादी के साथ साथ सामाजिक समानता की लड़ाई को भी अपना जीवन धर्म बना लिया। उनका विश्वास था, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान और अवसर नहीं मिलेगा, तब तक सच्ची स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। स्वतंत्र भारत के निर्माण में बाबू जगजीवन राम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का सफल नेतृत्व किया और अपनी प्रशासनिक क्षमता, ईमानदारी और दूरदर्शिता से देश की सेवा की। कृषि, श्रम, संचार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उनके निर्णयों ने भारत की प्रगति को एक नई दिशा दी। विशेष रूप से रक्षा मंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में देश ने आत्मविश्वास और सामर्थ्य का परिचय दिया। बाबूजी केवल एक राजनेता नहीं थे, वो करोड़ों वंचितों और शोषितों की आशा के प्रतीक थे। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि मनुष्य की पहचान उसके जाति, धर्म या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, चरित्र और प्रतिभा से होती है। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय गरिमा के लिए समर्पित रहा। उनकी वाणी में सरलता थी, विचारों में गहराई थी और व्यक्तित्व में अद्भुत विनम्रता। वो मानते थे कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब समाज का प्रत्येक नागरिक सम्मान और अधिकार के साथ जीवन जी सके। उन्होंने सदैव संवाद, संवेदनशीलता और समावेशी विकास पर बल दिया।
1: हमारा देश एक गरीब देश है और हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है। बहुत सी समस्याएं हमारे सामने हैं, वो इस वजह से भी है कि वो गरीबी से निकलती है। ये छोटी बात नहीं है कि हम गरीबी को जल्दी दूर कर सकें, लेकिन अगर अपने हम समाज की परंपरा को बदल सकें तो इसमें संदेह नहीं है कि जितना साधन हमारे पास उपलब्ध है उस साधन से ही अपने यहाँ उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर अपने आर्थिक संबंधों में ऐसा परिवर्तन कर सकें जो सही माने में देश का दौलत उत्पादन करने वाला है, वो महसूस करे कि देश में दौलत जो उत्पादन होता है उससे उसको भी कुछ लाभ मिलने वाला है।
0: स्वतंत्र भारत के निर्माण में बाबू जगजीवन राम का महत्वपूर्ण योगदान है। बाबू जगजीवन राम की पुत्री पूर्व महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने बाबूजी को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं के लिए विशेष आह्वान किया।
2: आजकल की पीढ़ियों को उनसे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। सबसे पहले तो वो स्वतंत्रता के लिए लड़े, और स्वतंत्रता के लिए लड़ना कोई आसान काम नहीं था, बहुत खतरनाक था। वो तो बहुत ही साधारण परिवार से आते थे, फिर भी वो इसमें कूद गए। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने उन्हें मना नहीं किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। और किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जेल गए हो तो माफी मांग लो। मैंने बहुत बार लोगों के बारे में सुना है कि जेल गए तो माफी मांग लो, या उनके परिवार वाले कह रहे हैं माफी मांग लो, मगर उनके परिवार में किसी ने नहीं कहा कि माफी मांग लो और जेल से आ जाओ। और जेल से आने का कोई ठिकाना नहीं था, तो वो इतना खतरा उठा करके किस लिए गए? इसलिए गए कि इस देश को आजाद करा दें। तो आज की पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि हमारी आजादी कितनी बहुमूल्य है, उसके लिए कितना त्याग किया गया, बलिदान दिया गया। और बाबूजी अग्रणीय राष्ट्र निर्माता थे।
0: आज जब भारत सामाजिक समरसता, समानता और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है, तब बाबू जगजीवन राम के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, यदि उसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र का कल्याण हो। बाबू जगजीवन राम का व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र की वो उज्जवल ज्योति है जो हमें समानता, न्याय और मानवता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। वो केवल इतिहास का एक महान अध्याय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा में बसने वाले उन अमर नायकों में है जिनका स्मरण हर पीढ़ी को साहस, सेवा और समर्पण का संदेश देता रहेगा। महान व्यक्ति अपने लिए नहीं जीते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बनकर जीते हैं। बाबू जगजीवन राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि संघर्ष का सबसे सुंदर परिणाम सामाजिक परिवर्तन और मानवता की

विजयी है। आज आवश्यकता है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, ऐसा भारत बनाने के लिए जहां किसी की पहचान उसकी जाति नहीं उसकी योग्यता हो, जहां सम्मान जन्म से नहीं कर्म से मिले, और जहां लोकतंत्र का प्रकाश हर घर तक पहुंचे।

दलित चेतना के संवाहक बाबू जगजीवन राम। अभी आप सुन रहे थे बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर ये विशेष कार्यक्रम। वाचन संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का, प्रस्तुति डॉक्टर नगेंद्र रघु।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:10 हुए और प्रस्तुत है सुगम संगीत। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रियंका श्रीवास्तव के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तुलसीदास की लिखी इस भक्ति रचना के साथ, स्वर है प्रियंका श्रीवास्तव का।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुगम संगीत में श्रोता आनंद ले रहे हैं प्रियंका श्रीवास्तव की गाय भजनों का। और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मीरा बाई का लिखा ये भजन, आवाज है प्रियंका श्रीवास्तव की।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुनिए प्रियंका श्रीवास्तव के गाए कुछ भजन। आपके साथ संगत करता थे तबले पर दिलीप कुमार त्रिवेदी, हारमोनियम पर चंद्रेश कुमार, गिटार पर जयकिशन श्रीवास्तव और ऑक्टोपैड पर शोभनाथ चौरसिया। और इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: सुनो ना।
4: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कोई आपसा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर और संगीत निर्देशन है अकबर सामी का।

कोई आपसा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे समीर ने और संगीत से सवारा हिमेश रेशमिया ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों को भी आप सुन रहे थे फिल्म कसूर में। गीत के बोल लिखे समीर ने और संगीत से संवारा नदीम श्रवण ने। और इसी के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत

0: ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर

0: संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20

0: मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askyar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गाना मेरे सनम, इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है लाट साहेब फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

का बदन हो रब्बा खैर हो रब्बा खैर हो रब्बा खैर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपके लिए इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं गाइड फिल्म का गाना। आवाज मोहम्मद रफी की है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एसडी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं कोहिनूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। राजा मेहनी अली खां के बोल, संगीतकार ओपी नैयर।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम लाल पत्थर।

0: लाल पत्थर फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम जरी हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षत कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहां पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। तो मेरे पिताजी और माताजी वहां काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना असीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो असीत सेन साहब एक दिन मिल गए और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादा मुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है, जी गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर असीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊट पटांग लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो, और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूं मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई। मनोखी रात

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था, वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ्फुज ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूं।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: दोस्तों, आज के फनकार थे फिल्म अभिनेता परीक्षित साहनी।
1: आज के फनकार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: ये है
2: मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं और अब प्रस्तुत है श्रृंखला नाटक के अंतर्गत नाटक जिसका शीर्षक है सूखे के बीच। लेखक हैं धीरज नाथ।

अरे तुम सब कितना शोर करने लगते हो, मैं तुम सब के लिए दाना पानी ले आया हूँ। ये रख दिया पानी और ये दाना, आओ आओ चुग लो। वैसे तुम सब पक्षियों की आवाजों से मन बहला रहता है, नहीं तो जब से बड़े साहब का परिवार शहर में बस गया, यहाँ बहुत सूना सूना लगता है।

0: प्रणाम काका।
1: अरे आओ आओ बेटा रघु, कितने दिन बाद आए हो, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ।
0: और कैसे हैं काका?
1: ठीक हूँ बेटा, बस तुम सबको याद करता रहता हूँ। जब से तुम शहर जा बसे हो तब से हवेली जैसा घर बहुत सूना हो गया है।
0: काका आपने याद किया और मैं आपसे मिलने आ गया।
1: बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा दाल के पके पके आम अर्जुन को बहुत पसंद हैं। इस वाले पेड़ के देसी आम भी तुड़वा देता हूँ, लेते जाना। बहू इसके बहुत अच्छे अचार बनाती है। और ये कटहल भी लेते जाना, तुम्हें कटहल के कोफ्ते बहुत पसंद है ना बेटा।
0: काका फिलहाल तो मुझे कोफ्त हो रही है, क्योंकि ये सब बाजार मिलता है तो भला यहाँ से ढोकर ले जाने की क्या जरूरत है।
1: बेटा बेशक बाजार में मिलता है, पर उसमें तुम्हारे पुरखों के हाथों की खुशबू तो नहीं होगी ना।
0: ओहो काका कैसी बातें करते हैं।
1: ये पेड़ तुम्हारे बाप दादा के हाथों के लगे हैं, उनके प्यार और आशीर्वाद के भाव हैं इन फलों में।
0: काका जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती है।
1: अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी भाषा में ये ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी को तुम्हारे पुरखों ने

0: यूरिया से नहीं अपने पसीने से उपजाऊ बनाया है। इसकी कीमत को पहचानो बेटा।
1: आप सही कह रहे हैं काका, ये मिट्टी ये जगह कीमती तो है, और आप इसे बस इन आम पीपल कटहल बरगद में बर्बाद कर रहे हैं।
0: बर्बाद क्या मतलब बेटा?
1: मतलब ये काका कि इस जगह पर गगनचुंबी इमारत बनवा कर करोड़ों कमाऊंगा। मैंने तो नाम भी सोच लिया है।
0: अच्छा बताओ तो भला क्या नाम सोचा है?
1: काका इसका नाम होगा शीश महल। शीशे की चमचमाती दीवारें होंगी जिससे आसमान के चांद तारे सब साफ नजर आएंगे। और हाँ काका, मैं जल्दी ही बिल्डर को लेकर ये जगह दिखाने आऊंगा। तब तक आप ये सब नीम पीपल कटहल बरगद जो कुछ भी आपने लगा के रखा है ना, ये सब एकदम साफ करवा दीजिए।
0: साफ करवा दूँ? मतलब बेटा?
1: मतलब काका सारे पेड़ कटवा दीजिए।
0: ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पुरखों ने बहुत मेहनत से इन पेड़ों को बड़ा किया है। बरसों पुराने पेड़ हैं। इनमें से कई पेड़ तो उम्र में तुमसे भी बड़े हैं बेटा। इन पेड़ों की शाखों ने तुम्हें झूला झुलाया है। इनके पत्तों ने हवा करी है तुम्हें। इनकी टहनियों ने तुम्हें सुकून और छाया दी है, और तुम कह रहे हो कि इन्हें कटवा दूं?
1: काका नई चीजों को अपनाने के लिए पुराने को छोड़ना ही पड़ता है।
0: लेकिन बेटा ये महज पेड़ नहीं है, बल्कि हमने इस प्रकृति से कितना कुछ लिया है, और ये पेड़ प्रकृति के ऋण की किस्ते हैं। इन्हें कैसे काट दूं?
1: काका अगर इन्हें नहीं काटा तो यहाँ फ्लैट बनवाने के लिए बैंक से जो ऋण लूंगा उसकी किस्त नहीं चुका पाऊंगा।
0: बेटा मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तभी तो हमारे पुरखे बरगद पीपल नीम तुलसी इनकी पूजा करते थे।
1: काका अब समय बदल चुका है, अब इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
0: बेटा हमारे पुरखे अंधविश्वासी नहीं दूरदर्शी थे।
1: मैं भी तो काका दूरदर्शिता की ही बात कर रहा हूँ।
0: इन पेड़ों को काटने में कौन सी दूरदर्शिता है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा।
1: अच्छा अब देखिए, इन पेड़ों ने जितनी जगह घेर रखी है उतने में अच्छे खासे फ्लैट निकल आएंगे, जिससे आमदनी होगी और बैंक का कर्ज अदा करूंगा।
0: रघु बेटा चंद पैसों के लालच में अपनी सांसों का सौदा मत करो। ये पेड़ हमें जीवन देते हैं, प्राण वायु देते हैं। मेरी बात मान लो बेटा, इन्हें मत कटवाओ।
1: काका आपको कैसे समझाऊं? आपने शहर की चमचमाती इमारतें नहीं देखी हैं, इसी वजह से आपकी समझ में नहीं आ रहा। इन पेड़ों से व्यू रुकेगा, साथ ही इन पर पक्षियों के घोंसले होंगे जो गंदगी फैलाएंगे, और भी बहुत सी परेशानियां होंगी जो बंगले के पूरे लुक का कबाड़ा कर देंगी।
0: तू सही कह रहा है बेटा, नई और पुरानी पीढ़ी की यही तो समस्या है कि हम एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं पाते। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मुझे भी इन पेड़ों की तरह मौन हो जाना चाहिए।
1: काका आप काम शुरू करवा दीजिए, कल तक सारे पेड़ कट जाएं।
0: ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटा, तू सिर्फ पेड़ों को नहीं काट रहा बल्कि हरियाली काट कर सूखे के बीज बो रहा है, और ये सूखे के बीज एक दिन तुझे बहुत परेशान करेंगे।
1: सूखे के बीज मतलब?
0: तुम इन हरे भरे पेड़ों को काट कर सूखे को आमंत्रित कर रहे हो बेटा। और हाँ, ये सूखा अपने साथ प्रदूषण गर्मी बीमारी आपदा विपदा सब मुफ्त में ले आएंगे, तुम्हारा सुख चैन सब नष्ट कर देंगे बेटा। इतना ही नहीं तुम्हारी उन्नति प्रगति में भी बाधक बनेंगे।
1: काका फिलहाल तो मेरी उन्नति प्रगति इसी में है कि इस जंगल को साफ करके यहाँ चमचमाती इमारत बनाई जाए और इससे धन कमाया जाए।
0: ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
1: तो कल से काम लगा दीजिए।

हे वृक्ष देवता, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे सांसें दी, जीवन दिया और मैं आपकी रक्षा न कर सका। मैं भी आपका अपराधी हूँ। मुझे क्षमा कर दें वृक्ष देवता, मुझे क्षमा।

0: काका, पूरे 2 साल 3 महीने और 15 दिन लग गए मेरे सपनों के इस महल को बनने में, और अब गृह प्रवेश का भव्य आयोजन होगा। आप पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए।
1: हाँ बेटा, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने इसी महीने की अष्टमी

0: तिथि को गृह प्रवेश का मुहूर्त बताया है।
1: ठीक है काका, आप सारी व्यवस्था तैयार रखिएगा।
0: निश्चिंत रहो बेटा, तुम बस समय से बहू और अर्जुन को लेकर आ जाना, मैं पूरी तैयारी रखूंगा बेटा।
2: काका कहाँ है? काका काका मैं आ गया, सारी तैयारी हो गई है ना?
0: हाँ बेटा, मैंने पूजा का सारा बंदोबस्त कर दिया है।
1: काका मेहमानों को निमंत्रण भेज दिया था ना?
0: हाँ बेटा, तू चिंता न कर, सारे मेहमान समय से पहुँच जाएंगे। लेकिन बेटा, बहू रानी नहीं दिख रही, वो नहीं आई क्या? बंगले की पूजा बिना घर की लक्ष्मी के कैसे होगी भला?
1: अरे काका आप परेशान ना हो, लक्ष्मी जी आई हैं और अब तो इस बंगले में लक्ष्मी जी को आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बुलाता हूँ।
2: सिया सिया कहाँ हो सिया?
3: हाँ मैं इधर हूँ।
1: अच्छा तो यहाँ से बंगले की खूबसूरती निहार रही हो, कहीं जलन तो नहीं हो रही कि ये बंगला भला मुझसे ज्यादा खूबसूरत कैसे?
4: हाँ जलन तो हो रही है, पर बंगले की खूबसूरती से नहीं बल्कि सूरज की सीधी पड़ रही किरणों से जलन हो रही है। देखो ना कैसे बिना रोक टोक के सीधे बंगले के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये उदंड किरणें हम सबको पसीने से नहला रही हैं।
1: कैसी बातें कर रही हो सिया, इसमें सूरज की किरणों का क्या दोष? इन्हें बंगले के अंदर जाने से भला कौन रोक सकता है?
4: यही समझने में तो हमसे चूक हो जाती है। सूरज की किरणों को, पानी की बूंदों को, मिट्टी की एकता को, इन सबको बनाए रखने की ताकत सिर्फ पेड़ों के पास होती है। लेकिन आपने तो प्रकृति के इन पहरेदारों का कत्लेआम करा दिया, तो अब सजा भी भुगतनी ही पड़ेगी।
1: सिया प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, वैसे भी आज बहुत काम है।
4: हाँ चुप तो मैं हो जाऊंगी, जैसे रामू काका चुप हो गए, जैसे पत्तों की सरसराहट चुप हो गई, जैसे पक्षियों की चहचहाहट चुप हो गई। लेकिन ये चुप आवाजों का शोर एक दिन आपको बेचैन कर देगा।
1: सिया प्लीज, लगता है रामू काका आ रहे हैं।
0: सिया बिटिया, मटके का ठंडा पानी लाया हूँ, ये लो पहले पानी पी लो फिर पूजा में बैठना।
4: पानी बाद में काका, पहले आपका आशीर्वाद तो ले लूं।
0: स्वस्थ रहो बिटिया, प्रसन्न रहो।
4: झूठा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं काका?
0: झूठा आशीर्वाद नहीं है बिटिया, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहो।
4: ये तो मैं जानती हूँ काका, लेकिन आपको पता है ना, बिना प्रकृति के, बिना पुरखों के कोई स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रह सकता। पक्षियों का कलरव खुशियाँ देता है, पीपल और बरगद की छाया सुकून देती है, पेड़ों की ठंडी ताजी हवा, हवा नहीं प्राण वायु होती है जो हमें आरोग्यता देती है, और यहाँ तो इनमें से कुछ भी नहीं है।
0: सिया बिटिया, मैंने तो रघु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तुम तो जानती हो कि वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता।
4: मैं समझ सकती हूँ काका, हम इतिहास से सीखते नहीं बल्कि इतिहास को दोहराने की गलती करते हैं। जब हम इतिहास से सीख नहीं पाते तो प्रकृति हमें अपने तरीके से सिखाती है और उसको हमें भुगतना ही होता है। दुर्योधन ने भीष्म पितामह की बात मानी होती तो महाभारत का युद्ध ना हुआ होता।
1: तुम यहाँ क्या कर रही हो सिया? चलो पंडित जी पूजा शुरू करने के लिए बुला रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है।
4: हाँ हाँ चलिए पूजा शुरू करते हैं, शायद कुछ पापों की माफी ही मिल जाए।

0: देवी, अब आप जल से भरे कलश के ऊपर चावल भरा एक पात्र, उसमें दूर्वा, हल्दी, कुछ सिक्के, एक दीप प्रज्वलित कर रख लें और इस कलश के साथ घर में प्रवेश करें। और यजमान, आप घर के चारों तरफ आम के पत्तों का तोरण बांधें।
1: जी पंडित जी, लेकिन ये तो बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है, ये सब करने से भला क्या लाभ होगा?
0: देवी, जब हम नए भवन में प्रवेश करते हैं तो हम अपने साथ प्रकृति के पांचों तत्व, अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश को साथ लेकर इनमें संतुलन बनाते हुए प्रवेश करते हैं। जल से भरा मिट्टी का कलश, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक, इन्हीं पांच तत्वों का प्रतीक है। और हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यह रचित शरीरा। अगर हम इनमें संतुलन

0: नहीं बनाएंगे तो हमारे शरीर का संतुलन यानी हमारा स्वास्थ्य भी तो प्रभावित होगा देवी जी।
1: और पंडित जी, ये चावल, हल्दी, दूर्वा और उस पर रखी है कुछ सिक्के, इनका क्या अर्थ है?
0: देवी, चावल यानी अक्षत, धन धान्य का प्रतीक है। हल्दी शुभता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। दूर्वा हरियाली लेकर आती और साथ में कुछ सिक्के जो बताता है कि जीवन में थोड़ा धन भी होना चाहिए। इस तरह हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में स्वास्थ्य, शुभता, हरियाली, खुशहाली, धन धान्य सदैव बनाए रखें।
1: धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे रीत रिवाज और परंपराओं का अर्थ समझाया।
2: और पंडित जी, इन आम के पत्तों से तोरण बांधने का अभिप्राय भी बता दें।
0: जो आम का तोरण होता है वो नकारात्मक ऊर्जा से हमारे घर की सुरक्षा करता है, हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। और संक्षेप में कहूँ तो इन सब क्रियाकलापों का अभिप्राय है कि हम अपने जीवन में हर कदम पर प्रकृति को साथ लेकर चलें, अपने हर सुख दुख में प्रकृति को शामिल करें।
1: लेकिन पंडित जी, आज तो हम इसका उल्टा कर रहे हैं, प्रकृति को अपने से दूर करते जा रहे हैं। ताल और कुएं खत्म हो रहे हैं, पीपल और बरगद को काटकर बंगले बना लिए हैं।
0: हाँ देवी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसके दुष्परिणाम भी बहुत हो रहे हैं। आज हम तमाम शारीरिक और मानसिक व्याधियों से ग्रसित होते जा रहे हैं।
2: पंडित जी, एक छोटी सी समस्या है।
0: बताइए जज्बान, हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है।
2: पंडित जी, आम के पत्ते तो नहीं है, उनकी जगह कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए।
1: अरे हाँ, आम के पत्ते कहाँ मिलेंगे, आपने तो पेड़ों को ही कटवा दिया है।
3: अरे रघु बेटा, मुझे पता था कि आम के पत्तों के तोरण की जरूरत पड़ेगी, मैंने माली को बोलकर मंगवा लिया था, ये रहे।
1: रामू काका, माली ने ये पत्ते मुफ्त में तो दिए नहीं होंगे, बताइए कितने में मिले ये आम के पत्ते?
3: कैसी बात कर रही हो सिया बिटिया, एक तरफ तो मुझे काका कहती हो और दूसरी तरफ मुझे दाम चुकाओगी, वो भी जरा से आम के पत्तों के लिए? ना ना बिटिया, ऐसा पाप ना करो।
2: सिया, तुम मीना कैसी बातें करती हो, रामू काका को दुखी कर दिया ना ऐसी बातें करके।
1: माफी चाहती हूँ काका, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि सबको ये एहसास कराना था कि हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है।
2: अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, भला वो कैसे?
1: देखिए ना, कितने आम के पेड़ थे आपके पास कि पूरे घर में तोरण बांधते तो भी कम ना पड़ते, लेकिन आपने पेड़ काट दिए और अब इन पत्तों को दूसरों से खरीद रहे हैं।
3: हाँ बेटिया, तुम्हारी ये बात तो सही है।
1: काका, बात सिर्फ पत्तों की नहीं है, हमने नीम, तुलसी काटा और बाजार से एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक गोलियां खरीदी, हमने अपने बड़े बूढ़ों का साथ छोड़ा और पैसे देकर बच्चों के लिए डे केयर खरीदा, हमने अपना खान पान दिनचर्या छोड़ी और डॉक्टर की फीस चुकाई, हमने पीपल बरगद काटा और एसी कूलर खरीदा, एयर प्यूरिफायर खरीदा, तो हुआ ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
2: सिया, फिलहाल तो मैंने पंडित जी को बुलाया है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका ज्ञान लेने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। चलिए पंडित जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाइए।
4: ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूजा संपन्न हुई, इस नए भवन में आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, आप दोनों को मेरा यही आशीर्वाद है।
5: बधाई हो भाभी जी, बहुत ही शानदार बंगला बनवाया है भाई साहब ने।
1: धन्यवाद भाभी जी, भाई साहब नहीं दिख रहे।
5: अरे भाभी जी, आप जानती तो हैं इन पतियों को, दोस्तों को पाकर बीबी को भूल जाते हैं, वो देखिए मित्र मंडली के साथ गप्पे मार रहे हैं।
1: कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ी ढील भी देनी चाहिए पतियों को।
6: अरे रघुराज भाई, बहुत बहुत बधाई आपको।
2: धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कुछ खाया पिया कि नहीं?
6: भाई और तू सब कुछ तो रहने दे, बस एक चीज खिला दे।
2: हाँ बता, क्या मंगवाऊँ?
6: रघु भाई, बस ठंडी ठंडी हवा खिला दे, यार गर्मी बहुत है।
2: चल तू पंखे के नीचे मुंह खोलकर खड़ा हो जा और हवा का, मैं जरा शर्मा से मिल लूं। नमस्कार शर्मा भाई।
6: अरे रघु भाई, बंगला तो बहुत शानदार बनाया, एक काली हंडिया भी लटका दे, कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए।
2: यार तू किसी काली हंडिया से कम है क्या, चल लटक जा।
1: भाई साहब, इनकी तो आदत है मजाक करने की।
2: अरे सिया, अर्जुन कहाँ है, बहुत देर से दिख नहीं रहा, उसने कुछ खाया पिया कि नहीं?
1: यही कहीं होगा, मैं देखती हूँ, आप मेहमानों का ध्यान रखिए। अर्जुन, बेटा अर्जुन।
6: आई एम होम।
1: अरे अर्जुन बेटा आप

0: कहाँ थे? पापा आपको याद कर रहे हैं।
1: अर्जुन बेटा, कैसा लगा आपको नया बंगला?
2: सच बताऊं पापा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
1: वो क्यों बोला? इतना शानदार, आलीशान, चमचमाता बंगला तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगा?
2: पापा, दादाजी हमेशा कहते थे ना कि ओरिजिनल चीज ही सुंदर होती है, और यहाँ तो ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। ये आर्टिफिशियल प्लांट, ये आर्टिफिशियल ग्रास सिर्फ सजावट के लिए है। इसमें ना कोई रंग है ना सुगंध, लेकिन हाँ एक चीज जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है।
1: चलो, कुछ तो ओरिजिनल लगा तुम्हें, अब बता भी दो क्या चीज है वो जो ओरिजिनल है।
2: ये देखिए, ये मेरे माथे से टप टप टपकता पसीना एकदम ओरिजिनल है, जो यहाँ की धधकती गर्मी के कारण आ रहा है।
0: सही कहा अर्जुन ने, ये पसीना 100% प्योर है। यहाँ गर्मी है ही इतनी कि हर कोई पसीने से नहा रहा है।
1: देखो भाई, ये तो मौसम का असर है, बारिश हो जाने दो, फिर देखना कितना सुंदर व्यू मिलेगा इन शीशों के दरवाजे से।
2: हाँ, लगता है प्रभु ने सुन ली, मुझ बालक के पसीने से पसीज गए, तभी तो जल से भरे काले काले बादलों को बारिश लेकर भेज दिया। देखिए, शीशे के दरवाजे से व्यू दिख रहा है, कैसे काले काले बादल नजर आ रहे हैं।
0: अरे वाह, कितनी तेज बारिश हो रही है, गर्मी से राहत मिल जाएगी।
3: रघु बेटा, बाहर पार्किंग एरिया में पानी भर गया है और पानी हॉल की तरफ आ रहा है।
1: क्या कह रहे हैं काका, हॉल में पानी आएगा तो इतना महंगा इंटीरियर करवाया है, सब खराब हो जाएगा। ये सब कारीगरों के कारण हो रहा है, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया।
2: पापा, ये स्किल इशू नहीं है बल्कि ट्री इशू है।
1: ट्री इशू मतलब?
2: मतलब ये कि पेड़ प्रकृति का ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, आपने उन्हें तो कटवा दिया, अब बारिश का पानी एरर 404 दे रहा है।
1: अभी एरर 404 क्या है? ये तुम्हारी जेंजी वाली लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती।
2: समझाता हूँ बाबा, देखिए, जैसे जब वेबसाइट नहीं खुलती तो एरर 404 आता है ना, इस तरह बारिश का पानी पेड़ की जड़ों के सहारे मिट्टी के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ तो पेड़ है ही नहीं, मतलब पानी को धरती में जाने का रास्ता नहीं मिला और वो हॉल की तरफ बढ़ने लगा। सो इट्स नॉट स्किल इशू पापा, इट्स ट्री इशू।
0: हे भगवान, पेड़ों को काटने का और कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा।

0: रामू काका,
1: रामू काका,
2: क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो बेटा?
1: ये क्या है काका, ये बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आया है? पिछले एक साल से बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार तो हद हो गई।
2: अब बेटा मैं क्या बता सकता हूँ।
3: इसमें रामू काका पर गुस्सा होने की क्या जरूरत है? आपका ये शीश महल भट्टी की तरह तपता है। दिन रात एसी कूलर चलेगा तो बिजली का खर्चा भी बढ़ेगा। और हाँ, आपने प्रकृति को जितना नुकसान पहुँचाया है तो प्रकृति भी आपसे बदला तो लेगी। बस आगे आगे देखते जाइए और कितने खर्चे कितने नुकसान झेलने पड़ते हैं।
4: पापा, मैंने एयर प्यूरिफायर ऑनलाइन बुक कर दिया है, ये रहा उसका बिल, पेमेंट कर दीजिएगा।
1: अब एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है?
4: जरूरत है पापा, याद है ना उस दिन डॉक्टर साहब ने क्या बोला था कि आपके एलर्जी की समस्या के साथ साथ आपका बीपी भी बढ़ रहा है।
1: बढ़ते हुए खर्चे को देखकर बीपी तो बढ़ेगा ही
4: पापा। बढ़ता खर्च, बढ़ता बीपी, बढ़ती एलर्जी, इट्स ऑल ड्यू टू घटती हरियाली।
1: अरे कलयुग के अष्टावक्र जी, कभी सीधा भी बोल दिया करिए।
4: अच्छा अच्छा, सीधे शब्दों में आपको शुद्ध ताजी हवा नहीं मिल रही जिससे आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। आपने प्रकृति के फ्री एयर प्योरीफायर मतलब हरे पेड़ों को काट कर पेड प्योरीफायर सब्सक्राइब कर लिया है, फिर पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे।
1: तुम सही कह रहे हो बेटा, एक साल में तन मन और धन का नुकसान ही हुआ है। सिया, तुम कहती थी ना कि प्रकृति अपनी तरह से बदला लेती है, मुझे लगता है कि प्रकृति मुझसे बदला ले रही है।
3: चलो, तुम्हें हम लोगों की कोई बात तो सही लगी।
1: रामू काका।
2: हाँ बेटा।
1: आपने सही कहा था, मैंने हरे पेड़ों को काट कर सूखे के बीज बोए थे और अब इनके दुष्परिणाम भुगत रहा हूँ, मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करना होगा।
2: रघु बेटा, प्रकृति बहुत दयालु है, अगर हम अपनी भूल सुधार लें बेटा तो वो हमें मुआवजे कर देती है।
3: रामू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रकृति हमें माफ कर देती है लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर हमारा नाश भी कर देती है।
1: हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि वृक्ष काटकर मैंने ही सूखे के बीज बोए थे।
4: पापा, बेटर लेट देन नेवर,
3: मतलब देर आए दुरुस्त आए।
4: पापा, आपने बंगला एस्थेटिक के लिए बनवाया था ना, पर एस्थेटिक तो पेड़ों से आता है ना, तो शुरू करते हैं 50 प्लांट्स चैलेंज, रिफॉर्मेशन ब्लॉक बनाते हैं। आप पेड़ों को पानी देना, मैं रील बनाऊंगा, तो बोलिए डील पक्की।

0: 100% पक्की?
1: यस।
0: और इसकी शुरुआत कल से ही होगी, क्योंकि कल हमारे इस शीश महल की पहली वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैं इसे 50 पेड़ों का उपहार दूंगा और अपने आसपास हरियाली और खुशहाली रोपूंगा।
2: बहुत ही सुंदर विचार, बस एक काम और करना है।
0: वो क्या भला?
2: ये कि इस शीश महल का नाम अब आशीष महल कर दीजिए, जहां हमें प्रकृति का आशीष जैसे शुद्ध हवा, पानी और सुकून मिलता रहे।
3: वाह सिया बेटा वाह, बहुत सुंदर नाम सोचा है, आशीष महल।
0: काका कल से काम शुरू करना है, सूखे के बीजों को हटाकर हरियाली रोपना है।
4: हम सब तैयार हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक सूखे के बीच, लेखक धीरज नाथ त्रिपाठी, कलाकार वीरेंद्र तिवारी, शिखा दुबे, रोहित सिंह, सुनील शुक्ला, आदित्य विश्वकर्मा और राधा कुमारी। प्रस्तुति एवं संपादन कीर्ति श्रीवास्तव का और निर्देशक हैं अतिश श्रीवास्तव।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए ऋषिकेश गांगोडे का राग बागेश्री में

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुर्डे का राग बागेश्री में ख्याल गायन।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTU UP के वेबसाइट पे होम पेज

पे प्लेज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी

0: पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S.